सुप्रभात, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आज है दिन सोमवार, शक संवत 1948।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से

0: ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विम्बलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विम्बलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसानी, जिसमें हम जानेंगे समन्वित कृषि प्रणाली के बारे में। जानकारी दे रही हैं अनिता तिर्की।
2: समन्वित कृषि प्रणाली एक नई तकनीक है जिसमें कृषि के विभिन्न उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल और सब्जी उत्पादन, मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी का जब एक साथ इस प्रकार समायोजन किया जाए कि वे एक दूसरे के पूरक हों, जिससे संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभप्रदता में पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वृद्धि की जा सके, तो इसे हम समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। चूंकि ये स्वसंपोषित प्रणालियां अवशेषों के चक्रीय और जल एवं पोषक तत्व आदि के निरंतर प्रवाह पर आधारित है, जिससे कृषि लागत में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर लगातार आमदनी एवं रोजगार का सृजन होगा। किसान भाई बहुत पुराने समय से ही कृषि के विभिन्न उद्यमों को अपनाते चले आ रहे हैं, लेकिन उन उद्यमों में केवल एक

0: उद्यम को ही वह व्यवसाय के तौर पर अपनाते हैं जो उसकी आमदनी का मुख्य जरिया था। अन्य उद्यमों को वह केवल अपनी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे, जैसे एक या दो मवेशी रखना ताकि उसके परिवार को रोजाना दूध मिल सके, तथा अधिक होने पर ही वह उसे बेचते थे। इस पुरानी प्रणाली को ही हम मिश्रित कृषि कहते हैं, लेकिन समन्वित कृषि प्रणाली में किसान को अपने भूखंड के अनुसार कृषि के विभिन्न उद्यमों को एक निश्चित अनुपात में रखा जाता है, ताकि एक उद्यम दूसरे उद्यम की सहायता करे, जिससे उत्पादन लागत में कमी लाते हुए किसानों को ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त हो सके। उद्यमों का चुनाव करते समय किसान भाइयों को कई कारकों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे उस स्थान की पर्यावरण स्थिति, उपलब्ध मजदूरों की संख्या, जमीन की स्थिति और आकार, धन की उपलब्धता, उद्यम के बारे में जानकारी, सारे उद्यमों को एक साथ चलाने की क्षमता, बाजार की उपलब्धता तथा सामाजिक परिवेश के अनुसार ही उद्यमों का चुनाव। समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत किसानों को बहुत भारी बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन उद्यमों को जो उस क्षेत्र विशेष में किसान अपना रहा है, उन्हीं उद्यमों को एक निश्चित अनुपात में रखने की जरूरत है, ताकि वे उद्यम एक दूसरे के पूरक हो जाएं। इस प्रणाली के अंतर्गत किसान अपनी भूमि के 1/10 भाग पर तालाब या ट्रेंच बनाकर वर्षा जल संग्रहित कर सकते हैं। इस संचित जल में मछली तथा बत्तख पालन के साथ साथ इसे सिंचाई के लिए साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है। मछली पालन के तहत तालाब में 6 तरह की मछलियां, रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प तथा ग्रास कार्प को पाला जाता है। ये मछलियां तालाब के विभिन्न स्तर पर रहती हैं। इस तरह तालाब में संग्रहित विभिन्न स्तर के जल का भरपूर दोहन करते हुए उच्च उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। साधारणतः 1 हेक्टेयर तालाब के लिए 6,000 से 7,000 जीरा डाला जाता है, जिनकी लंबाई 3 से 4 इंच हो। बत्तख के साथ मछली उत्पादन करने पर 8 से 10 इंच की 3,000 से 4,000 जीरा तालाब में डाला जाता है, ताकि बत्तख उन्हें खा ना सके। समन्वित कृषि प्रणाली के अन्य उद्यम जैसे मवेशी, सूकर, मुर्गी या बत्तख पालन द्वारा परित्यक्त मल मूत्र और अवशिष्ट पदार्थों को सीधे तालाब में निष्कासित किया जाता है, जिससे मछलियों के लिए समुचित प्राकृतिक भोजन उपलब्ध होता है। इस व्यवस्था में मछली पालन के लिए अलग से पूरक आहार की आवश्यकता नहीं होती है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी, जिसमें आज चर्चा का विषय था समन्वित कृषि प्रणाली। जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।

धर्म का सार यही है कि मनुष्य को मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, यानी मानव जीवन का उद्देश्य सेवा ही परम धर्म है। सेवा ही असल में मानव जीवन का सौंदर्य और श्रृंगार है। सेवा न केवल मानव जीवन की शोभा बल्कि परमपिता परमेश्वर की सच्ची आराधना भी है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीबों को धन देना, अनपढ़ को विद्या देना ही हर व्यक्ति का सेवा धर्म है। असल में दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया प्रत्येक कार्य सेवा है। यदि हम किसी कामना के लिए दूसरों की सेवा करते हैं तो वो सेवा नहीं है। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हमारे मन में असीम शांति की अनुभूति होती है। हम भले ही कितने सुविधा संपन्न क्यों ना हों, लेकिन जो सुख हमें दूसरों की सेवा करने से मिलता है वो सभी सुखों में सर्वोपरि है। सेवा करने से जो संतोष प्राप्त होता है वो किसी और कर्म से संभव नहीं है। सेवा भाव से व्यक्ति दूसरों के दुखों को दूर करने की चेष्टा में अपनी परेशानियों को भूल जाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मानवता की सेवा में जुट जाए तो दुनिया में गरीबी, अशिक्षा, अहंकार, घृणा, पाप, अक्रूरता इत्यादि अवगुण स्वतः समाप्त हो जाएंगे और तब सभी सुखी संपन्न और प्रसन्न हो जाएंगे। असल में हर देश की भाषा, संस्कृति और बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन सभी के कल्याण का मार्ग मानवता की सेवा ही है। हम सभी को क्रोध, घृणा, अहंकार को त्याग कर अपने भीतर दया, क्षमा और सेवा का भाव जागृत करना चाहिए ताकि समाज, देश, दुनिया में शांति स्थापित हो सके। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है तो युधिष्ठिर ने कहा कि दया ही श्रेष्ठ धर्म है। अगर दीनहीन, असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति पर दया दिखाते हुए उनकी सेवा और सहायता नहीं करेंगे तो कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी हमारा घर, समाज, देश और विश्व उन्नति की ओर अग्रसर होगा। हमारे वेदों में कहा गया है कि मनुष्य, तू दो हाथों से कमा और सैकड़ों हाथों से दान कर। इसी तरह प्रकृति भी हमें यही सीख देती है कि तेरे पास तेरा अपना कुछ नहीं है, जो है वो दूसरों के लिए है।

ये था आज का चिंतन। संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले सुनते हैं देशभक्ति गीत।

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदायी होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का

भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठ पूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से बस कुछ ही देर में यानी 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप क्रमशः संस्कृत हिंदी में समाचार सुन पाएंगे। सात बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा अस्थमा कारण उपचार। भेंट वार्ताकार डॉक्टर अजय कुमार, भेंट करता संजीव कुमार लाल।

बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। खुला आकाश का वक्त होगा 7:45 पर। 8 बजे दिल्ली से आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 8:30 पर। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग, जिसमें आज आप सुनेंगे नागपुरी भाषा में लोकगीत। कलाकार हैं इग्नेश कुमार और साथी। 9 बजे समय होगा कार्यक्रम रसरंजन का। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अलहिया बिलावल में ध्रुपद गायन, रचना 4 ताल में निबद्ध है, बोल मोतियन की झाला लगी। कलाकार हैं सुरेश प्रसाद गुप्ता, संगत पखावज पर रामबचन पाठक, हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती।

बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम आओ साथ चले। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा नशा मुक्त समाज के निर्माण में जन जन की भागीदारी, भेंट वार्ता, अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन की तत्परता। भेंट वार्ताकार आशुतोष शेखर, भेंटकर्ता सिंधु मिश्रा, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की होगी, प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा की होगी। कार्यक्रम जोहार रांची का समय होगा 10:30 पर। 11:30 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा गीत कार्यक्रम आपकी पसंद में। 12 बजे हमारी महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी आप सुन पाएंगे, जिसमें आज चर्चा होगी पूरे वीक की करे प्लानिंग, भेंट वार्ता, समय प्रबंधन, जानकारी सोने की खरीदारी में रखे सावधानी। सूत्रधार सुभाषिनी और सुमन तिवारी, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की होगी। एक बजकर 20 मिनट पर समय होगा कार्यक्रम अनुरंजनी का। कार्यक्रम में हमारी आज के कलाकार हैं गिरिजा देवी। 1:45 पर समय होगा कार्यक्रम सुगम संगीत का।

मिड डे न्यूज का वक्त होगा दोपहर 2 बजे 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। हमारे फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती का समय होगा दोपहर 2:30 पर। 3 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 3:30 पर आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम रांची मेलोडीज। आओ साथ चले का समय होगा शाम 4:02 पर। कार्यक्रम में चर्चा होगी नशा मुक्त समाज के निर्माण में जन जन की भागीदारी। शाम 4:30 पर समय होगा कार्यक्रम स्थानीय सूचनाओं का और 4:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र जहां से आप सुन पाएंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार।

0: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य नवदेहल्याम आयोजितम सहकारिता मंत्रालयस्य पंचमं स्थापना दिवस समारोहम अलंकरिष्यति। मंत्रालयेन ज्ञापितम यत् अयम् समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्री शाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु द्वात्रिंशदधिक द्विशत अन्न संग्रह भण्डारानां लोकार्पणं सहकार वनस्य भूमिपूजनम् उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः त्रिशु कल्चर इति सुविधायै भूमिपूजनम् राष्ट्रिय सहकारी डेटाबेस एनसीडी 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेशे प्रचलन्त्याम् वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रायां श्रद्धालूनां महत् सम्मर्धः दृश्यते। यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेष्वेव 650,000+ जनाः पवित्र गुहा मन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्य दर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः उद्घाटन दिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता संजाता, येन हि अतिवृष्टिः मेघगर्जनं विद्युत्पातः प्रचण्ड चक्रवादवायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश राजस्थान कर्नाटक उत्तराखण्ड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां उत्तरप्रदेशे पंजाबे चण्डीगढ़ क्षेत्रे विकीर्णरूपेण वृष्टिः सम्भाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार

0: में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एनसीडी और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के दो वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज का विषय है अस्थमा कारण उपचार। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अजय कुमार, भेंट करता है संजीव कुमार लाल।
2: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा क्यों हो जाता है, क्या लक्षण है और इसका उपचार हम किस प्रकार करें, और साथ साथ हम सावधानियां पर भी चर्चा करेंगे कि यदि अस्थमा हो जाता है तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, किन किन चीज़ों से अपना बचाव करें, और जब मौसम करवटें लेता है यानी कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तब ये बीमारी ज़्यादा हावी हो जाती है। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर अजय कुमार। तो डॉक्टर साहब, अस्थमा क्या है, इसको हम कैसे जाने कि ये अस्थमा ही है?
3: अस्थमा, जिसे हम लोग हिंदी में दमा भी बोलते हैं, इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। ये क्रोनिक लंग डिजीज़ है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और आजीवन परेशान भी कर सकता है, जिसके लक्षण डिस्पनिया यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, कफिंग, बहुत खांसी होने लगती है, वीजिंग, साएं सी आवाज़ आने लगती है, सीटी सी आवाज़ आने लगती है और टाइटनेस इन चेस्ट होता है, यानी छाती में बहुत तनाव सा फील होता है या भारीपन समझ में आता है। ये ज़्यादातर रात में या प्रातः सुबह काल में होता है। अस्थमा एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या डिजीज़ कहेंगे, जिसमें कुछ कारणवश सांस के नली में का पतला हो जाता है, जिसे नैरोइंग ऑफ एयरवे कहते हैं। इसमें ब्रोंकाई और ब्रोंकियोस के किसी एलर्जेंट के प्रभाव में इन्फ्लेम

0: जाता है, सूज जाता है। जब ये नॉर्मल कंडीशन में होता है तो ये काफ़ी रिलैक्स अच्छे से खुला हुआ होता है, जिससे सांस आराम से अंदर बाहर होती है। लेकिन जब इसे किसी तरह का स्टिमुलाई मिलता है, सांस की नली में प्रवेश करता है, तो अंदर जो म्यूकस लेयर है वो उसमें रिएक्ट करके सूज जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, जिससे सांस की नली और पतली हो जाती है और सांस लेने में परेशानी होती है। अब आप सोचेंगे ये स्टिमुलाई क्या होता है। जैसे हाउस डस्ट है, घर में जो धूल है, एयर पोल्यूशन है, हवा का प्रदूषण, फूल का पराग, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा चिंता करना, इमोशनल कॉज भी होता है, जैसे कि हंसना, रोना आदि बहुत सारे कारण होते हैं। यानी कि जिसके वजह से एयर वे रिएक्ट करके सिकुड़ने या पतला होने लगे, उसे स्टिमुलाई कहते हैं। कुछ पेशेंट में तो ये स्टिमुलाई की वजह से एयरवेज ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने लगता है और ज़्यादा खराब सिम्टम्स डेवलप कर देता है, जिससे हम लोग हाइपर रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स स्टिमुलाई कहते हैं। इसमें अंदर की लेयर यानी म्यूकोजल लाइनिंग एक्सेसिव म्यूकस सिक्रेट करती है, बहुत ज़्यादा बलगम सिक्रेट करने लगती है, जिससे जो भी स्टिमुलाई या एलर्जेंट हो वो ट्रैप होके बलगम के रूप में छाती से बाहर निकल सके और सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। और इसी कंडीशन को हम लोग अस्थमेटिक अटैक बोलते हैं। तो अस्थमा दो प्रकार के होते हैं, पहला है एलर्जिक अस्थमा और दूसरा है नॉन एलर्जिक अस्थमा। तो एलर्जिक अस्थमा को पहले हम लोग समझते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्पेसिफिक एलर्जेंट सांस की नली में आता है। ये एलर्जेंट जैसे कि पेट्स डेंड्रफ यानी पालतू जानवर के जो डेंड्रफ होते हैं, वो हाउस डस्ट, घर के धूल, फूल का पराग, मोल्ड यानी जो फंगस हवा में रहते हैं, और कभी कभी फूड से भी एलर्जी होती है यानी जो हम लोग खाना खाते हैं तो उससे भी एलर्जी होती है, उससे भी सांस में लेने में तकलीफ होती है। अब आते हैं नॉन एलर्जिक अस्थमा के बारे में जानने के लिए। इन्वायरमेंट से ये दिक्कत होता है, जैसे एयर पोल्यूशन, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडा होना, अचानक मौसम बदलाव के चलते, जैसे झाँक लगना, हम लोग फ्यूम्स या फिर सब्जी बनता है तो उसका झाँक लगने से भी सांस फूलने लगती है, धुआं से, डिओड्रेंट से, प्रिजर्वेटिव से। हमारे किसान भाई जो कीटनाशक यूज़ करते हैं तो उस कीटनाशक से भी यह दिक्कत हो सकती है। एक और अस्थमा का वेरिएंट है, टाइप है, जिसे हम लोग बोलते हैं कफ वेरिएंट अस्थमा। इसमें एक सूखी खांसी थ्रू आउट लगातार काफ़ी समय से बनी रहती है, ये भी एक नॉन एलर्जिक अस्थमा का टाइप है। अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं। इसमें दो कारण हैं, दो प्रमुख कारण हैं, इन्वायरमेंटल और जेनेटिक। इन्वायरमेंटल कॉज, अभी हम लोगों ने जितने भी सारे बातें किए हैं कॉजेज पे, वो लगभग सारे इन्वायरमेंटल कॉजेज के हैं, जैसे कि एयरबॉर्न, एयर पोल्यूशन, एयरबॉर्न डिजीज, एयर पोल्यूशन, इमोशनल कॉज, स्ट्रेस के अलावा और भी दिक्कतें होती हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल कंप्लेन, मेंस्ट्रुअल यानी जो लेडीज़ जिनको मासिक धर्म होता है उन दौरान में भी दमे की शिकायत बढ़ जाती है। कोई बच्चा जो काफ़ी कम वेट का हो, जिनका लंग्स ढंग से नहीं डेवलप किया हुआ हो, उनको भी अस्थमा का चांसेस हो सकता है। अगर पेशेंट के माता पिता को अस्थमा हो तो बच्चों में 3 अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप अस्थमा का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चल रहा है, तो रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर को देना चाहिए। ये नहीं कि जब आपको तकलीफ हो तभी आप डॉक्टर से मिलें। जब अस्थमा अटैक हो तो आप धैर्य ना खोएं, क्योंकि अगर आप बेचैन होंगे, चिंतित होंगे, परेशान होंगे, तो अस्थमा और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप अस्थमा से परेशान हैं तो अपने सिम्टम्स को ध्यान दें और पहले से ही सचेत हो जाएं। घर के बाहर जाते समय अपना मुंह, नाक मास्क से ढक लें। इसमें एक होम रेमेडी भी है, जैसे अदरक। तो अदरक को गर्म पानी में उबाल के उसे चाय जैसे पीने से आराम आ जाता है। दूसरी मधु, ये भी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करता है, सुचारू रूप से चलाता है। तो मधु और अदरक को भी साथ में लिया जा सकता है। हम लोग योग भी कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज यानी सांस की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कुछ खाना जैसे सेब, पालक, डार्क चॉकलेट, ये सब बीमारी को दूर रखने में मदद करती है। हम लोग को धुएं वाली जगह से बचना चाहिए। अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसे छोड़ देना, यानी धूम्रपान करते हैं उसे तो छोड़ देना चाहिए। अपने बेडरूम में पालतू जानवर ना लाएं। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन यानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो उस कंडीशन से बचें। फूड प्रिजर्वेटिव जिन खानों में डाला गया हो उसका सेवन ना ही करें या कम करें। खाना जो गैस बनाता है जैसे प्याज, पत्ता गोभी, उसका प्रयोग ना करें। अब हम कुछ होम्योपैथिक पार्ट से अस्थमा को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं उसको जानेंगे। अस्थमा का उपचार होम्योपैथी में संभव है क्योंकि होम्योपैथी बहुत ही प्रभावशाली और सुरक्षित उपचार प्रणाली है। शुरुआती तौर पे रह रह के बीमारी आता है, परसिस्टेंट यानी लगातार ये बीमारी रहता है, को देखते हुए चिन्हित करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जब हमारे पास मरीज आता है तो पहले हम उसे क्विक रिलीफ मेडिसिन देते हैं ताकि उसे आराम जल्दी मिले, और जब आराम आ जाता है तब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देते हैं ताकि समय के साथ में धीरे धीरे करके उसकी गंभीरता कम हो सके और एक दिन बीमारी पूरी रूप से ठीक हो सके। दमा के साथ में छाती में जलन होना, चेहरे का नीला पड़ जाना, पेट का फूल जाना, हाथ पाँव में ठंडा पड़ जाना, इसमें कार्बोवेज बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे गाढ़ा जमा हुआ कफ, सांस लेने में तकलीफ, धुंध और कुहासा में दिक्कत बढ़ जाए, इसमें नैट्रम सल्फ बहुत अच्छा काम करता है। जब पेशेंट को लेटने पर खांसी होना, सांस लेने में छाती से साय साय की आवाज़ आना, इसमें आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करता है। बारिश के मौसम या धूल के मौसम में दमा बढ़ जाता है या पीला मवाद जैसा बलगम आता है तो उसमें ब्लाटा ओरिएंटलिस यानी ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर हम लोग देते हैं। ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू, इसका डोज 20 बूंद 3 बार पानी के साथ रहेगा।
1: तो इन सारी बातों का यदि हम ख्याल रखते हैं और सावधानियां अपने जीवन में हम रखते हैं, और ख़ासकर जब मौसम परिवर्तन करता है तो हम अपना बचाव रखें, तो ये बीमारियां हम तक नहीं पहुंचेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय कुमार आज आप इस कार्यक्रम में। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आज आपने जानकारी प्राप्त की अस्थमा कारण उपचार। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अजय कुमार, उनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुरीली में। आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म गुरु के इस प्यारे से गीत के साथ। स्वर है श्रेया घोषाल के, बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन बनाई है AR रहमान ने।

दोस्तों आशा भोसले और विनोद राठौर के स्वर में आइए सुनते हैं अगला गीत। संगीतकार हैं शिवहरी और रचना है आनंद बख्शी की। फिल्म का नाम है चांदनी।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म नमक हलाल का ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में। संगीत था बप्पी लहरे का और रचना थी अनजान की। आइए सुनते हैं फिल्म अनजाना के ये प्यारे संगीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-97 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं फिल्म मंजिल से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं योगेश ने।

फिल्म चक दे इंडिया का गीत आइए सुनते हैं। सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट, मरियाने डिक्रूज के स्वर में, संगीत है सलीम सुलेमान का और रचना है जयदीप साहनी की।

0: दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम सुबह सुरीली यहीं पे संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश। कार्यक्रम में वार्ता होगी विश्व फलक पर हिंदी कविता। वार्ताकार हैं डॉक्टर कमल कुमार बोस।
1: कविता हमारे जीवन की भावनाओं एवं विचारों की सरस सुंदर अभिव्यंजना है। जीवन अनेक मुखी है और मानव चेतना उसके सार तत्व को ग्रहण करके निज संस्कारों के अनुसार उसे रूपायित करती है। आत्मस्थ अनुभूतियों का सुंदरतम प्रकाशन है कविता। जीने की भाषा गढ़ती है कविता। जिंदगी सिर्फ शिकायत नहीं है, जिंदगी सिर्फ कुछ पा लेने का समझौता भी नहीं है। जिंदगी केवल व्यक्तिगत उत्थान पतन भी नहीं है, जिंदगी समुदाय की शक्ति से सांस लेती है और समुदाय को अपनी ऊर्जा एवं अनुभव से गतिशीलता प्रदान करने का सार्थक प्रयास करती है। इसलिए तो साहित्य की प्राचीनतम विधा कविता मनुष्य के भीतर गंध की तरह बसी होती है। अनुभूति का झोंका जब पास से गुजरता है तो नया से ही गंध महमाने लगती है। जानी पहचानी होने के बावजूद ऐसी गंध सर्वथा मौलिक होती है। मनुष्य उसे अपने भीतर से भीतर तक महसूस करता है। समाज से उत्पन्न ऐसी अनुभूतियाँ कभी सिमट कर नहीं रह पाती, वे आसपास को अपने में समेट लेती हैं। इसलिए कवि रचनाकार की संवेदनाएँ सबकी हो जाती हैं। कविता का होना मनुष्य के होने की पहचान है। यही कारण है कि तमाम निराशाजनक संकेतों के बावजूद कविता आदमी को आदमी बनाए रखने की दिशा में लगातार सक्रिय रहेगी। लगातार बदरंग होती जिंदगी को कविता सात रंगों के सपने देने का यत्न करती रहेगी। निरंतर संकुचित होती मानवीय आस्था को विराटता का दर्पण कविता ही दिखाएगी। आज कविता प्रासंगिक है तो कल भी रहेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन एवं अनास्था की इस दौर में एकता और सामाजिकता की कड़ियों को जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में लिखित कविताएं। विश्व फलक पर भारतीय भाषाओं में लिखित कविताएं

0: मनुष्य के ज्ञान एवं कौशल को सर्वदा ही हर क्षेत्र में विस्तार दे रही हैं। ये कविताएं हमारे देश के सृजनशील व्यक्तियों के चिंतन एवं सृजन की विविध एवं विशिष्ट दिशाओं का साक्षात्कार कराती हैं। साथ ही विश्वभर की समस्त भाषाओं एवं साहित्यों के पारस्परिक संपर्क में भी वृद्धि होती है। विभिन्न सृजनात्मक इकाइयों के परस्पर निकट आने की संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के साथ ही साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखित एवं विदेशी भाषाओं में अनुवादित कविताएं विविधता के एक सूत्रता या प्रदर्शन को उजागर करती हैं। विश्व फलक पर भारतीय विभिन्न भारतीय भाषाओं में रचित कविताएं इस तथ्य का आभास देती हैं कि संवेदना के धरातल पर एक ही सोच, एक ही मानव संस्कृति को विभिन्न अभिव्यक्ति माध्यमों से प्रस्तुत किए गए हैं। विश्व की धारा में शामिल भारत धारा की विविध भाषाओं में रचित कविताएं एक ही वैचारिक धरातल या एक ही जीवन मूल्य का साक्षात्कार संकेतन करती हैं। इनके बीच भिन्नता केवल आवरण की है, आत्मा की नहीं। विश्व की विभिन्न भाषा भूमियों पर प्रवाहित होने वाली भावधारा या विचार सरिता एक ही है। निश्चित रूप से यह बोध अनुवाद के बगैर संभव नहीं है। अनुवाद के कारण ही भारत के कबीर, फ्रांस के रेवले, हिंदी के प्रेमचंद एवं रूस के रक्सिम गोर्की, अज्ञे, निराला, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, गोस्वामी तुलसीदास, बंगला के शरदचंद्र, बंकिम चंद्र, सुंदरनंदन पंत, टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम आदि को जान पाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभव हो सका है। अनुवाद ने न केवल पाठक की रुचि को अंतर्राष्ट्रीय आस्वाद प्रदान किया है, बल्कि अध्ययन और अनुसंधान को नई दिशाएं भी दी हैं। अनुवाद के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का समग्र स्वरूप किसी भी भाषा में साकार होता है तथा अध्ययन व अध्यापन में सुगमता और गतिमयता आती है। विश्व कवि टैगोर की अमर रचना गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में विशिष्ट स्थान की अधिकारी बन गई है। इस स्थान का अमरत्व एवं इसकी आत्मा अनुदित होकर पूर्णता अक्षुण्ण रही है एवं विश्व मंच पर टैगोर के साथ भारतीय भाषाओं की अस्मिता को स्थापित कर चुकी है। उनके अतिरिक्त जीवनानंद दास की कविता कैंप डायलॉग प्रकाशन कोलकाता द्वारा प्रकाशित 50 कविताएं बंगला काव्य संकलन बांग्लादेश का अनुवाद पीतिश नंदी ने किया है। जीवनानंद दास द्वारा रचित कविता बनालता सेन का अंग्रेजी अनुवाद चिदानंद दासगुप्ता ने कर अपनी मूल कवि की रचनात्मक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। इसी कवि की रचना बोध का अंग्रेजी अनुवाद अनुवादक क्लिंटन बी सीली एवं फखरुल आलम ने कर अपने प्रयोग धर्मिता का परिचय दिया है। हार्दिक वैद्य की अनेक कविताएं अंग्रेजी में अनुदित होकर विशिष्ट विराट भाव संपदा एवं वैचारिक ऊर्जा एवं उष्मा का परिचय देती रही हैं। कन्नड़ भाषा के महाकवि की रचना का श्री बजनाज ऑफ अलम्मा महाप्रभु के नाम से अनुवाद हुआ है। यह बहुत ही संतुष्टप्रद तथ्य है कि अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी भी अपनी वैचारिक संपदा तथा कविता जैसे सृजनात्मक लेखन के जरिए सारी दुनिया में पांव पसार रही है। वे दिन गए जब अमेरिका जैसे देशों में हिंदी और हिंदुस्तानियों को हिकारत भरी निगाह से देखा जाता था, लेकिन हिंदी धीरे धीरे हिंदुस्तानी के रूप में आगे बढ़ रही है और अब हिंदी को लेकर वे सभी गर्व का अनुभव करते हैं। वहाँ के हिंदुस्तानियों की संपर्क भाषा हो गई है हिंदी। ये सच है कि केवल अंग्रेजी के जानकारों ने ही हिंदी को विश्व रंगमंच पर स्थापित नहीं किया, बल्कि फ्रांस, पुर्तगाल, डच, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और पाकिस्तान के लोगों ने भी अपने अपने देशों में हिंदी के रचनात्मक लेखन एवं इसकी ज्ञान श्रृंखला को अपने अपने भाषाओं में उजागर किया है। बहुत से भारतीय दीनहीन, भूखे, निरक्षर, पेट की पीड़ा से व्याकुल भारत माता की गोद छोड़कर संसार में अनजाने दूर कोने कोने में गुलामों की भांति लाकर बसाए गए हैं। मॉरिशस, अफ्रीका, त्रिनिदाद, फिजी, गयाना के ये लोग अपने सनातन को न भूले और अपने देश की वाणी को माँ कल्याणी मान सदा पूजते रहे। उससे उन्हें मंत्र शक्ति मिली। ये भारत के चंदन के बिरवा थे जिनकी हवा में हिंदी का सुवास था। इनके स्नेह से हिंदी दीप विश्वभर में टिमटिमाते रहे और आज वही बेजुबानों की जुबान महाद्वीप बनकर हिंदी के रूप में विश्व मंच पर प्रतिष्ठित है। केवल पश्चिम के महादेशों के ही लोग नहीं, अपितु चीन और जापान के विद्वानों ने हिंदी के ही नहीं अपितु भारतीय भाषाओं के रचनात्मक साहित्य का अपनी भाषा में अनुवाद कर इसे विश्वव्यापी रूप स्वरूप प्रदान किया है। परंपरा के प्रति रागात्मकता का दृष्टिकोण रखने वाले भारतीय भाषाओं के कवियों ने अपनी अपनी काव्य रचनाओं में मानवता और मानवीयता के भविष्य क्षय की आशंका को पुरजोर तरीके से अभिव्यक्त किया है। इन सभी भाषाओं के कवियों के विचार में कई विचार, उनकी विचारधारा में कई विचारधाराएं और उनकी काव्य प्रवृत्तियों में कई काव्य प्रवृत्तियां सहज उपलब्ध हो गई हैं। इन कविताओं में व्यक्ति की अभावग्रस्तता, वंचित आदमी की वंचना एवं जातीयता, राष्ट्रीयता का प्रबल आग्रह है। मनुष्य विरोधी शक्तियों का विरोध सभी कवि एक स्वर से करते हैं। विश्व मंच पर खड़ी सभी भाषाओं की कविताएं मनुष्य के बेहतर होते जाने का संकेत देती हैं। देश की विभिन्न भाषाओं में रचित स्तरीय कविताओं को अनुवाद के सहारे विश्वजनीन बनाने के स्तुत्य प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। सावरकर जी द्वारा लिखित अनेक मराठी कविताओं के सफल अनुवाद अनुरूपा सिन्हा ने अंग्रेजी में किए हैं, जैसे अमूचा स्वदेश हिंदुस्तान, हिंदुस्तान आवर मदरलैंड के रूप में, आत्मबल, बेड़ी, पहला हफ्ता, शिवावीर, माझे मृत्यु पत्र, मशहूर शायर अगाली रचित काव्य पंक्तियों के अनुवाद भी मसरूल होदा गालिब की गजलों पर संपूर्ण अनुवाद लव सोनेट्स ऑफ गालिब के नाम से किया गया है। डी वेंकट राव ने तेलुगु कवि बराबरा राव की कविताओं का, एस पूर्णाचंद्रा ने कवि करुणाश्री की कविताओं का, सी पी ब्राउन ने योगी बेमना का अनुवाद कर विश्व मंच पर इन कविताओं की विचार संपदा को स्थापित किया है। इसी धारा में श्री सी पी रवि कुमार ने कन्नड़ कवि जी एस शिरुदप्पा की कविताओं का एवं कन्नड़ कवि एम वीरप्पा मोइली की कविताओं का अंग्रेजी भाषा में सफल अनुवाद किया है। एम एल संगप्पा ने तमिल कविताओं के संकलन तमिल कविथाइगल का अंग्रेजी अनुवाद लव स्टैंड्स एलोन के नाम से किया है। हालाबाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन की कविताएं जो बीत गई सो बात गई, अग्निपथ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कि अंग्रेजी अनुवाद ने विश्व मंच की काव्यधारा में कवि के दर्शन चिंतन जीवन दृष्टि को शामिल कर विश्व काव्य मंच को समृद्ध किया है। विश्व काव्य मंच पर कबीर अखरता में छुपी गंभीरता, चिंतन की गहराई, सामाजिकता, दार्शनिकता की गहरी छाप को लेकर स्थापित हुए, प्रतिष्ठित हुए। अब्दुल रहीम खानखाना रचित बाबरनामा अनुदित हुई। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना एवं समन्वयकारी लोक कल्याणकारी चेतना से युक्त कविताएं माया रामचेत मानस के पदों के अंग्रेजी अनुवाद से विश्व काव्य संपदा परिपूर्ण हुई। सूरदास का सूर सागर अनुदित होकर विश्व मंच पर पहुंची। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, प्रज्ञा गीत, बीति बिहारी जागरी, भारत महिमा, होली की रात, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, निराला की कविता तोड़ती पत्थर, सी ब्रेक्स स्टोन, वसंत आया, अराइवल ऑफ स्प्रिंग, संध्या सुंदरी, इवनिंग ब्यूटी के गीत, महारी वर्मा की रचना अधिकार, पंत की रचना सुख दुख, चिदम्बरा, ताज, दिनभर की रचना कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि अंग्रेजी में अनुदित होकर विश्व काव्य मंच पर स्थापित हुई और इन कवियों ने मनुष्यता के बड़े कवि होने का बड़ा परिचय दिया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश। वार्ता थी विश्व फलक पर हिंदी कविता। वार्ताकार थे डॉक्टर कमल कुमार बोस। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। दोस्तों, शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युवानी। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा पालतू पशुओं से प्रेम करें पर सावधानी से, इतिहास में आज का दिन, रोचक तथ्य, समसामयिक समापन, कंपेयरिंग, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कंपेयर अधाशक्ति और खुशी है। प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की होगी। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोग, जिसमें आज चर्चा होगी विश्व पशुजन्य रोग दिवस, जानकारी और बचाव, कुटीर उद्योगों के लिए स्वयं सहायता समूह और सहकारी संस्थाओं की भूमिका, आयुष्मान भारत, गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, बदलते मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल, कंपेयर योगेश्वर राम और महिमा गोल्डन बिलुंग। प्रस्तुति प्रभु शरण की होगी। शाम 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जिसमें आज चर्चा होगी औषधीय पौधों की खेती। प्रश्नोत्तरी, झारखंड में मशरूम की खेती की संभावनाएं, विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत झा। प्रस्तुति प्रभु शरण की है। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया, जिसमें आज चर्चा होगी बेटा बेटी एक समान, पंच परगनिया वार्ता, सशक्त नारी से बनेगा सशक्त समाज। वार्ताकार पराग किशोर सिंह। शाम 7:11 वक्त होगा कार्यक्रम जिले में आजकल का।

7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी अखरा उरा भाषा में। प्रस्तुतकर्ता गौरव कुमार पांडे हैं। शाम 5:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 8 बजे आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम रात के 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का और 9 बजे न्यूज 8:09 का। 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। रात 9:30 पर वक्त होगा पब्लिक स्पीक का और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे सुनहरी यादें। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वायलिन पर प्रस्तुत राग श्याम कल्याण में एक रचना। तबला पर संगत कर रहे हैं श्यामल बोस। रात्रि 11 बजे वक्त होगा हिंदी में समाचार का और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का। 11:10 पर हमारी सभा समाप्त हो जाएगी।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आप ये प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से

0: द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सीमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रेमबनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्ची में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि नए साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष

0: 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉ मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
3: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉ मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय

0: नो पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों की यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
3: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Community celebrities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete with cultural performances. Thousands of Indian nationals and people of Indian origin are expected to gather in the venue, describing the visit as a matter of pride and an opportunity to strengthen their connection with the motherland. Shondipan Dashgupta, Jakarta,

0: प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने धनबाद में कोयले के अवैध खनन और अनाधिकृत परिवहन पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने झारखंड से वीवीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर बजटीय प्रावधान करने का किया अनुरोध। राज्यों को 25,863 करोड़ की पहली किश्त जारी की। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर दे रहे श्रद्धांजलि। पूरे झारखंड में मॉनसून हुआ सक्रिय, अगले चार दिनों तक बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और रांची के खेलगांव में आयोजित तीसरी रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न। अभिषेक वर्मा ने दो अलग अलग स्पर्धाओं में जीता स्वर्ण और रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धनबाद और आसपास के इलाकों में अवैध कोयला खनन और चोरी पर चिंता जताई है। वे कल नई दिल्ली में कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी के मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। श्री शाह ने अवैध खनन और कोयले के अनाधिकृत परिवहन पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करने को निर्देश दिया। इसके साथ ही श्री शाह ने अधिकारियों को CISF की तैनाती के लिए प्राथमिकता वाली सूची में कोयला क्षेत्र को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने अवैध खनन के इलाकों और उसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए हाई रिजोल्यूशन कैमरों का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने झारखंड से वीवीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर आवश्यक बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीवीजी रामजी की क्रियान्वयन की ऑनलाइन समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राज्यों को इस योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ की पहली किश्त भी जारी की।
1: को पूरे देश में लागू करने में 3 साल

0: लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है। एक साल दो साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम झारखंड में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने का दिशा में अहम साबित होगा। 9 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री सोरेन विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ राज्य में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक चुनौतियों और नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्नी मीरा मुंडा के साथ कल स्वगणना प्रपत्र भरा। इस अवसर पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज कराना और उसका समय समय पर सत्यापन कराना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
2: 20 वर्षों में एक बार गहन पुनरीक्षण का कार्य चलता है। सभी मतदाताओं को 2003 और 2026 के बीच में ये सूचना ग्रहण करना, ये सूचना देना कि मतदाता सूची में उसका नाम रहे और जो जिनकी मृत्यु हो गई उसका नाम उससे हटे और नए जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके उसका नाम जुड़े।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा आज रांची में जामताड़ा, हजारीबाग और रांची जिले से जुड़े 14 मामलों की सुनवाई करेंगी। सुनवाई में नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए भूमि अधिग्रहण, आदिवासी भूमि विवाद, सरना स्थल, खतियान भूमि अतिक्रमण और मुआवजा सहित कई मामलों पर विचार किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इधर जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड मुख्यालय के डाक बंगला मैदान में कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां स्मरण दिवस सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से सीख लेने की अपील की।
3: विधायक सेना प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के स्थापना और हमें 75 वर्षों तक बंगाल में सरकार बनाने में पार्टी पाई और वास्तव में बंगाल के लोगों की जो आजादी है वो 4 मई को ही जब वहाँ चुनाव का जब परिचार मई को ही बनो।
1: दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के चांडल स्टेशन पर आज से 12 जुलाई तक विकास कार्यों को लेकर कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर करने की अपील की है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मॉनसून सक्रिय हो गया है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि पूरे राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आज रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा और गुमला में भारी बारिश की संभावना है।
4: लो प्रेशर अभी बना हुआ है और तो इसे आने वाले दिनों में झारखंड में भी बारिश सबको बढ़ते हुए दिखेगी। अभी बारिश लगभग रोज देखने को मिलेगी और 2-3 दिन बाद से लगभग सभी इलाकों में आपको ठीक बारिश देखने को मिलेगी।
1: रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव शूटिंग रेंज में आयोजित 3री रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गई। अभिषेक वर्मा ने 25 मीटर स्टैंडिंग राइफल स्पर्धा में स्वर्ण और 50 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर दोहरी सफलता हासिल की, जबकि मन्नत कुमारी, कीरत सिंह और रौनक राज ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। समापन समारोह में IG प्रभात कुमार

और आईजी अनूप बिरथरे ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने धनबाद में अवैध कोयला खनन और परिवहन पर रोक लगाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। इसके अलावा प्रभात खबर ने अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में आज ट्रस्ट की होने वाली बैठक की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने लिखा है, चंपत राय के विकल्प की तलाश शुरू, आज होगी ट्रस्ट की बैठक। हिंदुस्तान ने लिखा है, राज्य में साइकिल बाइक फैक्ट्री लगाने की झारखंड सरकार की तैयारी। दैनिक भास्कर ने रांची में संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, आतंकी साजिश का हिस्सा होने के खुलासे को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने धनबाद में कोयले के अवैध खनन और अनाधिकृत परिवहन पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने झारखंड से वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर बजटीय प्रावधान करने का किया अनुरोध। राज्यों को 25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी की। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर दे रहा श्रद्धांजलि। पूरे झारखंड में मॉनसून हुआ सक्रिय, अगले चार दिनों तक बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और रांची के खेलगांव में आयोजित तीसरी रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न। अभिषेक वर्मा ने दो अलग अलग स्पर्धाओं में जीता स्वर्ण और रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आप ये प्रसारण हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे हैं। अमृता के साथ।

दोस्तों आइए सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग नागपुरी भाषा में। कलाकार हैं इग्नेश कुमार और साथी।

दोस्तों, कार्यक्रम रस रंजन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपकी रेडियो दोस्त अमृता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म चांदनी के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और बबला मेहता ने, संगीत दिया है शिवहरि ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म साजन से, जिसे गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम ने, बोल हैं समीर के और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों, श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज के स्वर में आई।

दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म सत्या से। इस गीत को गाया है आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने, संगीत दिया है विशाल ने और रचना है गुलजार की।

दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक और शान के स्वर में। संगीत है जतिन ललित का और रचना प्रसन्न जोशी की है। फिल्म का नाम है हम तुम।

0: मंडरा है,
1: बड़ा है।
0: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
1: टर
0: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
1: मेरी
0: है
1: भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
1: जाए,
0: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
1: चलती,
0: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती।
2: दोस्तों इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम रसरंजन यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अलहैया बिलावल में ध्रुपद गायन, रचना चारताल में निबद्ध है, कलाकार हैं सुरेश प्रसाद गुप्ता, पखावज पर साथ दे रहे हैं राम बचन पाठक और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दोस्तों, इसी के साथ शास्त्रीय संगीत यहीं पे संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चले। कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा नशा मुक्त समाज के निर्माण में जन जन की भागीदारी, भेंट वार्ता, अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन की तत्परता। भेंट वार्ताकार आशुतोष शेखर, भेंट करता सिंधु मिश्रा, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की होगी, प्रस्तुति स्वर सिंधु मिश्रा की होगी।

कार्यक्रम आओ साथ चले की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर यानी नशा मुक्त समाज के निर्माण में जन जन की क्या भागीदारी है, इस पर विचार विमर्श करना चाहूंगी। श्रोताओं, नशा आज केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह परिवार, समाज और राष्ट्र के समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। शराब, तंबाकू, गुटखा, अफीम, गांजा और अन्य मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है, ये हम सब जानते हैं। नशे की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि परिवारों को भी तोड़ती है, सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देती है और देश की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए नशा मुक्त समाज का निर्माण आज की सबसे बड़ी सामाजिक आवश्यकताओं में से एक है। श्रोताओं, नशा मुक्त समाज की स्थापना केवल सरकार या किसी एक संस्था के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग, युवा, महिलाएं, शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं और प्रशासन, सभी की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। जब जन जन इस अभियान को अपना कर्तव्य मानकर आगे बढ़ेगा, तभी एक स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। श्रोताओं, अब इसके दुष्परिणामों की बात अगर करें तो सोचने समझने की क्षमता को नशा प्रभावित करता है। शुरुआत में यह केवल मनोरंजन या तनाव दूर करने का साधन प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे यह व्यक्ति की आदत और फिर लत बन जाती है। नशे की लत से ग्रसित व्यक्ति अपने परिवार, समाज और स्वयं के प्रति जिम्मेदारियों को भूलने लगता है।

0: तेजी से आ रहा है। यह स्थिति राष्ट्र के भविष्य के लिए अत्यंत चिंतनीय है, क्योंकि युवा ही किसी देश की सबसे बड़ी शक्ति और संपत्ति होते हैं। श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों की स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक चेतना पर निर्भर करता है। समाज का एक बड़ा वर्ग नशे की गिरफ्त में यदि हो तो विकास की गति प्रभावित होती है। नशा मुक्त समाज केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए भी जरूरी है। नशा मुक्त समाज में अपराध कम होते हैं, परिवारों में सुख शांति बनी रहती है, युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगती है और सामाजिक सौहार्द बढ़ता है। ऐसे समाज में शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। इसलिए नशा मुक्त समाज का निर्माण एक सामाजिक आंदोलन के रूप में किया जाना चाहिए। परिवार किसी भी व्यक्ति की पहली पाठशाला होती है, यह हम सब जानते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि माता पिता स्वयं नशे से दूर रहें और बच्चों को अच्छे संस्कार दें तो बच्चों में नशे की प्रवृत्ति विकसित होने की संभावना कम हो जाती है। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के व्यवहार, मित्रों और गतिविधियों पर सकारात्मक निगरानी जरूर रखें, बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें और उन्हें तनाव, असफलता और सामाजिक दबाव से निपटने के लिए उचित मार्गदर्शन दें। परिवार का स्नेह, विश्वास और सहयोग बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकता है। शिक्षा संस्थानों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। विद्यालय और महाविद्यालय समाज निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। शिक्षण संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित जरूर किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को न केवल पाठ्यक्रम के माध्यम से बल्कि संगोष्ठियों, वाद विवाद प्रतियोगिताओं, नाटक, पोस्टर प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी जागरूक किया जाना चाहिए। इस ओर हमारे शिक्षकों की भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे शिक्षक विद्यार्थियों के मार्गदर्शक होते हैं। वे विद्यार्थियों को सकारात्मक जीवन मूल्यों, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। खेल, योग, संगीत और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है। श्रोताओं और खुद युवाओं की भागीदारी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली मानी जाती है। यदि युवा वर्ग नशा मुक्ति अभियान का नेतृत्व करे तो समाज में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। युवाओं को स्वयं नशे से दूर रहकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। श्रोताओं, नशा मुक्त अभियान से जुड़ी और हमारी चर्चा होगी, उससे पहले मैं बता दूं कि आज एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर हम आपकी विशेष जानकारी करवाने जा रहे हैं और वह है अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन की तत्परता। इस ओर प्रशासन के द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस पर विशेष जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं पुलिस अधीक्षक गढ़वा श्री आशुतोष शेखर। तो आइए सर से लेते हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर विशेष जानकारी।
1: सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु जी, और आपको भी नमस्कार और साथ ही सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
1: अभी देखा जा रहा है कि अफीम की खेती को लेकर बहुत सारी मुहिमें चलाई जा रही हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँ कि ये अफीम है क्या और इसके क्या दुष्परिणाम हैं?
2: अफीम की खेती की जो समस्या है, अफीम एक तरह का पौधा है जिसको पॉपी प्लांट कहते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म में, और ये एक पापावर सोमनीफेरम प्रजाति के पौधे को अफीम का पौधा कहा जाता है
1: जी।
2: अफीम के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी खेती कानून के तौर पर प्रतिबंधित है। पूरे देश भर में केवल दो जगहों पर इस खेती को सरकारी निगरानी में कराया जाता है, जो कि पूर्णतः मेडिसिनल यूज के लिए किया जाता है। इसके अलावा उन दो जगहों को छोड़कर देश भर में अगर कहीं भी इसकी खेती होती है तो वो पूर्णतः इलीगल है, गैरकानूनी है और विधि के खिलाफ है। और इसी को लेकर एक विशेष एक्ट भी है।

0: सरकार की तरफ से 1985 में बनाया गया था नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसके अंदर इसकी खेती और इसका कोई भी प्रयोग एक्सेप्ट मेडिसिनल यूज जहां जहां रेगुलेटेड है, उसके अलावा इसका किसी भी फॉर्म में खेती करना और किसी भी फॉर्म में यूज करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
1: तो ये प्रतिबंध लगाया गया है कानूनन, लेकिन सर यहां पर मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या इसके कोई दुष्परिणाम भी हैं या दुष्परिणाम सामने देखे गए हैं?
0: अभी तक जो हम लोगों ने झारखंड राज्य में और विशेषकर रांची जिला में देखा है, जो दुष्परिणाम है मुख्यतः एक सोसाइटी के लेवल पर कि लोग अफीम की खेती करके छोटे समय में कम समय में ज्यादा ज्यादा पैसा कमाने के पीछे पड़ते हैं, तो उसका सामाजिक स्तर पे दुष्परिणाम तो दिखता ही है। साथ ही साथ अफीम की खेती से ये भी कहा जाता है कि जो भूमि है खेती योग्य उसमें भी उसकी उपजता में भी नुकसान होता है। तो जहां भी हमारे किसान भाई या हमारे गांव के लोग किसी भी दुष्प्रेरणा से प्रेरित होकर या किसी डर या भय से प्रेरित होकर या प्रलोभन से प्रेरित होकर अगर अफीम की खेती करते हैं तो ना ही केवल उनकी जमीन बल्कि पूरे समाज पे और गांव के स्तर पे जो सामाजिक वातावरण है उसमें डेफिनेटली एक दुष्प्रभाव पड़ता है जो उस गांव के लिए और पूरे समाज के लिए सही नहीं है।
1: मुझे तो लगता है कि जो खेती करने वाले हैं अफीम की, वो कहीं ना कहीं या तो उनके पास जानकारी का अभाव है या फिर जानते हुए भी ये खेती कर रहे हैं अपनी आर्थिक आमदनी को बढ़ाने के लिए, या फिर कानून संबंधी भी जानकारी उन्हें नहीं है इसलिए भी वो खेती कर रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और आप देख भी रहे हैं, इन समस्याओं को सुलझा रहे हैं, तो आपने क्या पाया है?
0: इस बात को तो हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि जो आम जनता है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो गांव है वहां के लोगों के बीच जो इसके कानूनी पक्ष है उसके बारे में जो जानकारी होनी चाहिए उसकी अभाव है, और ये भी बात है कि कहीं ना कहीं जो सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें भय से या पैसे के प्रलोभन से लोग इसकी खेती करने को तैयार होते हैं। इसके विरोध में और ताकि अफीम की खेती का विनष्टीकरण किया जाए और लोगों को इसके दुष्परिणाम के बारे में बताया जाए, इसको लेकर हम लोग अपने स्तर से भी, प्रशासन की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी लगातार गांवों में जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों के बीच जाकर उनको इसके दुष्परिणाम के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ जो पुलिस का माध्यम है, चौकीदार जो लास्ट पॉइंट होता है हमारा गांव की कनेक्टिविटी के लिए और विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहां जहां प्रभावित एरिया रहा है उसमें हम लोगों ने ग्राम के मुखिया एवं वार्ड मेंबर्स के साथ भी मीटिंग की है, उन लोगों को भी इसके दुष्परिणाम के बारे में बताया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सारे श्रोताओं को भी, कि बीच में ऐसे भी एग्जाम्पल सामने आए हैं जहां पे लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी देने के बाद लोगों ने स्वतः इस अफीम की खेती का विनष्टीकरण किया है, जो अपने आप में एक स्वागतपूर्ण कदम है।
1: सर अब बारी आती है कि जब हमने जान लिया कि कानूनन ये अपराध है अफीम की खेती करना, या ये भी हमने जान लिया आपके मार्फत कि इसके दुष्परिणाम भी काफी हैं, भूमि जो है वो बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती और फिर हम कोई खेती उस पर नहीं कर सकते, इन सारी बातों की जानकारी जब हो जाती है तो अब सवाल ये उठता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्रामीण भाई बहन इस खेती को कर रहे हैं, अफीम की खेती से जुड़े हुए हैं और आर्थिक आमदनी भी उनकी हो रही है, अगर उनसे ये चीजें छीन ली जाएं, तो फिर उनका क्या हाल होता है? और आप इन समस्याओं को देख रहे हैं तो आप बखूबी ये बातें बता सकते हैं।
0: जहां तक अफीम की खेती की बात है तो जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि एक प्रतिबंधित खेती है जिसकी खेती नॉर्मली एक किसान या कोई भी इंसान अपने खेतों में नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप देश के कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और जहां तक जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट, उसमें जो सजा का प्रावधान है वो बहुत ही कठिन है और लंबी अवधि की सजा उसमें दी जाती है। तो अगर आप इसको करते हुए पाए जाते हैं तो आप देश के कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और आप सजा के पात्र हैं। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसे कमा भी लेते हैं, तो अगर आप पकड़े जाते हैं या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, तो आपको जो नुकसान है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा नुकसान है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो आर्थिक फायदा लोगों को दिखता है इसी खेती में, वो एक कोई भी बहुत ही ऐसा प्रेरणा स्रोत होगा जिसकी वजह से लोग खेती करेंगे। साथ ही मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, जिससे कि खेती के नहीं केवल खेती बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी गांव के लोगों को स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू हेल्थ फैसिलिटी दी जा रही हैं। तो इन सब का एक व्यापक जो ग्रामीण लाइफस्टाइल है उसमें असर पड़ता है। और मेरे हिसाब से, मैं फिर से आपके माध्यम से अपने जो किसान भाई बहन अफीम की खेती में लिप्त हैं उनसे फिर से आग्रह करूँगा कि वो इसको त्याग दें और जो नॉर्मल खेती है, जो नॉर्मल उनके क्षेत्रों में फसल हो रही है उसकी खेती करें, और साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं प्रदान की जा रही हैं सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, उसका लाभ उठाएं और भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन यापन करें।
1: जी बिल्कुल सर। और एक बात और है कि हमारे झारखंड राज्य में जहां हम नक्सलवाद से जूझ रहे हैं, तभी अब एक और समस्या खड़ी हो चुकी है और वो है अफीम की खेती। तो सर, हमारे झारखंड राज्य में और जहां तक आपके कार्याधिकार के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में क्या स्थिति?
0: जहां तक मेरे कार्य क्षेत्र की बात है तो मुख्य रूप से जो चार थाना क्षेत्र हैं वो इससे प्रभावित हैं, विशेषकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं उन्हीं में अफीम की खेती का दुष्प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि वहां पे जो नक्सल दस्ते थे उनका असर रहा है और लोगों को भय या प्रलोभन के द्वारा, उनके द्वारा इसको अफीम की खेती को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो मुख्य रूप से हमारे कार्यक्षेत्र में चार थाने हैं जहां पे इसका दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। उसके अलावा झारखंड राज्य में टोटल फिगर तो मैं बताने में सक्षम नहीं हूं, बट कुछ जिले बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफेक्टेड हैं और जहां पे अफीम की अवैध खेती की जा रही
1: है। सर, जब इस खेती को हम अवैध घोषित कर चुके हैं और लोगों में जिनमें जागरूकता नहीं है, मैं समझती हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनमें जागरूकता अवश्य आएगी और लोग इस ओर सोचेंगे जरूर। सर, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे ग्रामीण जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, साक्षरता दर उनमें कम है और उनकी समझ भी ये नहीं है क्या सही है क्या गलत है, ऐसे में इस ओर इनका आ जाना, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि वो बहलावे फुसलावे में भी आकर इन सब चीजों में लग जाते हैं?
0: आपका ये कहना कुछ हद तक जायज है, बट इन्हीं चीजों से जो ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो हमारे गांव के भाई बहन रह रहे हैं और जो अफीम या इस तरह की अन्य खेती करने के लिए प्रभावित होकर खेती करते हैं, उनको हम लोग उनके बीच जो सरकारी प्रावधान है उसके अंतर्गत जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। साथ ही जो, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा कांटेक्ट पॉइंट है गांव तक, जो संबंधित गांव के मुखिया होते हैं या वार्ड मेंबर होते हैं या पंचायत समिति सदस्य होते हैं, उनके माध्यम से भी थाना स्तर पर बराबर अंतराल पर मीटिंग करके उनको इस चीज़ की जागरूकता दी जाती है कि ये अवैध खेती है और आप अपने क्षेत्र में जाकर चौकीदार के माध्यम से एवं अन्य जो भी सरकारी कर्मचारी उस क्षेत्र में निवास करते हैं या कार्यरत हैं उनके माध्यम से भी हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि ये अवैध खेती है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसमें संलिप्त हैं वो इसको इसका त्याग करें, इसका नष्टीकरण करें और इसके दुष्परिणामों को समझें। और हम लोग रांची जिला में इसकी खेती के विनष्टीकरण एवं समाप्ति की तरफ कदम बढ़ाएं।
1: एक पुलिस अधीक्षक होने के नाते आप एक और समस्या जो हमारे झारखंड राज्य की है और वो है नक्सलवाद की समस्या। मैं चाहूंगी कि इस विषय पर भी आप हमारे जो श्रोता हैं उन्हें बताएं कि मुख्य धारा से जुड़कर रहने के क्या फायदे हैं और अगर आप मुख्य धारा से भटक चुके हैं तो क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं।
0: जो लोग हमारे भाई बंधु, हमारे राज्य के भाई बंधु जो भटक कर नक्सलवाद और वामपंथी विचारधारा से जुड़कर कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के विचारधारा को फॉलो करते हैं उनके लिए मेरा अनुरोध है कि अभी भी सरकार की जो नीति है, सरेंडर पॉलिसी है, वो बहुत ही आकर्षक है, जिसमें आपको मुख्य धारा में आपका हमेशा स्वागत है। जो भी मुख्य धारा से भटके हुए लोग हैं उनका हम हमेशा स्वागत करते हैं कि आप पुनः मुख्य धारा में लौटे। जो विचारधारा लेकर वो कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार और देश के हित में नहीं है और हम सब मिलकर देश के हित में कार्य करें, मेरी उन लोगों से गुजारिश रहेगी। साथ ही जो लोग वापस मुख्य धारा में जुड़ने आते हैं उनके लिए ढेर सारी सुविधाएं सरकार के माध्यम से दी जाती हैं, जिसमें अनुदान राशि के अलावा उनके बीमा का खर्चा उठाया जाता है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, उनके आवासन का, तो साथ ही उनके जीवन यापन के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट की अगर ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो वो भी दी जाती है। तो जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है सरकार की, जो नीति है, वो बहुत ही आकर्षक है और आपके कार्यक्रम से मैं पुनः जो भाई बंधु भटके हुए हैं मुख्य धारा से उनको मैं पुनः मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं और मैं उनका स्वागत करूंगा अगर वो लोग पुनः मुख्य धारा में जुड़ने को तैयार हैं।
1: तो आत्मसमर्पण नीति का लाभ वो कैसे ले सकते हैं और क्या क्या सुविधाएं अभी उनको मिल रही है, इस बारे में भी मैं आपके मार्फत उन तक संदेश पहुंचाना चाहूंगी।
0: जो मुख्य रूप से एक जो पहली फाइनेंशियल हेल्प मिलती है वो अनुदान राशि के रूप में है जो 3 सालों तक मिलती है उनको। जो लोग सब जोनल कमांडर से ऊपर की रैंक में रहते हैं किसी भी नक्सलवादी संगठन में उनके लिए वो अनुदान राशि 6 लाख रुपए है और जो दस्ता सदस्य हैं और नीचे के लीडरशिप पोजीशन में रहते हैं उनके लिए 3 लाख की अनुदान राशि है जो 3 सालों तक बराबर किस्त में उनको दी जाती है। साथ ही जो लोग इंदिरा आवास के लिए एलिजिबल हैं उनको इंदिरा आवास के मार्फत घर की और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अदरवाइज अगर 4 डिसमिल जमीन वो लेना चाहें तो वो भी उपलब्ध कराई जाती है सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो लोग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो उसके लिए इच्छुक हैं, उनको ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है सरकार के द्वारा ताकि वो आगे चलकर किसी एक एरिया में अपने आप को डेवलप कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है एवं उनके पूरे परिवार का बीमा भी कराया जाता है और बीमे की राशि भी सरकार के द्वारा पे की जाती है। तो ये मुख्य रूप से जो आकर्षण के केंद्र हैं वर्तमान जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है उसमें। उसके अलावा जो उनके ऊपर केसेस होते हैं, जो कांड दर्ज रहते हैं, उन कांडों में भी जो सरकार के पक्ष की तरफ से उनको जो सहायता प्रदान की जा सकती है वो की जाती है।
1: सर, यहाँ पर एक सवाल और मैं करना चाहूंगी। जहाँ तक इन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, इन लोगों ने बताया है कि जब हम मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करते हैं, जब हम आत्मसमर्पण करते हैं, गांव और परिवार के बीच में पहुंचते हैं तो वहाँ लोग सहर्ष हमें स्वीकार नहीं करते और कई बार ऐसा होता है कि वे सोचते हैं कि शायद अगर ये हमसे जुड़कर रहेंगे तो इन पर कोई खतरा आ सकता है। तो भयमुक्त होने के लिए आप अपनी ओर से क्या कहेंगे?
0: जो भी मुख्यधारा में वापस जुड़े हैं उन लोगों को जहां भी जो भी सुविधा मुहैया कराने की बात होती है वो प्रशासन के द्वारा कराई जाती है। जहां भी जमीन देकर उनके आवासन की व्यवस्था हो या उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था हो या उनके जीवन यापन में जो भी हेल्प सरकार के द्वारा नीति के आलोक में की जाती है वो कराई जा रही है। और अगर ऐसी नॉर्मली जो हम लोग के दृष्टिकोण से

0: आवश्यक है कि सुरक्षा मामले में उनको कहीं भी चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी ऐसी बात आएगी तो आप लोकल प्रशासन से संपर्क करें, और मुझे लगता है कि हर जिला स्तर पे एवं जो भी पदाधिकारी हैं जिला प्रशासन के, वो बिल्कुल इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, और इस तरह की किसी भी भय से परेशान होकर रहने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल उनको भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है।
1: सर, अंत में जो श्रोता अभी सुन रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से अगर वो भटक चुके हैं और इस ओर वो वापस आना चाहते हैं, अपनी ओर से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
0: मैं पुनः आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को और जो हमारे भाई बंधु नक्सलवाद की तरफ भटक कर चले गए हैं, उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि वो मुख्यधारा में वापस लौटें। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की सरेंडर पॉलिसी है, उसमें जो लाभ और जो व्यवस्था उनके लिए दी गई है उसका लाभ उठाएं, अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन में पुनः वापस आएं और अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने गांव के साथ, अपने जीवन को खुशहाली के साथ जिए और इस देश की प्रगति में, देश के निर्माण में अपना जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सहयोग हो सकता है वो करें, ताकि गांव के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे हम उनके कंस्ट्रक्टिव रोल के लिए उनको जाने, ना कि उनकी जो भटकी हुई विचारधारा है उनके लिए उनको पहचान किया जाए।
1: सर, अपना बहुमूल्य वक्त हमें देने के लिए और इतने विस्तार से अफीम की खेती और नक्सलवाद, इन दोनों विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी हम जानकारी ले रहे थे अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन की तत्परता। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे गढ़वा पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष शेखर। सर ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी और जितनी भी बातें इन्होंने बताई, मैं समझती हूं कि इससे हमें लाभ जरूर मिलेगा। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे बातें कर रहे थे कि नशा मुक्त अभियान में जन जन की भागीदारी क्यों जरूरी है। इस विषय पर नशा मुक्त समाज का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक स्वयं को इस अभियान का भागीदार माने। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह स्वयं नशा नहीं करेगा और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगा, तो इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। अपने परिवार और समाज में नशा विरोधी जागरूकता फैलाना, युवाओं को खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना, नशे के अवैध कारोबार की सूचना प्रशासन को देना, नशाग्रस्त व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनके पुनर्वास में सहयोग करना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश फैलाना, विद्यालयों, महाविद्यालयों और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना, यह महत्वपूर्ण कदम हमारे द्वारा उठाए जा सकते हैं। नशा किसी भी समाज के लिए एक गंभीर अभिशाप है। इससे व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र तीनों प्रभावित होते हैं। नशा मुक्त समाज का निर्माण केवल कानूनों या सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यापक जन जागरण और जन भागीदारी की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारा आज का आओ साथ चलें कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को दें विदा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले। कार्यक्रम में चर्चा था का विषय था नशा मुक्त समाज के निर्माण में जन जन की भागीदारी, भेंट वार्ता, अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन की तत्परता। भेंट वार्ताकार आशुतोष शेखर, भेंट करता थी संध्यु मिश्रा, प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की और प्रस्तुति स्वर थी सिंधु मिश्रा की। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार रांची।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम जोहार रांची।

0: जोहर रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ रचना
1: और मैं हूँ अमृता।
0: आप सबको हमारा जोहार
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम में हाजिर हैं हम ढेर सारी जानकारियाँ लेकर, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत। क्यों अमृता?
1: बिल्कुल।

0: हाँ मृत है तो बिल्कुल बात सच है कि अगर प्रेम रहे तो सब कुछ सही रहता है, हमें आपस में हमेशा प्रेम से ही
1: हाँ रहना
0: रहना
1: चाहिए।
0: चाहिए।
1: ठीक
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। और यदि

0: हमारे भीतर सीखने की ललक हो तो हम जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, और यदि ये ललक समाप्त हो जाए तो हमारे भीतर उदासीनता छा जाती है।
1: हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन कभी कभी कुछ नया सीखना या समझना हम नहीं चाहते हैं ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्वयं को इतना बुद्धिमान समझ बैठते हैं कि हमारे लिए कुछ नया सीखने को शेष नहीं रह जाता।
0: हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमें कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं, हमको तो सब कुछ आता है। और इससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक अहंकार की भावना जन्म ले लेती है, और ये अहंकार ही हमारे सीखने की प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है। जबकि जीवन का प्रत्येक पड़ाव हमें बहुत कुछ सिखाता है। पर्वत, नदी, झरने, पशु पक्षी और कीट पतंगे आदि, किसी से भी हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं।
1: देखा जाए तो यह दुनिया ही एक पाठशाला है जो हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाने के लिए आतुर है। इसीलिए अपने अंदर सीखने की ललक को कभी मरने ना दे, और कहते भी रहे कि सीखने की कोई उम्र नहीं।
0: ऐसा हम सब कहते हैं।

0: हम जितना आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं
1: मानसून के बारे में। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज जो है झमाझम बारिश हो रही है,
0: वो कल से ही हो रही है,
1: कल से ही काफी बारिश हो रही है।
0: हाँ, तो अब ऐसा लगता है कि जो मानसून आ चुका है, जो हमारी मानसून को लेकर इंतजार था वो खत्म हुआ।
1: बिल्कुल, राज्य में जो है करीब 20 दिनों के इंतजार के बाद मानसून का असर से बारिश का दौर जो है
0: शुरू हो चुका है,
1: है ना। और ये बारिश जो है पता नहीं अब देखते कितने दिन तक रहती है।
0: हाँ, ये अनुमान तो लगाया गया है कि आगे बारिश होगी, लेकिन झारखंड में जो है मानसून अब भी कमजोर है। रांची में बारिश अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी अभी मानसून जो कहा जा रहा है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो कमजोर है और जुलाई के दूसरे सप्ताह में

0: अच्छी वर्षा होगी, ऐसा
1: हाँ,
0: कहा जा रहा है।
1: मौसम विभाग के अनुसार जो रांची में है 30 मिलीमीटर तक ही बारिश दर्ज की गई है, वहीं पूर्वी सिंहभूम में 13.1 मिलीमीटर और पश्चिमी सिंहभूम में 15.0 डिग्री मतलब मिलीमीटर बारिश की गई है।
0: ऐसा मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची समेत झारखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है और ये निम्न दबाव अब गति गहरे निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है और उड़ीसा के उत्तरी भाग व झारखंड के समीप से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा है। इसके प्रभाव से ही आज और कल तक के जो है इलाकों में राज्य में बारिश होने की आसार है और ये भी कहा जा रहा है कि 6 और 7 यानी कि आज और कल तक है रांची सहित कई क्षेत्रों में गरज चमक वज्रपात तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और 7 और 8 जुलाई को राज्य के उत्तरी पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में भारी वर्षा हो सकती है। यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश अभी होगी कल तक होने
1: की और काफी बारिश होने की वजह से जो बत्ती भी गुल हो जा रही है, काफी जगह है कि तार काफी आंधी होने की वजह से तार टूट जा रहे हैं, बिजली के खंभे उखड़ जा रहे हैं।
0: हाँ तो बिजली की समस्या तो हो ही रही है, लेकिन इसका एक जो कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है क्योंकि उनको जो है इस समय बारिश का इंतजार रहता है उनकी फसलों के लिए, तो किसान इससे
1: किसान भाई हमारे खुश होंगे,
0: खुश हैं। तो ठीक है, चलिए अभी मौसम से हमें गर्मी से राहत मिली है तो आप इस मौसम का आनंद लें और साथ ही साथ हमारे साथ इस गीत का भी।

0: तो अमृता, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि आज के दिन क्या कुछ खास घटा था देश और दुनिया में।
1: हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। आज के दिन जो है हमें जानना है कि इतिहास में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई थी। तो भारतीय वनस्पति उद्यान का गठन जो है 6 जुलाई 1787 को पश्चिम बंगाल के शिवपुर में किया गया, जिससे यह देश के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण वनस्पति उद्यानों में से एक बन गया। 6 जुलाई 1885 में फ्रेंच रसायन शास्त्री और सूक्ष्म जीवी विज्ञानी लुई पाश्चर ने सफलतापूर्वक एक एंटी रेबीज वैक्सीन का परीक्षण किया। यह चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी।
0: और 1892 में आज ही के दिन दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य के रूप में चुना गया। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने उपनिवेशक सरकार में अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
1: मालवी एक अफ्रीकी देश ने 6 जुलाई 1964 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की और यह दिन देश का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से बंद नाथुला पास भारत और चीन के बीच एक व्यापार केंद्र के लिए 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला था।
0: और सन 1944 में आज ही के दिन महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। और 1785 में आज ही के दिन डॉलर को एक वोट से अमेरिका की करेंसी घोषित कर दिया गया था।
1: आज ही के दिन 1975 में कोमोरोस को फ्रेंच से आजादी मिली थी, इसलिए आज यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 1947 में आज ही के दिन सोवियत संघ में AK-47 राइफल का उत्पादन शुरू किया गया था। एक फुल ऑटोमेटिक AK-47 एक मिनट में 100 गोलियां दाग सकती है। इसका इस्तेमाल लगभग हर देश की सेना जरूर करती है।
0: और 2005 में मेक्सिको में मानव का 40,000 वर्ष पुराना पद चिन्ह मिला था। और 1959 में आज ही के दिन

0: वेल्लोर अस्पताल में पहली सफल ओपन हार्ट सर्जरी की गई।
1: सन 2006 में आज ही के दिन विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने पुर्तगाल को हराया। 2008 में दक्षिणी मिस्र ने 5000 पुराने साल शाही कब्रिस्तान की खोज की।
0: और आज ही के दिन 2012 में संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2012 के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 2012 से 2014 की अवधि में चीन सबसे आकर्षक निवेश स्थल रहा और इसके बाद अमेरिका और भारत का स्थान रहा।

0: हम लोग बातें कर रहे थे अमृता इतिहास
1: के बारे में।
0: तो अब आज
1: अब
0: बातें
1: करते हैं
0: उनकी,
1: कि आज जो है किन किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था।
0: बिल्कुल।
1: तो आज के दिन 6 जुलाई 1887 में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का जन्म हुआ था। वे एक प्रसिद्ध विज्ञान शास्त्रविद और समाज सुधारक थे। वे भारत के पहले आधुनिक स्वदेशी इतिहासकार थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य के विद्वान की हैसियत से भंडारकर ने संस्कृत की प्रथम पुस्तक और संस्कृत की द्वितीय पुस्तक की भी रचना की, जो अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत सीखने की सबसे आरंभिक पुस्तकों में से एक है।
0: और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म भी 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था। वे शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। 33 वर्ष की अल्पायु में ही वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और इस पद पर नियुक्ति पाने वाले वे सबसे कम आयु के कुलपति थे।
1: अनिल माधव दवे का जन्म 6 जुलाई 1956 को हुआ था। वो एक भारतीय पर्यावरणविद और राजनेता थे, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे।
0: बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को हुआ था। उन्हें अहिंसा, शांति और तिब्बत की स्वतंत्रता के शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए 1989 में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: और अभिनेता रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 को हुआ था। रणवीर सिंह का पूरा नाम रणवीर सिंह
0: भवनानी है। और रणवीर सिंह को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल,
0: उनकी
1: बिल्कुल।
0: कितनी सारी फिल्में हिट हुई हैं, जब से उन्होंने फिल्म में आने की शुरुआत की बैंड बाजा बारात से लेकर, और अभी जो उनकी पिक्चर आई थी धुरंधर, उन्होंने काफी संघर्ष किया है और इस मुकाम तक वो पहुंचे हैं। तो उनको देते हैं जन्मदिन की बधाई और सुनते हैं उनकी पहली फिल्म यानी बैंड बाजा बारात से उन पर फिल्माया गया गीत।

0: अब बातें उनकी जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो 1986 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जगजीवन राम का निधन हुआ था। जगजीवन राम ने समाज में फैली छुआछूत की प्रथा का विरोध करते हुए समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ 1935 में एक लीग की स्थापना की थी। जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जगजीवन राम सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री थे और तब उन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया था।
1: और 2002 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति जो है
0: धीरू भाई
1: अंबानी का निधन हुआ था। सिर्फ 30 सालों में उन्होंने अपने छोटे से कारोबार को एक विशाल कंपनी में बदल डाला, जिसे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है।
0: बिल्कुल। और हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक प्रताप नारायण मिश्र का निधन 6 जुलाई 1894 को हुआ था। और 6 जुलाई 2018 में प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार और नर्मदा प्रेमी अमृतलाल वेगड़ का निधन हुआ था। इनके द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत सौंदर्यनीय नदी नर्मदा के लिए उन्हें सन 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: और 1997 में आज ही के दिन मशहूर फिल्मकार चेतन आनंद का निधन हुआ था। 1946 में आई फिल्म नीचा नगर के

0: इतिहास की बातें तो अमृता हो गई, अब कुछ थोड़ा सैर सपाटे की बात भी हो
1: हाँ
0: जाए।
1: बिल्कुल। और ये जो मौसम है बारिश का मौसम है, तो इस समय अगर देखा जाए तो फॉल्स की खूबसूरती जो है वो देखने लायक होती है।
0: बिल्कुल, जो वर्षा के मौसम में पहाड़ों की सैर जो है बहुत अच्छी रहती है, और वैसे भी मानसून में जो है ना प्रकृति हम कहें कि खिलकर उठती
1: बिल्कुल,
0: है,
1: उसकी
0: शांत मौसम
1: असली जो खूबसूरती है
0: उसी
1: वो
0: समय
1: अभी
0: आती है।
1: आती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर तरफ हरी भरी पहाड़ियां देती हैं और झरने में भी खूब पानी आता है, तो झरने देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं,
1: और
0: तो
1: उसके आसपास का जो जंगल है वो काफी हरा
0: हरा
1: भरा हो
0: भरा हो
1: जाता
0: जाता
1: है,
0: है।
1: उसकी हाँ उसकी हरियाली से उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है ना।
0: बिल्कुल, तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे हिरनी फॉल्स की। हिरनी की तरह दिखता ये जलप्रपात झारखंड को प्रकृति ने जितनी उदारता से पहाड़, जंगल, नदियां और जलप्रपात दिए हैं, शायद ही किसी अन्य राज्य को मिले हों। ये हम सब जानते हैं
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: झारखंड को अगर हम झरनों का शहर कहें तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अतिशयोक्ति नहीं
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ
0: और इन्हीं अनमोल प्राकृतिक धरोहरों में हिरनी जलप्रपात अपनी अद्वितीय सुंदरता, शांत वातावरण और घने जंगलों के कारण विशेष पहचान रखता है। रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित ये जलप्रपात हर वर्ष हजारों प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफर और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लगभग 70 किलोमीटर दूर रांची से और करीब 55 से 60 किलोमीटर दूर चक्रधरपुर से यहाँ सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है।
1: हाँ और कहा जाता है कि इस जलप्रपात का नाम हिरनी इसलिए पड़ा क्योंकि ऊंचाई से गिरती इसकी जलधारा दूर से किसी तेजी से दौड़ती हिरनी की तरह दिखाई देती है। हालांकि इस नाम से जुड़ी लोक कथाएं अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न रूप से सुनाई जाती हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ की प्राकृतिक छटा हर आने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। चारों ओर फैले साल, सागवान, महुआ और मिश्रित वनों की हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव, पहाड़ियों के बीच बहती ठंडी हवा और जंगल की स्वाभाविक शांति ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां पहुंचकर शहर की भागदौड़ और तनाव स्वतः पीछे छूट जाती
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही कहा, जो जीवन हम लोग आजकल जीते हैं ना, इतनी भागदौड़ भरी जीवन है, अगर वहाँ ऐसे शांत वातावरण मिल जाए तो बहुत ही आनंद मिलता है। और हिरनी जलप्रपात की सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राकृतिक बनावट है। लगभग 37 मीटर यानी करीब 121 फीट की ऊंचाई से रामगढ़ा नदी का निर्मल जल जब विशाल चट्टानों से टकराते हुए नीचे गिरता है तो उसकी गर्जना दूर तक सुनाई देती है।
1: हाँ सूर्य की किरणें जब इन फुहारों पर पड़ती है

आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में श्रोता सुनते हैं अपनी पसंद के गीत, जिसे वो हमें खत द्वारा लिख भेजते हैं। तो पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हंसते जख्म फिल्म का। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और सुनना चाह है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, गोंदा टाउन कांकेरोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, सिद्धि जायसवाल और अनुप्रिया भगत।

अगला गीत सुनना चाहे बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी, प्रतीक प्रज्ञा, बठिंडा रोड डरवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, ये सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में उजाला फिल्म का ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म बुड्ढा मिल गया। इस फिल्म का आवाज़ें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की, और इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम बरबुड़ुआ पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, बड़ा बाम्बू सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेंद्र, चक्रधरपुर ग्राम गिलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, अनी मनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा

कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अपना देश फिल्म का ये गीत, और इस गीत को सुनना अच्छा है सुंदर खेल राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकाश नरवाड़े, आकाश कुमार मलोट के पंजाब से सतीश, सीमा अनमोल, लखविंदर सिंह, महावीर संधू और रमेश मिगलानी।

अब आपको सुनवाते हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर की, और सुनना चाहते हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बीबी आरजू जाजोरिया, खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, गौरव नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और उनके परिवार के सभी सदस्य, मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गनवानकर, श्रीमती सरिता गनवानकर, प्रिंस एकांश गनवानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गनवानकर, प्रणीता गनवानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गनवानकर, वैशाली गनवानकर, श्वेता सुमित गनवानकर और कुमारी ध्वनि गनवानकर।

इसी गीत के साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजे हैं और वक्त है महिलाओं के कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनुए सब श्रोता बहिन बनके सुमन बहिन बटले जोहार आसरा करीला सब सुनुए बहिन मनक हाल खबर ढक दे नगद होवी है नी संगे है सुभासनी बहिन रौर को हो जोहार
1: जोहार सुमन बहिन संगे है सब श्रोता बहिन मन के भी सुभासनी बहिन बटले जोहार
0: सुभासनी बहिन आजकल देखो कि हमरे का जो जीवन है एकर जो भागम भाग है बहुत बगरा देखे ले मिलल और खास करके जब हमरे घर और बाहरे दुयो बटे काम के सही बेरा में करेक और छुआ मन अगर घर में छोट हैं तो उमनक भी ध्यान रखेक संगे संगे बड़ बुजुर्ग हैं तो उमन कर भी ध्यान रखेक और बाहरे कर काम इस सब के सही तरी से व्यवस्थित रखेक ले हमरे के सप्ताह पहले से ही अगर हमरे ओकर बारे में सोची ल और एक योजना बनाए ले भी ल तो ये हमरे लिए बहुत आसान हो जाएला अपन जिंदगी के सब काम के व्यवस्थित करके आगे बढ़े में है नी और एक सप्ताह पहले से योजना बनाए कर हमरे के आदित भी अपन में करे चाहिए सप्ताह में देखो कि एगो दिन ऐसा हो चाहिए कि 20 मिनट निकलाए कि जो वर्तमान सप्ताह है उकर संगे संगे जो आवे वाला हफ्ता है उकर भी योजना हमरे के बटाए बनाए बटे ध्यान देवे चाहिए और आगे कर योजना बना ले हर काम के करेक में एक आत्मविश्वास भी अपन अंदर भर जाएला और हर काम के आसानी से निपटाए सकीला हमरे और देखो कि जीवन में जे बहुत भागम भाग है सेकर से भी हमरे आसानी से निपट सकीला और जीवन के आसान कर सकीला
1: सही कहती सुमन बहिन एगो साप्ताहिक योजना हमरे के अपन कार्यालय कर के व्यवस्थित लक्ष्य के ध्यान में केंद्रित करेगा ताकि जे अपन व्यक्तिगत अनुभव और रचनात्मकता हो भी और प्रभावी तरी से बेरा निकलाय में मदद करेला और एगो संपूर्ण और प्रभावी साप्ताहिक योजना हमरे के अपन दैनिक कार्य के व्यवस्थित करे कर सबसे बढ़िया कुंजी है और सप्ताह में करेक वाला जे भी कार्य है उके हमरे एक जगह अगर लिख के राखती तो उ काम के याद करके समय पर करेक आसान हो जाएला ई काम छूट गेलक चाहे भुलाए गेली तो ई काम के करेक इकर डर नहीं रहेला
0: एकदम सही कहली अगर सब चीज व्यवस्थित तरीके लिखल रही तो उके हमरे एक बेर पढ़ लेब देख लेब और सोच लेब कि ई काम के हमरे के आज करके निपटायक है तो हमरे के जे काम जे सबसे पहले जे काम सबसे जरूरी है और जे के आइजे करेक जरूरी है उसन काम ऑफिस कर काम भेलक चाहे छुआ मनक फीस भरेक है चाहे कौन में बिल मन के भरेक है तो वो काम जे सबसे जरूरी है उके सबसे पहले शेड्यूल में शामिल करे के चाहिए उकर बाद ही कुछ काम जरूरी तो होवेला लेकिन कुछ समय बाद भी कर ले काम चल सकेला उसन काम के उकर बादे लिखो और कुछ है हमरे जे की दूसर से भी हमरे उके करवाए सकीला तो ईसन काम के अंत में डालू और अगर हमरे एक सप्ताह दिन कर काम के सोच समझ के सूझबूझ से करीला तो अपन जे दैनिक जीवन में बहुत कन झंझट से छुटकारा भी पाए सकीला और एक बात ये भी कहे चाहिला कि हर दिन तनिकन समय निकलाए के जे भी जे शेड्यूल हमरे बनाए ही उके योजना जे बनाए ही उके जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकीला काले कि मान लो कि आज जे काम कर ली उके अगर दूसर दिन में कुछ जरूरी काम आया जाए तो उके हमरे

0: कि हर दिन कुछ समय अपन ले, जैसन सुमन बहिन बता लें कि करेक चाहिए, और साप्ताहिक योजना बना ले हमरे बगरा उत्पादक बन सकेला और अपन कार्यभार के बेहतर तरी प्रबंधित कर सकेला, और कुछ कुल मिलाए के हमरे जे भी चीज हमरे के मायने रखेला उकर ले पूरा समय निकला सकेला हम, और योजनाबद्ध तरीका से काम कर ले, काम कर संगे आराम और व्यक्तिगत जीवन भी आसान हो जाएला।
1: सही कहली। तो देखो सुभाषनी बहिन, जब जीवन में हमरे कर सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चलीला, और सप्ताह कर जब शुरू दिन रहेला,
0: हाँ
1: इतवार कर दिन भेलक, तो आराम में चल जाला। और
0: हाँ
1: उहे दिन अगर हमरे सोच लेती कि बाकी जे 14 दिन आवे वाला है काम कर है,
0: हाँ हाँ
1: उकर में हमरे अपन जीवन के कालखे तय
0: हाँ
1: करे थी कि कौन काम के कैसे करे है, तो अपन जीवन के बड़ा सुकून से बिताए सकेला, कोई भी भागम भाग नहीं होगी,
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: सब काम के तरीके से निपटाए
0: हाँ
1: सकेला,
0: और सबसे
1: है
0: बड़
1: ना।
0: बात है नहीं कि तनाव कम हो जाएला, है ना।
1: हाँ, आज के जीवन में तो सबसे बेसी कहो कि दौड़ भाग में तनावे सबसे बेसी
0: हाँ
1: रहेला ना।
0: हाँ
1: तो काम के व्यवस्थित करके चलब, सोच के चलब, और एक रूटीन जिंदगी, जैसे छुए मन का देखो नहीं, जब स्कूल उमन जाए ना,
0: हाँ
1: तो एगो रूटीन में बंधल रहेला,
0: बंधल
1: है
0: रहना।
1: नहीं,
0: हाँ
1: स्कूल में कि आज ये किताब में ये चीज के पढ़ाए के ये करे
0: हाँ
1: के, तो
0: हाँ
1: वह तरी शेड्यूल अगर हमारे घर में भी अपन जीवन में अनुशासन कर उतरो और योजना बनाए के चलू, तो सब कुछ जिंदगी आसान हो जाएला। तो चलू गोठियाले तो गोठियाते रह, चलू हमारे अपन कार्यक्रम में आगे बढ़ीला, और सुनीला एगो नागपुरी लोकगीत के यशोदा देवी और संगीमन कर गावल।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: रहे विज्ञापन संदेश, इकर पहले हमने सुन ली यशोदा देवी और संगी मनकर गावल नागपुरी लोकगीत। और अब चलो एक भेंटवार्ता सुन ले वीला। इकर में हमने जानकारी करी थी कि समय का प्रबंधन का लक्ष्य करिक चाहिए, इकर बारे बताते हैं रश्मि चौधरी और इनका से बातचीत कर रहे हैं सुभासनी बहिन।
8: कहा जाता है कि समय और समुद्र का ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, यानी समय रहते हमें वो सब कुछ कर लेना है जो आवश्यक है। एक बार समय निकल गया तो वह लौट कर नहीं आता। आज के समय में अक्सर हम और आप यही कहते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और हम सभी एक अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर समय की कीमत हमने नहीं जानी तो हम अपने कार्य में सफल ही नहीं हो पाते। किसी भी लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए समय का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। आज हम समय प्रबंधन पर ही विस्तार से बातें करेंगे। हमारे साथ हैं रश्मि चौधरी जी, जो कि एक शिक्षिका हैं। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में। नमस्कार
9: जी। सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
8: रश्मि जी, सबसे पहले हम आपसे समय प्रबंधन क्या है, इसका क्या महत्व है, ये जानना चाहेंगे।
9: समय प्रबंधन के बारे में कहें तो समय प्रबंधन का सीधा संबंध आपकी या कहले हमारी सफलता से है, हमारी मानसिक शांति से है और हमारी लाइफ की जो मैंने कहले कि हमारी जीवन की जो गुणवत्ता से है उससे संबंध रखता है। तो जब आपको पता होता है कि किस समय क्या करना है तो आप संबंध रखता है
8: जी।
9: तो जब आपको पता होता है कि किस समय क्या करना है तो आपका दिमाग भटकता नहीं है।
8: नहीं।
9: काम को आखिरी समय के लिए टालना ये हम सबकी आदत होती है
8: जी।
9: तो अगर हम समय प्रबंधन को सीख जाए, समझ जाए तो समय पर काम पूरा हो जाता है हमारा। और समय पर काम पूरा होता है तो हम मानसिक रूप से शांत रहते हैं, उथल पुथल नहीं रहती है कि कब हमें ये काम करना है, अभी ये काम बचा हुआ है, उसे हम शांत रहते हैं और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है
8: जी।
9: तो ऑफिस हो या पढ़ाई के बाद अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए हम पर्याप्त समय निकाल पाते हैं, अपनी अच्छी नींद ले पाते हैं, एक्सरसाइज कर पाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम सब कहते हैं कि एक्सरसाइज के लिए या योग के लिए तो सब समय ही नहीं है।

0: हमारे पास।
1: जी जी
0: या हमारी हॉबीज जो रहती है उसके बारे में कहते हैं कि कहाँ टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर हम समय प्रबंधन सीख जाए तो इसके लिए हम आसानी से समय निकाल पाते हैं। और जो जो हमारे लक्ष्य हैं, जो डेली कह ले या हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं, वो हम पाने में सक्षम हो पाते हैं अगर हम समय प्रबंधन के अनुसार अपने काम को बांट ले। तो
1: जी
0: जो लोग समय के पाबंद होते हैं, आपने देखा होगा कि वो लोग अपने वर्क प्लेस पर हो या समाज में हो, ज्यादा सम्मान पाते हैं, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है। समय की कमी होने पर लोग प्रेशर में आ जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: तो इसीलिए समय प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है। समय प्रबंधन हमको ये सिखाता है कि बिल्कुल शांत मन से, अच्छे दिमाग से हम कोई भी डिसीजन ले सके और लाइफ में आगे बढ़ सके।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। रश्मि जी, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है और डिजिटल युग भी है, डिजिटल दुनिया है, तो आप समय प्रबंधन को किस तरह से परिभाषित करती हैं आज के समय को अगर हम देखें तो?
0: आज के समय में समय प्रबंधन का मतलब केवल घड़ी देखकर काम करना या व्यस्त रहना नहीं है।
1: जी
0: इसका वास्तविक अर्थ है अपनी जो एनर्जी है उसको सही दिशा में व्यवस्थित करना, हमारी क्या प्रायोरिटीज है उसको समझना।
1: जी
0: आज जब हम हमारे पास ध्यान भटकाने वाली, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, तो ये चुनना कि उसमें से हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब जो हमारे काम की चीजें हैं उसको प्राथमिकता देना और जो कम जरूरी चीजें हैं उसको सेकंड में रखना, या फिर जो बिल्कुल जरूरी नहीं है उसको हटा देना। तो इस तरह का जो जो काम हम अगर कर रहे हैं तो यही समय प्रबंधन है, असली
1: जी
0: समय प्रबंधन इसे ही हम कह सकते हैं, आज की जैसी हमारी लाइफ स्टाइल है उसके अनुसार।
1: आधुनिक युग में समय का प्रबंधन न करना सीधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य और तनाव को प्रभावित करता है। आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में?
0: जब हम समय का प्रबंधन नहीं करते हैं तो हमारे ही ऊपर काम का बोझ पड़ जाता है,
1: बिल्कुल
0: हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, कोई भी काम हमसे ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपना जो गुस्सा है अगर काम नहीं हो पा रहा है तो उसका गुस्सा हम दूसरे पर निकालते रहते हैं।
1: जी जी
0: तो जो हमारा जो आखिरी समय, जो डेडलाइन होता है, उसे पूरा करने की हमारी हड़बड़ी होती है क्योंकि हमने समय को ठीक तरह से मैनेज नहीं किया है, और जिससे हम चिंता, अनिद्रा और मेंटल रूप से परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। धीरे धीरे ये हमारी मानसिक बीमारी के रूप में जाने लगती है।
1: जी
0: और वहीं दूसरी ओर अगर हम अपने समय को पहचाने, समय का प्रबंधन करना सीख जाए तो मानसिक रूप से हम बिल्कुल फ्री रहते हैं,
1: जी
0: हमें अपने आप पर हमारा कंट्रोल हो जाता है और हम चीजों को अच्छी तरह से समझने लगते हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारे क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है और इसलिए हम ज्यादा हम एनालिसिस कर सकते हैं चीजों को कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है, कौन सी गलत, कौन सा डिसीजन हमें जो सही रास्ता दिखाएगा, कौन सा डिसीजन गलत होगा। तो इस चीज का फैसला हम कर सकते हैं अगर हम समय प्रबंधन को समझ जाए, सीख जाए।
1: जी
0: तो इस तरह से जो समय प्रबंधन हमें मानसिक स्वास्थ्य और तनाव को हमारा प्रभावित करता है, और अगर हम समय प्रबंधन को का समय का प्रबंधन अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड बढ़ जाता है, मानसिक बोझ बढ़ जाता है और हम अवसाद के शिकार हो जाते हैं।
1: रश्मि जी, कई बार क्या होता है कि लोग जो है वो बहुत अच्छा टाइम टेबल या शेड्यूल तो बना लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन में उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो जाता है या जो भी कारण रहता है, तो वो अपनी निरंतरता बनाए रखें, कैसे वो मैनेज करें और कैसे अपनी एक जो जो कमी रह जाती है उसे उसको कैसे दूर कर सकते हैं।
0: लोग अक्सर बहुत कड़ा शेड्यूल बना लेते हैं, समय प्रबंधन के नाम पे उसे समझ नहीं पाते हैं जो बोलो। तो निरंतरता बनाए रखने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना चाहिए। शुरुआत में आपको पूरे दिन को बांधने के बजाय केवल सुबह के, आप जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहले के 2 घंटों को लेकर चलें।
1: जी
0: शेड्यूल में अपने जो जितने भी अन्य जो काम जरूरी नहीं है उन कामों से ब्रेक ले, ये जरूरी है आपके
1: जी
0: लिए जब आप शुरुआत कर रहे हैं।
1: जी
0: और हर रविवार या जो भी आपको अच्छा दिन लगे उस दिन आप छुट्टी ले, यानी कहने का मतलब 10 मिनट निकाल कर देखें, अपने जो समय प्रबंधन किया है उसके अनुसार निकाल कर देखें कि इस हफ्ते आपका कहाँ कहाँ समय बर्बाद हुआ, यानी कि एनालिसिस करें कि आपने जितने भी 1 वीक तक जो समय प्रबंधन के अनुसार आपने जो हर चीज को बांटा है, तो उसमें आपको ये भी देखना होगा जब शुरुआत आप कर रहे हैं कि
1: जी
0: कहाँ पर मैंने किस तरह की गलती की है या कहाँ पर बहुत अच्छा मैंने किया है, तो उसे उसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक बार कि उसको एनालिसिस करने के लिए कि कहाँ मुझसे चूक हुई है। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मुझे कुछ सुधार करने की जरूरत है तो सुधार करें, और जहाँ पर कुछ नहीं आपको लगता है कि नहीं ये मेरा काम बड़ा अच्छा है तो उसे उसे सीख लें, उसे अपनाएं, उसे और इस तरह से करके आप अगर आगे बढ़ेंगे शुरुआत में तो आपका जो टाइम टेबल है या जो आपने शेड्यूल बनाया है उसमें आपको उसको फॉलो करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, आप उसे अच्छी तरह से निभा पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कई महत्वपूर्ण काम आ जाते हैं, बहुत से काम हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उसे कैसे तय करें कि हम कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये हमें बताएं।
0: इसके लिए आपको जो आपके काम है उसको बांटना पड़ेगा। और कैसे बांटें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो आपको आपके काम बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत जरूरी है तो
1: जी
0: उसको उन्हें तुरंत ले, यानी कि उन्हें पहले नंबर पर रख सकती है। और जो बिल्कुल महत्वपूर्ण तो है लेकिन जरूरी नहीं है तो उन्हें आप समय के साथ या फिर तारीख के साथ, यानी कि कैलेंडर में उसे शेड्यूल कर दे कि ये इम्पोर्टेंट है लेकिन इसे करना है इतने समय में या इतने तारीख को,
1: जी
0: और जो जरूरी है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप किसी दूसरे की मदद ले सकते हैं, दूसरे को डेडिकेट कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, किसी को दे सकते हैं कि ये काम बहुत जरूरी है तो थोड़ा हेल्प कर दो और ये काम कर दो।
1: जी
0: और जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो आप उसे अपने लिस्ट से पूरी तरह से निकाल ही दे, हटा दे उसे।
1: बिल्कुल
0: और जब आप एक बात आप ध्यान रखिए कि जब आप सुबह जब काम शुरू कर रहे होते हैं तो काम शुरू करने से पहले ही बस केवल 5 मिनट का समय निकालें और डू लिस्ट बनाएं, यानी कि आपको क्या क्या करना है इसका लिस्ट बनाएं। तो ये जो आदत है आपके लिए बिल्कुल एक तरह से कहें तो गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो इस तरह से आप अपने कामों को शेड्यूल करेंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी
1: जी
0: और आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इतने सारे काम हैं तो मैं किसे पहले करूं, किसे बाद में करूं, किसे छोड़ दूं। जी
1: जी रश्मि जी, बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी, और जितने भी सवाल थे मन में, मुझे लगता है कि बहनों के भी जो सवाल होंगे उसके उसका उत्तर उन्हें मिल गया होगा। रश्मि जी, अंत में आप क्या कहना चाहेंगी हमारे श्रोताओं से?
0: मैं बस यही कहना चाहूंगी श्रोताओं से कि समय दुनिया की एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसे दोबारा कमाया नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि समय निकल गया फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसा खोकर आपको वापस मिल सकता है, लेकिन अगर ये बीता हुआ पल आपको कभी वापस नहीं आता, समय बीत गया तो वो बीत गया है।
1: जी
0: समय का इसलिए प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट सीखें, जाने समझें। प्रबंधन करने का मतलब अपनी जिंदगी को बंधनों में जकड़ना नहीं है। आप ये ना समझें कि हम बिल्कुल बंध गए हैं, बल्कि अपने सपनों को, अपने परिवार को और अपने लिए, खुद के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। इसलिए आज से ही अपने समय की मालिक आप खुद बने, और
1: जी
0: सोशल मीडिया या परिस्थितियों को अपना समय मत दी समय तय मत करने दीजिए। डिजिटल युग का समय है, जमाना है, तो जरूर आप डिजिटल जो जितने भी डिवाइसेस हैं या डिजिटल सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करें। इसके बिना शायद हमारा अब काम भी संभव नहीं हो पाता। हावी मत होने दीजिए। आप ये मत करें कि वो हमारे लिए समय तय करे,
1: बिल्कुल।
0: आप उसके लिए समय तय कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से समय प्रबंधन आपके जीवन में खुशहाली लाता है। जी
1: बिल्कुल, बहुत खूब रश्मि जी, बहुत ही अच्छी आपने बातें साझा की टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के विषय पर। आशा है हमारी बहनें भी लाभान्वित होंगी। रश्मि जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: ई रहा है रश्मि चौधरी जे हमरे के समय के प्रबंधन का लखे करेक चाहिए, इकर बारे बतात रहे हमरे के बहन बन के, और इनकर से बातचीत कर रहे हैं सुवासनी बहन। तो सुवासनी बहन, देखो हमरे बहन बन के सोना से तो बहुत प्यार हुए ला,
0: हाँ, बहुत
2: और
0: प्यार है।
2: देखो कि जब भी कोई पर्व त्योहार आवी चाहे जे भी हुई तो सोना किने सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमके देवी ला।
0: हाँ
2: तो लेकिन इकर किने में भी सावधानी रखे बहुत जरूरी है। तो देखो इकर में रोरे का कहे चाहे लेकिन का लखे हमरे सावधानी रखब
0: हाँ
2: कि सही सोना किनू
0: हाँ
2: और ओके
0: हाँ
2: सही इस्तेमाल करूँ।
0: हाँ काले कि आजकल बहुत एकर में काला बाजारी भी हुआ थे, तो सोने के खरीदारी में हमरे के हमेशा सावधानी रखे चाहिए। और जो भारतीय मानक ब्यूरो कर लोगो है, हॉलमार्क कैरेट कर शुद्धता, अद्वितीय पहचान संख्या और मेकिंग चार्ज कर स्पष्ट जानकारी लेवे चाहिए। और सोना किने के बिना मुख्य रूप से जो सोना जहाँ से हम किना थी हुआ उकर ध्यान रखे चाहिए। कुछ बात मन के वो बात मन के रावरे बताओ।
2: सही कह दी। देखो हमरे के सबसे पहला ध्यान रखे चाहिए कि बिना हॉलमार्किंग वाला सोना नहीं किने चाहिए, है नहीं? और ये 6 अंक वाला अल्फा न्यूमेरिक HUID नंबर जगह हमरे कहिला,
0: हाँ
2: वो बहुत जरूरी है। इके हम जे भी मन की नथ है सोना उमन रावरे मन BIS केयर से सोना कर शुद्धता और उकर पूरा जानकारी ले सकीला,
0: हाँ
2: और जे सोना कर वास्तविक वजन है उकरे भुगतान हमरे के करेक चाहिए। देखब कि बहुत कन सोना है जेकर में कि कहीं कहीं नग लागल रहेला,
0: हाँ
2: चाहे
0: हाँ
2: पत्थर या मोती मन लगाल रहेला, तो उके भी साथे साथे तोल दो है ना। और सोना
0: हाँ
2: का भाव में तो इकर भी ध्यान रखे है कि जे सोना कर असली है वजन है उखे ध्यान दो, और पत्थर मोती मन कर वजन के अलग करो।
0: अलग करो।
2: और जेवर से जे जे भी ज्वेलर है उकर से हमरे के हमेशा पक्का बिल लेवे चाहिए, जेकर से कि हमरे अपन सामान जे भी सोना की नथी उकर शुद्धता वचन और HUID नंबर मेकिंग चार्ज और जे किनली उ दिन कर सोना कर भाव जरूर लिखवाए चाहिए, ताकि हमरे जब भी उके बेचे जाऊ चाहे एक्सचेंज करू तो उ बिल हमरे के काम आवे। ई सब बात कर जरूर ध्यान रखे
0: ध्यान
2: चाहिए,
0: रखे
2: है नी
0: चाहिए।
2: सुभाषनी बहन?
0: हाँ
2: तो चलू हमरे चलते चलते एगो गीत के भी सुन ले नागपुरी में, और ई गीत हके केतकी देवी और संगीमन कर गावल।

0: सुभाषनी बहन, देखो बेरा जे है कहत है चलिक, और हमरे कर कार्यक्रम के बेरा भी सिरात है, सेली गीत के हमरे अधे सुने पार ली, आगे फिर सुनब और अपन बहन मन से फिर अगला सोमवार की गुठिया। चलो ई कर ले, तब तक ले विदा और जोहार
1: जोहार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लेडीज वर्सेस रिकी बहल फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं बेनी दयाल और रणवीर सिंह की। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और सलीम सुलेमान का संगीत है।

अगला गीत आइए अब सुनते हैं, राहत फतेह अली खां की आवाज में, फिल्म है सिम्बा। रश्मि विराग ने इस गीत को लिखा है, तनिष्क बागची ने संगीत दिया है।

जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजा है शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म है दिल धड़कने दो और गायक कलाकार हैं यशिता शर्मा, मनीष कुमार टीपू, फरहान अख्तर, शंकर महादेवन और सुखविंदर सिंह।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं बेफिक्रे फिल्म का, आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और करालिया मोंटेरियो का, जयदीप साहनी के बोल हैं विशाल शेखर का, संगीत है

0: से चढ़ गए।
1: आइए सुनते हैं गोलियों की रास लीला रामलीला फिल्म का ये गीत। आवाज है साहिल हड़ा की, गीतकार है सिद्धार्थ करीमा और संगीतकार है संजय लीला भंसाली।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवाते हैं धुरंधर धुरंधर फिल्म का। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान की, इरशाद कामिल के बोल हैं, शाश्वत सचदेव का संगीत है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नरेंद्र रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का मिला पेटेंट। जमशेदपुर हत्याकांड में एसआईटी ने डीडी बार संचालक को राजस्थान से किया गिरफ्तार। अब तक कुल 9 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से राज्य में लगातार हो रही बारिश। आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर आज रवाना हुए। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा से भारत और उन देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा से संबंधित पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: श्री मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरती प्रौद्योगिकी, खेल और जनसंपर्क पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में भारत वंशियों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के तीसरे चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड जाएंगे। इस यात्रा के दौरान आर्थिक, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों पर विचार विमर्श होगा। झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए सीआईडी झारखंड ने मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया है। इसे राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को लागू करने के लिए भेज दिया गया है। एक्शन प्लान का उद्देश्य लापता व्यक्तियों के मामलों में शुरुआती स्तर पर ही गंभीरता से कार्रवाई करना, मानव तस्करी के मामलों को शीघ्र पहचान, पीड़ितों की सुरक्षित बरामदगी और पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के विशेष अभियान का असर दिखने लगा है। 5 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 4,164 लोगों की जांच में 108 मलेरिया संक्रमित मिले और पॉजिटिविटी दर घटकर 2.6% रह गई, जबकि 1 जुलाई को 3,240 संदिग्धों की जांच में 326 मरीज मिले थे और पॉजिटिविटी दर 10.1% थी। 4 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में 218 की कमी और पॉजिटिविटी दर में 7.5% अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। गोड्डा महिला कॉलेज में पारंपरिक ज्ञान प्रणाली एवं सतत विकास लक्ष्य विषय पर कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ। सम्मेलन में अमेरिका, नेपाल और अफ्रीका के प्रोफेसर भी ऑनलाइन जुड़े और अपनी बात रखी। मुख्य अतिथि डॉक्टर फारूक अली ने देश की खाद्य सुरक्षा पर चिंता जताई। वहीं महिला कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर सुमन लता ने कहा कि पारंपरिक ज्ञान के बिना सतत विकास संभव नहीं है।
2: हमारा जो झारखंड है वो एक तरह से यहाँ का जो जल, जंगल, जमीन और यहाँ की जो दवाएं हैं और मड़वा का खेती है, यहाँ के जो लोग हैं वो सब ये बताता है कि हम लोग सतत विकास में योगदान कर रहे हैं और बिना पारंपरिक ज्ञान के वो नहीं होगा। यहाँ के लोग उस पारंपरिक ज्ञान से विकास में योगदान कर रहे हैं।
0: बीआईटी मिश्रा आज से 10 जुलाई तक इमर्जिंग ट्रेड्स इन स्टेटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग विषय पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक कंप्यूटेशनल और सांख्यिकीय तकनीकों का विश्लेषण कर प्रतिभागियों की सैद्धांतिक समझ और व्यवहारिक कौशल दोनों को विकसित करना है। कार्यशाला में देश विदेश के विशेषज्ञ अत्याधुनिक तकनीकों और उनके वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोगों पर विचार रखेंगे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ICAR भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का डिजाइन पंजीकरण प्राप्त हुआ है। यह पायलट स्तर की रिएक्शन प्रणाली नैनो उर्वरक, नैनो कीटनाशक और अन्य कृषि नैनो उत्पादों के उत्पादन के लिए विकसित की गई है। संस्थान के निदेशक ने इसे उपलब्धि पर अनुसंधान दल को बधाई दी है। झारखंड समेत समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर राजधानी रांची में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड में एसआईटी ने डीडी बार संचालक नीरज सिंह को राजस्थान से लौटते समय गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीडी बार के मैनेजर विजय महानंद सहित अमित लोहार और लखिंदर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल की तलाश जारी है। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में गैंगस्टर प्रिंस खान के सदस्य के साथ आज तड़के पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अपराधी शिवराम उर्फ शिवा घायल हो गया। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि शिवराम उर्फ शिवा प्रिंस खान गिरोह से जुड़ा हुआ है और पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी।
4: के निवासी अपराध कर्मी शिवराज उर्फ शिवा कुछ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। यह हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर निकल कर आया है। इसी क्रम में रांची और धनबाद पुलिस के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि यह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
5: संयुक्त छापेमारी में अपराध कर्मी शिवराज उर्फ शिवा को हिरासत में लिया गया।
0: घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 494 अंक बढ़कर 78,258 पर और निफ्टी 149 अंक बढ़कर 24,419 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से राज्य में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश, तेज हवा, वज्रपात और जल भराव की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने तथा किसानों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीआईडी ने झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता बच्चों के सुरक्षित बरामदगी के लिए बनाई मजबूत रणनीति। सभी जिलों को एक्शन प्लान लागू करने का निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अभियान का दिखा असर। जिले में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 10% से घटकर 2.6% हुई। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का मिला पेटेंट। जमशेदपुर हत्याकांड में एसआईटी ने डीडी बार संचालक को राजस्थान से किया गिरफ्तार। अब तक कुल 9 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से राज्य में लगातार हो रही बारिश। आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब अनुरंजनी के अंतर्गत सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गिरजा देवी से ठुमरी।

उपशास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे थे गिरजा देवी से अभोगी कन्नड़ा में ख्याल गायन। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुगम संगीत में आइए अब सुनते हैं सोनू निगम के गाए कुछ गीत।

चांद मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके

0: यदि माँ एचआईवी से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की एचआईवी जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को एचआईवी के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत और आज के कलाकार हैं सोनू निगम।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से मिडडे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: में जगह बनाई और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उस

0: में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। जगन्नाथ
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
0: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विम्बल्टन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विम्बल्डन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 110.5 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।
6: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಡ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: जय भारती कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को स्वागत है, साथ ही साथ हमारे फौजी भाइयों का भी स्वागत है इस कार्यक्रम में. तो सबसे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत फिल्म रोजा से. आवाज़ है हरिहरन की, पीके मिश्रा ने इस गीत को लिखा है और एआर रहमान का संगीत है.

अगला गीत आइए अब सुनते हैं जंगली फिल्म का। आवाज है मोहम्मद रफी की, हसरत जयपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में आइए सुनते हैं दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

0: इसी गीत के साथ ही फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 2:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर कहा है कि सहकारिता के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों के लिए रैंकिंग ढांचा शुरू किया गया है। श्री शाह ने कहा कि अगले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज झारखंड सहित पूरे देश में उन्हें याद किया जा रहा है। इस अवसर पर रांची स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया।
3: पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती मना रहा है। इस बारिश में भी हम ऐसे अपने प्रणेता जिनके मंत्र से हम सब ऊर्जा मिलती है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुनिया के सबसे यंगेस्ट कुलपति रहे। मात्र 33 साल में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और नेशन फर्स्ट, वही भाव हमेशा रहा है।
1: उधर हजारीबाग के सांसद सेवा कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद मनीष जायसवाल और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। कथित शराब घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव आज रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। इसी मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव को भी कल पूछताछ के लिए तलब किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज जामताड़ा में बीर बेंदिया फोरलेन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि इस पुल के बनने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी।
4: मैं निरीक्षण करने के लिए आया, वर्षों पुरानी मांग थी यहाँ। लोग कई बार जब से मैं चुनाव जीता हूँ तब से मांग कर रहे थे कि सर पुल बना दी, लेकिन कुछ टेक्निकल बातें थी। एक हादसा भी हुआ जिससे 14 लोगों की जान चली गई, तो वो दर्दनाक हादसा था। उस समय हमने कहा था कि नहीं, हम अपने एरिया में जो जान गई उस पर सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। पुल सेंक्शन हुआ और 95% पुल बन के तैयार हो गया है।
1: डिजिटल इंडिया अभियान के तहत जमशेदपुर प्रधान डाकघर में स्पीड पोस्ट सेल्फ बुकिंग कियोस्क की शुरुआत हुई है। अब ग्राहक बिना लाइन में लगे पार्सल का वजन, पता दर्ज कर यूपीआई या कार्ड से स्वयं ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। वरीय डाकपाल सुधीर कुमार ने कहा कि इस पहल से डाक सेवाएं अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनेंगी।
5: इस मशीन का खास बात है कि कोई भी पब्लिक कस्टमर इसमें आकर स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक कर सकता है। 500 ग्राम तक का आर्टिकल आराम से बुक हो जाएगा। इसमें ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है और 30 सेकंड से 1 मिनट में एक आर्टिकल आराम से बुक हो जाएगा। अलग तरह का सेवा जो हम लोग शुरू किए हैं, इससे ग्राहकों को काफी सुविधा होगी।
1: मौसम, रांची, धनबाद और बोकारो सहित राज्य के 14 जिलों में अगले 3 घंटों में बादल गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा किसानों को खेतों में न जाने की अपील की है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज की रांची मेलोडीज में हम आपको सुनवाएंगे चेतन आनंद के फिल्मों के कुछ गीत। आज उनकी पुण्यतिथि है, 6 जुलाई 1997 को उनकी मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे चेतन आनंद। बॉलीवुड फिल्मों को स्तर पर पहली बार पहचान दिलाने का श्रेय भी चेतन आनंद को जाता है। चेतन आनंद सदाबहार अभिनेता देवानंद के बड़े भाई थे। देवानंद चेतन आनंद की बदौलत ही फिल्म इंडस्ट्री में आ सके थे।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के

0: श्रोता संवाद में मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
1: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
1: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
1: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
1: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
0: जी।
1: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
1: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो

0: कम हो गए हैं। तो उनके जो लाइक्स हैं, इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है, वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार के नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी।
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है, उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी। और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि अकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है, कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहें, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
1: जी,
0: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई की, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर, या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी।
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, सो बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया
1: वो
0: सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ, होता है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करें, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप हैं वो तय करें। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है,
1: जैसे
0: थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको

0: एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें, दूसरा जो वो निर्णय ले उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें।

ही कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-4-4-1-6। ये टेली

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चेतन आनंद के कुछ फिल्मों के गीत। आज उनकी पुण्यतिथि है। 6 जुलाई 1997 को उनकी मृत्यु हुई थी। वे एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। बॉलीवुड फिल्मों को स्तर पर पहली बार पहचान दिलाने का श्रेय भी चेतन आनंद को ही जाता है। चेतन आनंद सदाबहार अभिनेता देवानंद के बड़े भाई थे और देवानंद चेतन आनंद की बदौलत ही फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। तो आइए सुनते हैं चेतन आनंद की ही निर्देशित की हुई फिल्म टैक्सी ड्राइवर का ये गीत।

चेतन आनंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। चेतन ने लाहौर से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद राजनीति में कदम रखा था और वे वर्ष 1930 के दशक में पार्टी में शामिल भी हो गए थे। उन्होंने दून स्कूल में शिक्षक के रूप में भी कार्य किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की द्वारा निर्देशित फिल्म फंटूश का ये गीत।

चेतन आनंद ने वर्ष 1940 के दशक के शुरू में सम्राट अशोक पर एक फिल्म की पटकथा लिखी थी। उनका फिल्मी सफर वर्ष 1944 में आई फणी मजूमदार की फिल्म राजकुमार से शुरू हुआ। उस फिल्म में वे मुख्य भूमिका में भी थे। चेतन आनंद ने अभिनय छोड़कर फिर निर्देशन के क्षेत्र में किस्मत आजमाई और जल्द ही उन्होंने इतिहास रच दिया। फिर उनकी फिल्म आई थी हकीकत। जी हाँ, हकीकत फिल्म जो थी, उन्होंने उस फिल्म की पटकथा भी लिखी थी और उस फिल्म को निर्देशित भी किया था और इस फिल्म को नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गीत।

वर्ष 1946 में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म नीचा नगर ने कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हासिल किया था। अपने जमाने के सुपरस्टार देवानंद और निर्माता निर्देशक विजयानंद के बड़े भाई चेतन की बतौर निर्देशक पहली फिल्म नीचा नगर ने वर्ष 1946 में पहले कान फिल्म समारोह में ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता था और वे फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली पहली फिल्म थी। नीचा नगर का शुमार भारतीय सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में किया जाता है। और इसके बाद उनकी फिल्म आई थी हीर रांझा। तो आइए सुनते हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत।

हीर रांझा फिल्म के संवाद कैफी आज़मी ने लिखे थे और उनके द्वारा लिखे गए हीर रांझा के शायराना तरीके से लिखे गए ये संवाद बेहद लोकप्रिय भी हुए थे। चेतन आनंद से राजकुमारी की गहरी दोस्ती थी और इसी वजह से चेतन के साथ उन्होंने कई फिल्मों जैसे कि हिंदुस्तान की कसम, कुदरत, हीर रांझा आदि में काम किया था। उसके बाद उनकी फिल्म आई थी हंसते जख्म। हंसते जख्म की पटकथा भी चेतन आनंद ने ही लिखी थी और इसे निर्देशित भी चेतन आनंद ने ही किया था। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

1950 के दशक के शुरू में चेतन आनंद ने अपने छोटे भाई और उस जमाने के मशहूर अभिनेता देव आनंद के साथ नवकेतन प्रोडक्शंस के नाम से एक फिल्म कंपनी की स्थापना की और इस बैनर ने बॉलीवुड को अफसर, टैक्सी ड्राइवर और आंधिया जैसी फिल्में दी। बाद में चेतन ने हिमालय फिल्म्स नाम से अपनी एक अलग कंपनी शुरू की और इस बैनर ने हिंदी सिनेमा को हकीकत, हीर रांझा, हंसते जख्म और हिंदुस्तान की कसम जैसी अच्छी फिल्में दी। इसके अलावा काला बाजार, किनारे किनारे, आखिरी खत, कुदरत, हाथों की लकीरें फिल्मों में चेतन ने विभिन्न भूमिकाओं को अंजाम भी दिया। और 1981 में चेतन आनंद की फिल्म आई थी कुदरत और इसका कहानी लेखन और निर्देशन भी चेतन आनंद ने ही किया था। फिल्म में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की मुख्य भूमिकाएं थी जबकि राजकुमार, प्रिया राजवंश और विनोद खन्ना सहायक भूमिकाओं में थी। बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि चेतन आनंद की पहली फिल्म जो थी नीचा नगर को सबसे पहले कान फिल्म फेस्टिवल में 1946 में पुरस्कार मिला था सर्वोत्तम फिल्म के लिए। और चेतन आनंद ही ऐसे पहले निर्देशक थे जिन्होंने राजेश खन्ना को अपनी फिल्म आखिरी खत के लिए चुना था और उसके बाद राजेश खन्ना कामयाबी के शिखर तक पहुंचे थे। तो आइए सुनते हैं कुदरत फिल्म का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ ही रांची मेलोडीज अब यही संपन्न होता है। आप ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से। इस समय 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित कार्यक्रम का सरायकेला खरसावां जिले में सीधा प्रसारण देखा गया। जिला सहकारिता कार्यालय सहित विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का लाइव संबोधन सुना। इस मुख्य समारोह में जिले की 3 लैंप्स समितियों के प्रतिनिधियों ने भी नई दिल्ली जाकर भाग लिया। रांची में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मांडर के करगे गांव में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के तहत ग्रामीणों को एनडीपीएस अधिनियम, नशे के दुष्प्रभाव और ऋण पास तथा सीआईपी के विधिक सहायता क्लिनिकों की जानकारी दी गई। देवघर के मोहनपुर थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास छापेमारी कर अवैध हथियार के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने हाल ही में देवीपुर में हुई 1 हत्या और कई लूट कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरिडीह की पीरटांड पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में मुन्ना लाल किस्को को गिरफ्तार किया है। डुमरी एसडीपीओ आबिद खान ने बताया कि आरोपी ने अवैध संबंध के शक में 28 जून को अपनी नवविवाहिता पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को नाले के पास छिपा दिया था। कोडरमा के डोमचांच स्थित बैजनाथ प्रसाद स्नेही कॉलेज में आज डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधायक डॉ. नीरा यादव शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। और पूर्व उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर आज रांची में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सुरेंद्र राम सहित कई नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चले। आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी नशा मुक्त समाज के निर्माण में जन जन की भागीदारी, अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन की तत्परता, इस विषय पर भेंटवार्ता भी आप सुनेंगे। इस विषय पर आशुतोष शेखर से बातचीत करेंगे सिंधु मिश्रा। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की और प्रस्तुति स्वर है सिंधु मिश्रा का।

कार्यक्रम आओ साथ चलें की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे मुखातिब हूँ। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम के आरंभ में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर यानी नशा मुक्त समाज के निर्माण में जन जन की क्या भागीदारी है, इस पर विचार विमर्श करना चाहूंगी। श्रोताओं, नशा आज केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह परिवार, समाज और राष्ट्र के समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। शराब, तंबाकू, गुटखा, अफीम, गांजा और अन्य मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है, ये हम सब जानते हैं। नशे की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि परिवारों को भी तोड़ती है, सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देती है और देश की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए नशा मुक्त समाज का निर्माण आज की सबसे बड़ी सामाजिक आवश्यकताओं में से एक है। श्रोताओं, नशा मुक्त समाज की स्थापना केवल सरकार या किसी एक संस्था के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग, युवा, महिलाएं, शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक संगठन, धार्मिक संस्थाएं और प्रशासन, सभी की सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी है। जब जन जन इस अभियान को अपना कर्तव्य मानकर आगे बढ़ेगा, तभी एक स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। श्रोताओं, अब इसके दुष्परिणामों की बात अगर करें तो सोचने समझने की क्षमता को नशा प्रभावित करता है। शुरुआत में यह केवल मनोरंजन या तनाव दूर करने का साधन प्रतीत होता है, लेकिन धीरे धीरे यह व्यक्ति की आदत और फिर लत बन जाती है। नशे की लत से ग्रसित व्यक्ति अपने परिवार, समाज और स्वयं के प्रति जिम्मेदारियों को भूलने लगता है। नशे के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कैंसर, हृदय रोग, मानसिक तनाव, अवसाद और अनेक गंभीर बीमारियां। सामाजिक स्तर पर अगर देखी जाए तो घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाएं, अपराध, बेरोजगारी और पारिवारिक विघटन जैसी समस्याएं भी इसमें देखी जाती हैं। श्रोताओं, आर्थिक दृष्टि से भी नशा व्यक्ति और परिवार को गरीबी और कर्ज के जाल में धकेल देता है। विशेष चिंता का विषय यह है कि आज युवा वर्ग भी नशे की गिरफ्त में तेजी से आ रहा है। यह स्थिति राष्ट्र के भविष्य के लिए अत्यंत चिंतनीय है, क्योंकि युवा ही किसी देश की सबसे बड़ी शक्ति और संपत्ति होते हैं। श्रोताओं, किसी भी राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक चेतना पर निर्भर करता है। समाज का एक बड़ा वर्ग नशे की गिरफ्त में यदि हो तो विकास की गति प्रभावित होती है। नशा मुक्त समाज केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए भी जरूरी है। नशा मुक्त समाज में अपराध कम होते हैं, परिवारों में सुख शांति बनी रहती है, युवाओं की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगती है और सामाजिक सौहार्द बढ़ता है। ऐसे समाज में शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और नैतिक मूल्यों का विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। इसलिए नशा मुक्त समाज का निर्माण एक सामाजिक आंदोलन के रूप में किया जाना चाहिए। परिवार किसी भी व्यक्ति की पहली पाठशाला होती है, यह हम सब जानते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि माता पिता स्वयं

0: भी बेहद महत्वपूर्ण है। विद्यालय और महाविद्यालय समाज निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। शिक्षण संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित जरूर किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को न केवल पाठ्यक्रम के माध्यम से बल्कि संगोष्ठियों, वाद विवाद प्रतियोगिताओं, नाटक, पोस्टर प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी जागरूक किया जाना चाहिए। इस ओर हमारे शिक्षकों की भी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे शिक्षक विद्यार्थियों के मार्गदर्शक होते हैं। वे विद्यार्थियों को सकारात्मक जीवन मूल्यों, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। खेल, योग, संगीत और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देकर युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है। श्रोताओं और खुद युवाओं की भागीदारी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली मानी जाती है। यदि युवा वर्ग नशा मुक्ति अभियान का नेतृत्व करे तो समाज में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। युवाओं को स्वयं नशे से दूर रहकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। श्रोताओं, नशा मुक्त अभियान से जुड़ी और हमारी चर्चा होगी, उससे पहले मैं बता दूं कि आज एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर हम आपकी विशेष जानकारी करवाने जा रहे हैं और वह है अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन की तत्परता। इस ओर प्रशासन के द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस पर विशेष जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं पुलिस अधीक्षक गढ़वा श्री आशुतोष शेखर। तो आइए सर से लेते हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर विशेष जानकारी। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्कार सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सिंधु जी, और आपको भी नमस्कार और साथ ही सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
0: अभी देखा जा रहा है कि अफीम की खेती को लेकर बहुत सारी मुहिमें चलाई जा रही हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँ कि ये अफीम है क्या और इसके क्या दुष्परिणाम है।
1: अफीम की खेती की जो समस्या है, अफीम एक तरह का पौधा है जिसको पॉपी प्लांट कहते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म में, और ये एक पापावर सोमनीफेरम प्रजाति की पौधे को अफीम का पौधा कहा जाता है
0: जी।
1: अफीम के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसकी खेती कानून के तौर पर प्रतिबंधित है। पूरे देश भर में केवल दो जगहों पर इस खेती को सरकारी निगरानी में कराया जाता है, जो कि पूर्णतः मेडिसिनल यूज के लिए किया जाता है। इसके अलावा उन दो जगहों को छोड़कर देश भर में अगर कहीं भी इसकी खेती होती है तो वो पूर्णतः इलीगल है, गैरकानूनी है और विधि के खिलाफ है। और इसी को लेकर एक विशेष एक्ट भी है सरकार की तरफ से, 1985 में बनाया गया था, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसके अंदर इसकी खेती और इसका कोई भी प्रयोग एक्सेप्ट मेडिसिनल यूज जहां जहां रेगुलेटेड है, उसके अलावा इसका किसी भी फॉर्म में खेती करना और किसी भी फॉर्म में यूज करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
0: तो ये प्रतिबंध लगाया गया है कानूनन, लेकिन सर यहाँ पर मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या इसके कोई दुष्परिणाम भी हैं या दुष्परिणाम सामने देखे गए हैं?
1: अभी तक जो हम लोगों ने झारखंड राज्य में और विशेषकर रांची जिला में देखा है, जो दुष्परिणाम है मुख्यतः एक सोसाइटी के लेवल पर कि लोग अफीम की खेती करके छोटे समय में, कम समय में ज्यादा ज्यादा पैसा कमाने के पीछे पड़ते हैं, तो उसका सामाजिक स्तर पे दुष्परिणाम तो दिखता ही है। साथ ही साथ अफीम की खेती से ये भी कहा जाता है कि जो भूमि है खेती योग्य, उसमें भी, उसकी उपजता में भी नुकसान होता है। तो जहां भी हमारे किसान भाई या हमारे गांव के लोग किसी भी दुष्प्रेरणा से प्रेरित होकर या किसी डर या भय से प्रेरित होकर या प्रलोभन से प्रेरित होकर अगर अफीम की खेती करते हैं तो ना ही केवल उनकी जमीन बल्कि पूरे समाज पे और गांव के स्तर पे जो सामाजिक वातावरण है उसमें डेफिनेटली एक दुष्प्रभाव पड़ता है जो उस गांव के लिए और पूरे समाज के लिए सही नहीं है।
0: मुझे तो लगता है कि जो खेती करने वाले हैं अफीम की, वो कहीं ना कहीं या तो उनके पास जानकारी का अभाव है या फिर जानते हुए भी ये खेती कर रहे हैं।

0: अपनी आर्थिक आमदनी को बढ़ाने के लिए या फिर कानून संबंधी भी जानकारी उन्हें नहीं है, इसलिए भी वो खेती कर रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और आप देख भी रहे हैं, इन समस्याओं को सुलझा रहे हैं, तो आपने क्या पाया है?
1: इस बात को तो हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि जो आम जनता है, जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो गांव है, वहां के लोगों के बीच जो इसके कानूनी पक्ष है उसके बारे में जो जानकारी होनी चाहिए उसकी अभाव है। और ये भी बात है कि कहीं ना कहीं जो सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें भय से या पैसे के प्रलोभन से लोग इसकी खेती करने को तैयार होते हैं। इसके विरोध में और ताकि अफीम की खेती का विनष्टीकरण किया जाए और लोगों को इसके दुष्परिणाम के बारे में बताया जाए, इसको लेकर हम लोग अपने स्तर से भी, प्रशासन की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी लगातार गांवों में जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों के बीच जाकर उनको इसके दुष्परिणाम के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ जो पुलिस का माध्यम है, चौकीदार जो लास्ट पॉइंट होता है हमारा गांव की कनेक्टिविटी के लिए, और विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहां जहां प्रभावित एरिया रहा है उसमें हम लोगों ने ग्राम के मुखिया एवं वार्ड मेंबर्स के साथ भी मीटिंग की है, उन लोगों को भी इसके दुष्परिणाम के बारे में बताया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सारे श्रोताओं को भी, कि बीच में ऐसे भी एग्जाम्पल सामने आए हैं जहां पे लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी देने के बाद लोगों ने स्वतः इस अफीम की खेती का विनष्टीकरण किया है, जो अपने आप में एक स्वागतपूर्ण कदम है।
0: सर, अब बारी आती है कि जब हमने जान लिया कि कानूनन ये अपराध है अफीम की खेती करना, या ये भी हमने जान लिया आपके मार्फत कि इसके दुष्परिणाम भी काफी हैं, भूमि जो है वो बंजर हो जाती है, उपजाऊ नहीं रहती और फिर हम कोई खेती उस पर नहीं कर सकते, इन सारी बातों की जानकारी जब हो जाती है तो अब सवाल ये उठता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्रामीण भाई बहन इस खेती को कर रहे हैं, अफीम की खेती से जुड़े हुए हैं और आर्थिक आमदनी भी उनकी हो रही है, अगर उनसे ये चीजें छीन ली जाएं तो फिर उनका क्या हाल होता है? और आप इन समस्याओं को देख रहे हैं तो आप बखूबी ये बातें बता सकते हैं।
1: जहां तक अफीम की खेती की बात है तो जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि एक प्रतिबंधित खेती है जिसकी खेती नॉर्मली एक किसान या कोई भी इंसान अपने खेतों में नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप देश के कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां तक जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, NDPS एक्ट, उसमें जो सजा का प्रावधान है वो बहुत ही कठिन है और लंबी अवधि की सजा उसमें दी जाती है। तो अगर आप इसको करते हुए पाए जाते हैं तो आप देश के कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और आप सजा के पात्र हैं। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में अगर आप पैसे कमा भी लेते हैं, तो अगर आप पकड़े जाते हैं या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है तो आपको जो नुकसान है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा नुकसान है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो आर्थिक फायदा लोगों को दिखता है इसकी खेती में वो एक कोई भी बहुत ही ऐसा प्रेरणा स्रोत होगा जिसकी वजह से लोग खेती करेंगे। साथ ही मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि विभिन्न योजनाएं चल रही हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, जिससे कि खेती के नहीं केवल खेती बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी गांव के लोगों को स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो इन सब का एक व्यापक जो ग्रामीण लाइफस्टाइल है उसमें असर पड़ता है। और मेरे हिसाब से, मैं फिर से आपके माध्यम से अपने जो किसान भाई बहन अफीम की खेती में लिप्त हैं उनसे फिर से आग्रह करूंगा कि वो इसको त्याग दें और जो नॉर्मल खेती है, जो नॉर्मल उनके क्षेत्रों में फसल हो रही है उसकी खेती करें, और साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं प्रदान की जा रही हैं सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, उसका लाभ उठाएं और भयमुक्त वातावरण में अपना जीवन यापन करें।
0: जी बिल्कुल सर। और एक बात और है कि हमारे झारखंड राज्य में जहां हम नक्सलवाद से जूझ रहे हैं, तभी अब एक और समस्या खड़ी हो चुकी है और वो है अफीम की खेती। तो सर, हमारे झारखंड राज्य में और जहां तक आपके कार्याधिकार के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में क्या स्थिति?
1: जहां तक मेरे कार्य क्षेत्र की बात है तो मुख्य रूप से जो चार थाना क्षेत्र हैं वो इससे प्रभावित हैं, विशेषकर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, उन्हीं में अफीम की खेती का दुष्प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि वहां पे जो नक्सल दस्ते थे उनका असर रहा है और लोगों को भय या प्रलोभन के द्वारा उनके द्वारा इसको अफीम की खेती को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो मुख्य रूप से हमारे कार्य क्षेत्र में चार थाने हैं जहां पे इसका दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। उसके अलावा झारखंड राज्य में टोटल फिगर तो मैं बताने में सक्षम नहीं हूं, बट कुछ जिले बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफेक्टेड हैं और जहां पे अफीम की अवैध खेती की जा रही है।
0: सर, जब इस खेती को हम अवैध घोषित कर चुके हैं और लोगों में जिनमें जागरूकता नहीं है, मैं समझती हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनमें जागरूकता अवश्य आएगी और लोग इस ओर सोचेंगे जरूर। सर, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे ग्रामीण जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, साक्षरता दर उनमें कम है और उनकी समझ भी ये नहीं है क्या सही है क्या गलत है, ऐसे में इस ओर इनका आ जाना, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि वो बहलावे फुसलावे में भी आकर इन सब चीजों में लग जाते हैं?
1: आपका ये कहना कुछ हद तक जायज है, बट इन्हीं चीजों से जो ग्रामीण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो हमारे गांव के भाई बहन रह रहे हैं और जो अफीम या इस तरह की अन्य खेती करने के लिए प्रभावित होकर खेती करते हैं, उनको हम लोग उनके बीच जो सरकारी प्रावधान है उसके अंतर्गत जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाते हैं। साथ ही जो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा कांटेक्ट पॉइंट है गांव तक, जो संबंधित गांव के मुखिया होते हैं या वार्ड मेंबर होते हैं या पंचायत समिति सदस्य होते हैं, उनके माध्यम से भी थाना स्तर पे बराबर अंतराल पर मीटिंग करके उनको इस चीज की जागरूकता दी जाती है कि ये अवैध खेती है और आप अपने क्षेत्र में जाकर चौकीदार के माध्यम से एवं अन्य जो भी सरकारी कर्मचारी उस क्षेत्र में निवास करते हैं या कार्यरत हैं उनके माध्यम से भी हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि ये अवैध खेती है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो इसमें संलिप्त हैं वो इसका त्याग करें, इसका नष्टीकरण करें और इसके दुष्परिणामों को समझें। और हम लोग रांची जिला में इसकी खेती के विनष्टीकरण एवं समाप्ति की तरफ कदम बढ़ाएं।
0: एक पुलिस अधीक्षक होने के नाते आप एक और समस्या जो हमारे झारखंड राज्य की है और वो है नक्सलवाद की समस्या, मैं चाहूंगी कि इस विषय पर भी आप हमारे जो श्रोता हैं उन्हें बताएं कि मुख्य धारा से जुड़कर रहने के क्या फायदे हैं और अगर आप मुख्य धारा से भटक चुके हैं तो क्या क्या नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं?
1: जो लोग हमारे भाई बंधु, हमारे राज्य के भाई बंधु जो भटककर नक्सलवाद और वामपंथी विचारधारा से जुड़कर कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के विचारधारा को फॉलो करते हैं जी। उनके लिए मेरा अनुरोध है कि अभी भी सरकार की जो नीति है, सरेंडर पॉलिसी है, वो बहुत ही आकर्षक है, जिसमें आपको मुख्य धारा में आपका हमेशा स्वागत है। जो भी मुख्य धारा से भटके हुए लोग हैं उनका हम हमेशा स्वागत करते हैं कि आप पुनः मुख्य धारा में लौटे। जो विचारधारा लेकर वो कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार और देश के हित में नहीं है और हम सब मिलकर देश के हित में कार्य करें, मेरी उन लोगों से गुजारिश रहेगी। साथ ही जो लोग वापस मुख्य धारा में जुड़ने आते हैं उनके लिए ढेर सारी सुविधाएं सरकार के माध्यम से दी जाती हैं, जिसमें अनुदान राशि के अलावा उनके बीमा का खर्चा उठाया जाता है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, उनके आवासन का। तो साथ ही उनके जीवन यापन के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट की अगर ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो वो भी दी जाती है। तो

0: जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है सरकार की, जो नीति है, वो बहुत ही आकर्षक है। और आपके कार्यक्रम से मैं पुनः जो भाई बंधु भटके हुए हैं मुख्यधारा से, उनको मैं पुनः मुख्यधारा में आने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं, और मैं उनका स्वागत करूंगा अगर वो लोग पुनः मुख्यधारा में जुड़ने को तैयार हैं।
1: तो आत्मसमर्पण नीति का लाभ वो कैसे ले सकते हैं और क्या क्या सुविधाएं अभी उनको मिल रही है, इस बारे में भी मैं आपकी मार्फत उन तक संदेश पहुंचाना चाहूंगी।
0: जो मुख्य रूप से एक जो पहली फाइनेंशियल हेल्प मिलती है वो अनुदान राशि के रूप में है, जो 3 सालों तक मिलती है उनको। जो लोग सब जोनल कमांडर से ऊपर की रैंक में रहते हैं किसी भी नक्सलवादी संगठन में, उनके लिए वो अनुदान राशि 6 लाख रुपए है। और जो दस्ता सदस्य हैं और नीचे के लीडरशिप पोजिशन में रहते हैं, उनके लिए 3 लाख की अनुदान राशि है, जो 3 सालों तक बराबर किस्त में उनको दी जाती है। साथ ही जो लोग इंदिरा आवास के लिए एलिजिबल हैं, उनको इंदिरा आवास के मार्फत घर की और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अदरवाइज अगर 4 डिसमिल जमीन वो लेना चाहें तो वो भी उपलब्ध कराई जाती है सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो लोग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो उसके लिए इच्छुक हैं, उनको ट्रेनिंग भी दिलाई जाती है सरकार के द्वारा, ताकि वो आगे चलकर किसी एक एरिया में अपने आप को डेवलप कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। साथ ही उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, एवं उनके पूरे परिवार का बीमा भी कराया जाता है और बीमे की राशि भी सरकार के द्वारा पे की जाती है। तो ये मुख्य रूप से जो आकर्षण के केंद्र हैं वर्तमान जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है उसमें। उसके अलावा जो उनके ऊपर केसेस होते हैं, जो कांड दर्ज रहते हैं, उन कांडों में भी जो सरकार के पक्ष की तरफ से उनको जो सहायता प्रदान की जा सकती है वो की जाती है।
1: सर, यहाँ पर एक सवाल और मैं करना चाहूंगी। जहाँ तक इन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, इन लोगों ने बताया है कि जब हम मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास करते हैं, जब हम आत्मसमर्पण करते हैं, गांव और परिवार के बीच में पहुंचते हैं, तो वहाँ लोग सहर्ष हमें स्वीकार नहीं करते। और कई बार ऐसा होता है कि वे सोचते हैं कि शायद अगर ये हमसे जुड़कर रहेंगे तो इन पर कोई खतरा आ सकता है। तो भयमुक्त होने के लिए आप अपनी ओर से क्या कहेंगे?
0: जो भी मुख्यधारा में वापस जुड़े हैं, उन लोगों को जहाँ भी जो भी सुविधा मुहैया कराने की बात होती है वो प्रशासन के द्वारा कराई जाती है। जहाँ भी जमीन देकर उनके आवासन की व्यवस्था हो, या उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, या उनके जीवन यापन में जो भी हेल्प सरकार के द्वारा नीति के आलोक में की जाती है वो कराई जा रही है। और अगर ऐसी नॉर्मली जो हम लोग के दृष्टिकोण से आवश्यक है कि सुरक्षा मामले में उनको कहीं भी चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, जहां भी ऐसी बात आएगी तो आप लोकल प्रशासन से संपर्क करें। और मुझे लगता है कि हर जिला स्तर पे एवं जो भी पदाधिकारी हैं जिला प्रशासन के, वो बिल्कुल इनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। और इस तरह की किसी भी भय से परेशान होकर रहने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल उनको भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है।
1: सर, अंत में जो श्रोता अभी सुन रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से अगर वो भटक चुके हैं और इस ओर वो वापस आना चाहते हैं, अपनी ओर से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
0: मैं पुनः आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को और जो हमारे भाई बंधु नक्सलवाद की तरफ भटक कर चले गए हैं, उनसे पुनः अनुरोध करूंगा कि वो मुख्यधारा में वापस लौटें। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की सरेंडर पॉलिसी है, उसमें जो लाभ और जो व्यवस्था उनके लिए दी गई है उसका लाभ उठाएं, अपने जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन में पुनः वापस आएं और अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने गाँव के साथ, अपने जीवन को खुशहाली के साथ जिए और इस देश की प्रगति में, देश के निर्माण में अपना जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सहयोग हो सकता है वो करें, ताकि गांव के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे हम उनके कंस्ट्रक्टिव रोल के लिए उनको जाने, ना कि उनकी जो भटकी हुई विचारधारा है उनके लिए उनको पहचान किया जाए।
1: सर अपना बहुमूल्य वक्त हमें देने के लिए और इतने विस्तार से अफीम की खेती और नक्सलवाद इन दोनों विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार।
1: श्रोताओं अभी हम जानकारी ले रहे थे अफीम की खेती रोकने के लिए प्रशासन की तत्परता, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे गढ़वा पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष शेखर। सर ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी और जितनी भी बातें इन्होंने बताई मैं समझती हूं कि इससे हमें लाभ जरूर मिलेगा। श्रोताओं कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे बातें कर रहे थे कि नशा मुक्त अभियान में जन जन की भागीदारी क्यों जरूरी है। इस विषय पर नशा मुक्त समाज का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक स्वयं को इस अभियान का भागीदार माने। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह स्वयं नशा नहीं करेगा और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगा तो इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। अपने परिवार और समाज में नशा विरोधी जागरूकता फैलाना, युवाओं को खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना, नशे के अवैध कारोबार की सूचना प्रशासन को देना, नशाग्रस्त व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनके पुनर्वास में सहयोग करना, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश फैलाना, विद्यालयों, महाविद्यालयों और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना, यह महत्वपूर्ण कदम हमारे द्वारा उठाए जा सकते हैं। नशा किसी भी समाज के लिए एक गंभीर अभिशाप है। इससे व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र तीनों प्रभावित होते हैं। नशा मुक्त समाज का निर्माण केवल कानूनों या सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है बल्कि इसके लिए व्यापक जन जागरण और जन भागीदारी की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारा आज का आओ साथ चलें कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को दें विदा। नमस्कार।

आओ साथ चले। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे सूत्रधार थी सिंधु मिश्र और प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको बताते चलें, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले

अभी से बस थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पे आप सुनेंगे सांझ सरगम कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्मी गाने।

शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार 5:02 पे युवाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है पालतू पशुओं से प्रेम करें पर सावधानी से, विषय पर इतिहास में आज का दिन, भारत और विश्व विशेष के संदर्भ में और कुछ रोचक तथ्य।

आपसे साझा किए जाएंगे। साथ में समसामयिक के विषय पर भी चर्चा होगी। आज सूत्रधार हैं आद्या शक्ति और खुशी। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक लोक कार्यक्रम 5:30 पे। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय विश्व पशुजन्य रोग दिवस जानकारी और बचाव विषय पर। कुटीर उद्योगों के लिए स्वयं सहायता समूह और सहकारी संस्थाओं की भूमिका विषय पर भी चर्चा होगी। जानकारी दी जाएगी आयुष्मान भारत, गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा विषय पर और बदलते मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल पर भी चर्चा होगी। आज सूत्रधार हैं योगेश्वर राम और महिमा गोल्डन बिलूम। कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

शाम के 6:02 पे खेती बाड़ी कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का विषय है झारखंड में मशरूम की खेती की संभावनाएं विषय पर विशेषज्ञ डॉक्टर अदित झा। कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की। हमारे दुनिया कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 6:30 पे। आज चर्चा का विषय बेटा बेटी एक समान विषय पर पस्परगण्या वार्ता सशक्त नारी से बनेगा सशक्त समाज विषय पर वार्ताकार हैं पराग किशोर सिंह। शाम के 7:00 प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। जिले में आजकल 7:11 पे आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 7:15 पे। आज का कार्यक्रम उरांव भाषा में है। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की। प्रायोजित कार्यक्रम रात्रि 7:45। फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा रात्रि 8:00 आप सुन सकेंगे। सुर्खियों में कार्यक्रम रात्रि 8:30 पे।

रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे सुनहरी यादें कार्यक्रम। ये कार्यक्रम फिल्म संगीतों पर आधारित है। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10:30 पे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे वायलिन पर राग श्याम कल्याण में प्रस्तुति। कलाकार हैं श्यामल बोस। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम आप सुन रहे थे। कार्यक्रम विवरण के तहत आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम का पहला गीत आई सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत है।

फिल्म एक दूजे के लिए का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ों में। रचना थी आनंद बख्शी।

की संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म सीता और गीता का गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। रचना आनंद बख्शी की है, संगीत राहुल देव बर्मन का।

सुन सीता और गीता का गीते भी आप सुन रहे थे, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म बम्बे का बाबू से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है, रचना मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत सचिन देवबर्मन का।

0: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत था सचिन देवबर्मन का। और श्रोताओ आइए आप सुनते हैं फिल्म अंदाज का गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, हसरत जयपुरी की रचना है और संगीत शंकर जयकिशन का।
1: जिंदगी

और कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म गुलामी का गीत, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में, रचना गुलजार की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी साथ आज का ये कार्यक्रम बस यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम

0: शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेलगांव स्थित टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खेल परिसर के रखरखाव की बदहाल स्थिति पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज रामगढ़ के पदरातू में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत लंबित मुआवजे और पुनर्वास की मांग उठाई। वित्त मंत्री ने विस्थापन को राज्य की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। लोहरदगा स्थित डायट चिरी में आज से पलाश बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के तहत 4 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। 9 जुलाई तक चलने वाले इस शिविर का उद्घाटन अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी सीमा लकड़ा ने किया। प्रशिक्षण में जिले के 50 शिक्षक भाग ले रहे हैं। गुमला में भाजपा ने आज जिला अध्यक्ष सागर उरांव के नेतृत्व में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के साथ ही पिछले पखवाड़े से चल रहे स्मृति दिवस कार्यक्रमों का समापन हुआ। साहिबगंज में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माय भारत अभियान के तहत आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉ. मुखर्जी को महान राष्ट्र नायक बताते हुए युवाओं से उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। और लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर ने आज परिसदन के समीप नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम और आधुनिक जिम का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। उपायुक्त ने शेष कार्यों को समय पर पूरा करने और परिसर के नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आयशोता सुनते हैं कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हेलो दोस्तों, आज के युववाणी कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त आद्या
1: और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी।
0: हम करते हैं आप सभी का स्वागत आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों, आज हम करेंगे आपसे ढेरों सारी बातें और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम आपको साझा करेंगे और साथ ही साथ सुनेंगे कुछ प्यारे प्यारे गीत भी।
0: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड जूनोसिस डे है। तो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जूनोसिस क्या है और वर्ल्ड जूनोसिस डे क्यों मनाया जाता है।
1: दोस्तों, अगर आसान भाषा में कहे तो ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसान में फैल सकती है, उन्हें जूनोसिस कहा जाता है।
0: ये बीमारी पालतू या जंगली किसी भी जानवर से फैल सकती है, कभी सीधे संपर्क से, कभी उनके काटने से, या संक्रमित भोजन और पानी के जरिए।
1: वर्ल्ड जूनोसिस डे हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि जानवरों से प्यार करें, लेकिन अपनी और अपने परिवार की सेहत का भी पूरा ख्याल रखें।
0: अब सवाल ये है कि हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके घर में पेट है तो उसका समय समय पर वैक्सीनेशन और रेगुलर हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं।
1: और दोस्तों, जानवरों को छूने, खिलाने या उनके साथ खेलने के बाद हैंड वॉश करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर किसी जानवर ने काट लिया हो या खरोंच लगा दी हो तो उसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें। घाव को तुरंत साबुन और साफ पानी से धोएं और बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क भी करें।
0: बिल्कुल, क्योंकि हमारी छोटी छोटी लापरवाही भी कई बीमारियों का कारण बन सकती हैं।
1: दोस्तों, पालतू पशु और हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। उनका साथ हमें खुशी और अपनापन देता है, लेकिन प्यार के साथ थोड़ी सावधानी भी ज़रूर बरतनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा। उन्हें समय पर टीका लगवाएं, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें, उनके साथ खेलने के बाद हाथ ज़रूर धोएं, और अगर वे बीमार लगें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
1: और याद रखें दोस्तों, खुद छोटे छोटे प्रिकॉशंस अपनाकर हम अपने पालतू जानवरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं और खुद को भी रख सकते हैं।
0: तो दोस्तों, हम बातें तो आपसे और भी करेंगे, पर उससे पहले ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनते हैं एक गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या हुआ था। हर साल 6 जुलाई यानी आज के दिन वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। यह दिन उन बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है, जैसे कि रेबीज या बर्ड फ्लू।
1: दोस्तों, 1885 में आज ही के दिन लुई पैस्टर ने रेबीज के टीके का पहला सफल परीक्षण किया था, जो इस दिवस की शुरुआत का मुख्य कारण बना।
0: साथ ही दोस्तों, 1901 में आज के ही दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे।
1: आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स यानी कि रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं दोस्तों, सन 1947 में ग्रेस हॉपर की टीम ने एक

0: कंप्यूटर की खराबी का कारण एक पतंगा यानी कि मौत पाया जो मशीन के अंदर फंस गया था। तभी से तकनीकी खराबियों के लिए बग शब्द लोकप्रिय हो गया।
1: बिजली का पहला स्रोत बैटरी नहीं बल्कि प्रकृति थी। प्राचीन लोगों ने देखा कि एम्बर को रगड़ने पर वह हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। इसी अनुभव ने आगे चलकर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अध्ययन की नींव रखी।
0: आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पृथ्वी का पहला फोटो अंतरिक्ष से नहीं बल्कि बहुत ऊंचाई पर भेजे गए रॉकेट से लिया गया था। 1946 में एक संशोधित सैन्य रॉकेट में पृथ्वी की पहली तस्वीर अंतरिक्ष की सीमा से ही ली थी।
1: नॉर्वे के एक छोटे से द्वीप पर समय यानी कि टाइम जोन से ज़्यादा सूरज का महत्व है। गर्मियों में वहाँ कई हफ्तों तक सूरज डूबता ही नहीं है।
0: जैसे जैसे दोस्तों किसी नेटवर्क में लोग बढ़ते हैं उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसे हम नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। इसी कारण से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से शक्तिशाली बनती जा रही है। दोस्तों बातें तो हम और भी करेंगे आगे, पर आइए लेते फिर से एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आइए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे अब हम जानते हैं देश भर के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स। भारत के गुवाहाटी में ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग आयोजित की जा रही है। बैठक का उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी, विशेषकर सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण के लिए सदस्य देशों के बीच बेहतर समन्वय और खुफिया जानकारी साझा करना है।
1: इसके बाद है दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई प्लेसेंटा ऑन चिप तकनीक विकसित की है, जो गर्भनाल यानी प्लेसेंटा के कार्यों की प्रयोगशाला में नकल कर सकती है। इससे गर्भावस्था से जुड़ी बीमारियों, दवाइयों के परीक्षण और चिकित्सा अनुसंधान में बड़ी मदद मिलेगी।
0: आयुर्वेद और हर्बल उत्पादों का निर्यात मूल्य वर्ष 2014 में 1.09 बिलियन डॉलर से दोगुना होकर वर्ष 2023 में 2.16 बिलियन डॉलर हो गया है, जो लगभग 150 देशों तक पहुंच गया।
1: भारत 6-7 जुलाई को जेनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के पहले वैश्विक एआई गवर्नेंस डायलॉग में भाग ले रहा है। इस मंच पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित, जिम्मेदार और वैश्विक उपयोग को लेकर चर्चा हो रही है।
0: दोस्तों, कभी कभी ना हम सबके साथ ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ छोटी छोटी बातें नजरअंदाज कर देते हैं और उस वक्त लगता है कि अरे इससे क्या ही होगा, लेकिन कई बार वही छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी की वजह बन जाती है।
1: दोस्तों, सुबह ऑफिस या कॉलेज के लिए देर हो रही होती है तो हेलमेट हाथ में ही रह जाता है और हम लगाना ही भूल जाते हैं। कार स्टार्ट करती लेकिन सीट बेल्ट बाद में लगा लेंगे। सड़क खाली देखी तो जल्दी से निकल गए और फोन बजा तो लगा बस एक कॉल ही तो उठानी है।
0: बिल्कुल, लेकिन ज़िंदगी में हादसों को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए निकले हैं या 5 घंटे के लिए, और ये बात सिर्फ सड़क तक नहीं है।
1: कभी घर से निकलते वक्त गैस चेक करना भूल गए, मोबाइल चार्जर पूरे दिन प्लग में लगाकर छोड़ दिया, बारिश में जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लग गए या ऑनलाइन कोई ऑफर देखकर बिना ही सोचे समझे उस पर क्लिक कर दिया। पर बाद में ऐसा एहसास होता है कि अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाता तो परेशानी टल सकती थी।
0: असल में दोस्तों, सावधानी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो बस छोटी छोटी आदतों का नाम है। घर से निकलने से पहले एक बार दरवाज़ा चेक कर लेना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल को साइलेंट कर देना, सड़क पार करने से पहले दाएं बाएं देख लेना और कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लेना।
1: हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन अगर सुरक्षा के लिए सिर्फ 1 मिनट भी निकाल लें तो शायद बहुत सारे हादसे होने से पहले ही रुक जाए।
0: इसलिए दोस्तों, मंजिल तक पहुंचना तो ज़रूरी है ही, लेकिन सुरक्षित पहुंचना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमेशा याद रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी।
1: दोस्तों, हमें बातें तो आपसे और भी करनी थी, पर अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत सी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का खास ख्याल रखिए और आपकी दोस्त खुशी
0: और आद्या
1: को दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार, नमस्कार।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: बारिश की फुहारों ने दस्तक दे दी है और झारखंड की खूबसूरत वादियां और भी सुहानी हो गई है। तो इस बेहद सी सुहानी और हसीन शाम में आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम श्रमिक लोक में मैं योगेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे साथ है महिमा। महिमा आपको और तमाम साथियों को मेरी ओर से नमस्कार जोहार।
1: योगेश्वर आपको और सभी साथियों को भी मेरी ओर से नमस्कार और जोहार। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इस बारिश के मौसम में अपने सेहत का ध्यान जरूर दे रहे होंगे।
0: बिल्कुल साथियों, सेहत का ध्यान देना तो जरूरी है ही, क्योंकि आप अपने परिवार, कार्यस्थल और इस देश के महत्वपूर्ण आधार हैं।
1: और आज तो विश्व पशु जन्य रोग दिवस भी है, जो हर वर्ष यानी आज के दिन 6 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना और उनकी रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी देना।
0: अगर आजकल देखें तो लोग पशुओं से बहुत प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और जिंदगी का अहम हिस्सा तक बना लेते हैं। साथियों, पशुओं से प्यार करना बुरी बात नहीं है, पर सावधानी, सतर्कता और जागरूकता के साथ ही करना चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात कही योगेश्वर आपने। जब लोग जानकारी रखेंगे तभी तो बीमारियों से बच सकेंगे, वे बीमारियां जो पशुओं से मनुष्य में या मनुष्यों से पशुओं में फैल सकती है।
0: साथियों, ये रोग वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या परजीवों के कारण होते हैं। अगर बात करें पशुजन्य रोग की तो रेबीज, बर्ड फ्लू कुछ प्रमुख रोग हैं।
1: योगेश्वर हमारे साथियों को ये भी बता दीजिए कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है।
0: बिल्कुल महिमा, यह दिवस पशुजन्य रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने, रोगों के रोकथाम और समय पर उपचार, पशुओं के नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच को बढ़ावा देने, मनुष्य पशु पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझना, सुरक्षित खाद्य आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है।
1: और साथियों, अलग अलग जगहों में यह दिवस अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। कहीं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कहीं पशुपालकों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाकर, कहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, तो कहीं सेशन आयोजित करके आज के दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है।
0: साथियों, विश्व पशुजन्य दिवस केवल एक दिवस नहीं, मनुष्य

0: पशु और पर्यावरण के बीच एक रिश्ता है। जब स्वच्छता के साथ रिश्ता बनाया जाए तो गंभीर बीमारियों से जरूर बचेंगे।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो कार्यस्थल पर पूरी मुस्तैदी और जोश के साथ काम कर पाएंगे।
0: और इसके लिए जरूरी है कि इस बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। कार्यक्रम की शुरुआत में ही अपने साथियों को बारिश की खूबसूरती के बारे में बताया था। साथियों, आप इस मौसम का आनंद जरूर लें पर अपना ध्यान रखते हुए।
1: बिल्कुल, और इस मौसम में कोशिश करें हमेशा पानी को उबालकर और फिल्टर करके ही पिए, क्योंकि जब आप उबला हुआ पानी पीते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत कम होता है। पानी में रहने वाले कीटाणु मर जाते हैं और बहुत सारी फूड पॉइजनिंग, दस्त, पेट में मरोड़ जैसी समस्या भी नहीं रहती।
0: इसके साथ आप कोशिश करें कि बाहर का खाना तो बंद ही कर दें।
1: बिल्कुल,
0: सड़क के किनारे खुले में मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। हाँ, ये बात है कि बाहर का खाना खाने का मन तो करेगा पर कंट्रोल करना भी जरूरी है, क्योंकि जान है तो
1: जहान है। और जब आप पत्तेदार साथियों सब्जियों को पकाते हैं तो पहले गुनगुने पानी से अच्छी तरह जरूर से धोना चाहिए। मानसून में नमी के कारण पत्तों के पीछे छोटे कीड़े चिपक जाते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। जब आप अच्छी तरह गर्म पानी से पत्तेदार सब्जियों को धोते हैं तो आपकी सब्जियां कीटाणु रहित होती है।
0: और इस मौसम में हल्का भोजन करें और कोशिश करें कि बासी खाने से हम परहेज करें।
1: इस मौसम में काढ़ा भी बहुत अच्छा उपाय, और मैं तो अदरक और तुलसी का काढ़ा भी पीती हूँ।
0: मैं भी काढ़ा पीकर अपने सेहत का ध्यान रखता हूँ। बारिश के मौसम में खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना बिल्कुल भी नहीं भूलें। पैरों की भी अच्छी तरह देखभाल करें ताकि गंदगी घर तक नहीं पहुँचे।
1: जब आप बारिश में भींग गए हैं तो घर आकर साफ पानी से जरूर से नहाना चाहिए, और कोशिश करें कि जब आप भींगे हुए तो गीले कपड़े जो है वो फंगस का कारण हो सकता है, तो उसको आप साइड करके ही रखें, उसे पहने ना रहे।
0: पता है साथियों, इस मौसम में मच्छरों से बचाव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मच्छर बहुत परेशान करते
1: हैं। बहुत।
0: तो मच्छरों से डेंगू मलेरिया भी होती है। इसके लिए जो गमला है छत के ऊपर, कूलर है या कोई टायर जो छत पर पड़े हैं उसे पानी जमा बिल्कुल ही नहीं होने दें, क्योंकि मच्छर का लार्वा जो है उन्हीं जमे हुए पानी में पनपते हैं और फिर बीमारियां फैलाते हैं।
1: साथियों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर बाहर वॉक संभव नहीं है, क्योंकि जो वॉक होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और अगर वॉक संभव नहीं हो पा रहे तो घर के अंदर ही योग करें और स्ट्रेचिंग जरूर करें।
0: और सबसे अहम बात है कि तबीयत खराब होने पर या बुखार, उल्टी या दस्त होने पर चिकित्सक से सलाह जरूर लें।
1: बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही।
0: ये तो है किसी बात पर जो है गाना भी, और मौसम अभी जो है बारिश का है तो बारिश की बातें हो रही है तो बारिश की बूंदें भी गाने भी याद आनी चाहिए। सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बारिश का मौसम है और आज तो दिन भर बारिश हो भी रही है,
1: बिल्कुल
0: बरखा रानी तो बरस ही रही हैं। और इस मौसम में जो है ना, सबसे अच्छा जो समय होता है वो नर्सरी लगाने का, क्योंकि नर्सरी आज हम लगाते हैं तो कल वही एक विशाल वृक्ष के रूप में बनते हैं जो छांव भी देते हैं। तो अभी जो समय है नर्सरी लगाएं और पेड़ पौधे पौधे लगाएं ताकि वह वृक्ष पेड़ बन सकें।
1: बिल्कुल। और इसी नर्सरी व्यवसाय के बारे में रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, जिसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में है विजय कुमार, जो हमें बतलाएंगे नर्सरी व्यवसाय में रोजगार के अवसर। और इनसे बातें की है, इनसे मुलाकात की है योगेश्वर राम ने।
2: स्वरोजगार जीवन का आधार है। स्वरोजगार के लिए स्वयं के अंदर तलाशने की जरूरत होती है कि हम क्या कर सकते हैं। स्वरोजगार की कोई सीमा भी नहीं है, जहाँ चाह वहाँ राह वाली कहावत चरितार्थ है। आप जिस क्षेत्र में चाहें स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज जो हमारे साथ उद्यमी हैं, वह पर्यावरण को संतुलित करने और धरती पर हरियाली लाने में जुटे हैं। तो चले इन्हीं से जानते हैं इनके उद्यम के बारे में। आपका शुभ नाम?
3: मेरा विजय कुमार हुआ नाम।
2: विजय कुमार, विजय जी इसे रहने वाले कहाँ के हुए आप?
3: हम तो बेसिकली बोकारो के रहने वाले हैं और अभी प्रॉपर रांची में ही रह रहे हैं।
2: और कर क्या रहे हैं आप?
3: अभी हम नर्सरी चला रहे हैं, हमारा एक नर्सरी है।
2: क्या कुछ इसमें कर रहे हैं, क्या कुछ भी है
3: ये नर्सरी में? हम लोग बेसिकली बहुत सारा चीज तैयार करते हैं खुद से, फलदार का, छायेदार पौधे, टिम्बर प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट और भी जितने तरह का सीजनल फ्लावर्स वगैरह सारा कुछ तैयार करते हैं, जो कि लोकल मार्केट में और रिटेल होलसेल सारा कुछ हम लोग अपने नर्सरी से करते हैं।
2: तैयार कहीं और करते होंगे और बेचते कहीं और भी होंगे?
3: हाँ, वो उरमांझी में है हमारा नर्सरी, अभी आनंदी में स्थित है, RTC कॉलेज के पास में। वहाँ पर हम लोग सारा तैयार करते हैं, वहाँ से सेल भी होता है और हमारा एक काउंटर है विकास भवन के जस्ट सामने समाहरणालय परिसर में, तो वहाँ पर एक काउंटर है, सेल काउंटर है, वहाँ पे सेल भी करते हैं। बहुत सारे नर्सरी वाले लोग आके ले भी जाते हैं, वहाँ से रिटेल सेल भी है, होलसेल भी है, तो ये हम लोग दोनों जगह से ये काम करते हैं।
2: खुदरा भी आप बेचते हैं और थोक भी बेचते हैं? ये रांची के झारखंड बाहर,
3: झारखंड के बाहर भी हमारा फ्रूट प्लांट, टिम्बर प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट क्या है, और इससे रिलेटेड हम लोग लैंडस्केपिंग, जैसे गार्डनिंग, बागवानी करना होता है, पार्क बनाना होता है, इससे रिलेटेड सारा, मतलब हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड A to Z सारा सॉल्यूशन हम लोग करते हैं एक ही नर्सरी कैंपस बोलिए या ऑफिस बोलिए वहाँ पे। तो इसमें हम लोग जो लैंडस्केपिंग का जो पार्ट है, जो गार्डनिंग का है, उसमें फाउंटेन, म्यूजिकल फाउंटेन, ये रॉकरी वर्क हो गया, ये सारा कुछ करते हैं हम
2: जी। बहुत अच्छा, ये देखें तो ये तो बहुत तकनीकी कार्य है, विशेषज्ञता की जरूरत है, तो क्या आप कुछ विशेष डिग्री हासिल किए हैं इसके लिए?
3: नहीं, इसमें तो हम लोग, हम जब नर्सरी शुरू किए थे तो

0: 2006 से शुरू किए हैं, तो इसमें हमारे साथ टीम में और भी लोग हैं। एक मिस्टर दिनेश प्रसाद हैं जो कि एमएससी है, बॉटनी से हैं, काफी जानकार हैं और उनका सहयोग रहता है। और हमारे टीम वर्क है, हमारे टीम में सभी बहुत सारे लोग हैं जो कि सभी अलग अलग काम को देखते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: उनके सहयोग से हम लोग ये सारा काम करते हैं।
1: नहीं, किसी कार्य को करने के लिए कई सहयोगी की जरूरत होती है और एक मजबूत टीम ही किसी कार्य को आगे बढ़ाता
0: जी जी
1: है।
0: जी तो उसी सहयोग से आज तक जो हम लोग इस मुकाम पे हैं, तो अभी तक खड़े हैं। बाकी लोगों का सहयोग है।
1: नर्सरी के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है?
0: नर्सरी के लिए तो देखिए सबसे अनुकूल मौसम तो अभी बरसात का है, मौसम होता है, लेकिन रांची का क्लाइमेट बरसात से लेके मार्च तक बहुत सुटेबल होता है। क्योंकि अभी बारिश के समय में होता क्या है कि चूंकि पानी तो लोगों के पास कम है,
1: जी,
0: लोग उससे बचने के लिए बारिश के समय में अभी प्लांटेशन का काम कराना चाहते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो वो अभी ये अनुकूल समय होता है। और जैसे सीजनल फ्लावर हो गया, लैंडस्केपिंग गार्डनिंग के लिए ये सालों भर समय होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: गार्डनिंग के लिए सालों भर का समय होता है, बस केवल लोगों के पास पानी की सुविधा होनी चाहिए।
1: इसमें देखते हैं कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और उसमें फूल फल लगे हुए रहते हैं, तो उसके लिए क्या विशेष तकनीक की जरूरत होती है?
0: नहीं, अभी जितने भी प्लांट जो छोटे छोटे फल के हों या फूल के हों, सारा जैसे फूल फल का है, आम कलमी हो गया, वेनियर ग्राफ्टिंग होता है, अमरूद एयर लेयरिंग होता है, या इस तरह का सीजनल फ्लावर, ये हाइब्रिड हो गया, जो कि अब छोटे ही में ये फल आ जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और इसको तैयार जैसे फल का है, आम का है, तो ये आम्रपाली है, तो आम्रपाली के मदर प्लांट से हम लोग उसके साइन लेके उसको ग्राफ्टिंग करवाते हैं, जिससे ग्राफ्टिंग के नेक्स्ट ईयर ही फ्रूटिंग हो जाता है
1: बिल्कुल।
0: आम वगैरह में। तो वो हम जनरली लोगों को हम लोग ये गाइड करते हैं कि वो 3 साल तक वो कम से कम फल ना लें, क्योंकि पौधा पेड़ जो है मजबूत बन जाए तो फल संख्या ज्यादा आए। वो हम लोग सारा प्रॉपर ट्रेनिंग दे देते हैं, जिनको हम लोग प्लांट देते हैं उनको लगाने का तरीका,
1: अच्छा।
0: कौन सा ट्रीटमेंट कब करना है, कब क्या प्रॉब्लम आए, तो वो फ्री ऑफ हमको फोन कर ले तो हम उनको गाइड कर देते हैं। ये सारी सुविधाएं हम लोग को तकनीकी भी देते हैं, और प्लस लगाते समय भी हम लोग वो जानकारी उनको दे देते हैं।
1: कई बार तो काफी नुकसान का भी सामना करना पड़ता
0: जी
1: हुआ
0: जी हाँ
1: मौसम
0: बिल्कुल। ये
1: के
0: तो होता है,
1: कारण।
0: जैसे कि मौसम अगर मान लीजिए बहुत गर्मी हो गया, तो बीच में अगर पानी की का किल्लत हो गया, तो उसे बचाने के लिए हम लोग नेट हाउस वगैरह का यूज करते हैं। अपने नर्सरी में बनाए हुए नेट
1: बिल्कुल।
0: हाउस, पानी डालने के लिए हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं, और प्लस मिट्टी को हल्का वगैरह रखने के लिए कोकोपीट वर्मी
1: बिल्कुल
0: कंपोस्ट का यूज कर रहे हैं, तो जिससे कि थोड़ा टेक्निकली हम लोग वो सारा काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। और ज्यादातर क्षति की संभावना लगता है कि
0: हाँ,
1: कीट जो होते हैं उससे ज्यादा होते
0: वो
1: हैं।
0: कीट जो है वो किसी भी मौसम में किसी भी रूप में अटैक कर सकता है। वो हो सकता है एयर के थ्रू भी होता है, जमीनी कीड़ा भी होता है, और कभी किसी दूसरे पौधे से तीसरे में भी आ जाता है। ऐसा ये कीट मतलब कीटाणु का कोई रूप नहीं है, ये किसी भी
1: बिल्कुल
0: रूप में आ
1: बिल्कुल।
0: जाता है। जमीन से जैसे लगे हुए पौधे हैं, वो दीमक खा गया, ऊपर से है तो वो कुछ ऊपर वाले कीड़े जो हैं आसमानी कीड़े, वो रात में अटैक करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उससे
1: बिल्कुल।
0: बचने के लिए जिस तरह के कीड़े होते हैं, उस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है उन पौधों के।
1: कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा दिन चलते हैं, और कई ऐसे हैं कि समय पर यदि इसको हम सही जगह नहीं दिए तो जल्द खराब भी हो जाता
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल, ऐसा है, सारे ऐसे वैरायटी हैं जिनको अगर वो सही जगह पे नहीं दिए तो वो खराब हो गया। जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट के बहुत सारे वैरायटी हैं, जो उसमें ग्रुप है, कुछ इंडोर है तो कुछ आउटडोर है। अगर आउटडोर प्लांट को इंडोर कर दिए तो वो खराब हो जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: अगर इंडोर को आउटडोर कर देंगे तो वो खराब हो जाएंगे। उसमें कितना सनलाइट चाहिए, नॉर्मल चाहिए या पूरा डार्क सनलाइट चाहिए, ये सारा डिपेंड प्लांट पे डिपेंड करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अरे, खाद की बात करें तो रासायनिक और जैविक खाद कौन सबसे अच्छा नर्सरी
0: हम
1: के
0: लोग तो
1: लिए?
0: नर्सरी में जैविक खाद ही यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, और लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि जैविक खाद ही यूज करें, मतलब बहुत ज्यादा केमिकल का प्रयोग ना करें।
1: अच्छा, ये नर्सरी का जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, यानी कहें कि स्वरोजगार कर रहे हैं, कैसे इस क्षेत्र में आने की आपकी इच्छा हुई है?
0: घर का ही माहौल था ऐसा,
1: अच्छा।
0: हमारे फादर भी बहुत इंटरेस्टेड थे प्लांट वगैरह में, तो हम लोग एक तो छोटे से वो देखते आ रहे थे, और फिर बीच में हम लोग कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए तो कुछ प्लांट्स परचेज लगा कि अच्छा है थोड़ा लिया जाए, तो वो हम लोगों ने परचेज किया तो लगा कि ये थोड़ा सा अलग हट के कुछ काम है। उसके बाद से हम लोगों को ये मन में आया कि क्यों ना इसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए,
1: बिल्कुल।
0: तो फिर जब इसमें हम लोग आए तो धीरे धीरे करके इसमें घुसते चले गए और कुछ सीख ही रहे हैं पर डे कुछ ना कुछ, और लोगों से सीख रहे हैं या सिखा भी रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस कार्य से आप संतुष्ट हैं?
0: हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं, हम इसमें संतुष्ट

0: पुष्टि ये है कि हम तो कुछ सीख रहे हैं, कुछ ग्रीनरी तो मतलब समझिए इतने सालों से हैं, पेड़ पौधे हमारे से जो ले जा रहे हैं वो कम से कम जमीन में लगा रहे हैं, तो वो कम से कम पर्यावरण के लिए एक संदेश है
1: बिल्कुल
0: कि
1: बिल्कुल
0: लोग पेड़ लगा रहे हैं। कुछ जैसे खाली जमीन पड़ी हुई थी इसको हम लोगों ने पार्क में कन्वर्ट किया, तो लोगों के लिए एक हरा भरा बैठने का जगह, एक सुकून भरा जगह मिल गया इतने भीड़ भाड़ वाले जगहों पर। तो वो सब है अपने इससे लगता है कि हम लोग। और दूसरा सबसे सुकून वाले मतलब इसमें ये लगता है कि हम लोग रोजगार तो कर रहे हैं, साथ में किसी को हम लोग इंगेज भी किए, हमारे साथ जितने टीम
1: रोजगार भी
0: हैं मान
1: करिए।
0: ले रोजगार दे रहे हैं, हमारे साथ जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, जो भी ट्रेंड पर्सन अनट्रेंड पर्सन जो भी हैं, वो उनको कम से हमारे से एक परमानेंट रोजगार उनको
1: मिल
0: मिल
1: रहा
0: गया
1: है
0: है, उनको
1: बिल्कुल।
0: कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको काम कर रहे हैं, हम उनको सिखा भी रहे हैं प्लस पैसे भी दे रहे हैं, और कहीं उनको यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है काम करने।
1: अच्छा, नर्सरी के क्षेत्र में आने के पहले क्या कुछ आपकी इच्छा थी कि हम कुछ
0: हाँ,
1: करने या
0: सिविल
1: बनने
0: सर्विसेज
1: की?
0: पे जाने की इच्छा थी, उसकी तैयारी भी कर रहे थे, कुछ गवर्नमेंट अदर जॉब के लिए भी कर रहे थे, तो कर ही रहे थे, फिर बीच में हम इसमें चले आए, तो जब एक बार थोड़ा सा पैर रख दिए तो फिर उसको कदम आगे बढ़ाते
1: बिल्कुल
0: चले गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वरोजगार करके हम दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं, लेकिन हम किसी जी हम प्राइवेट या
0: किसी
1: सरकारी जो
0: गवर्नमेंट
1: जो
0: से
1: में
0: ये कम से कम
1: बिल्कुल
0: नहीं कर
1: बिल्कुल
0: पाते कि किसी को रोजगार देते। आज ये
1: बिल्कुल
0: संतुष्ट है कि संतुष्टि है कि कम से कम हमारे अंडर में 20-25 लोग काम कर रहे हैं, और प्लस हम लोग क्या है कि जैसे अपने जो ये काम कर रहे हैं तो जो गार्डन डेवलप करते हैं उसकी रख रखाव का भी हम लोग अगर स्कोप मिल गया हमारे फर्म को तो हम लोग वो मेंटेनेंस का भी काम करते हैं, तो वो मेंटेनेंस में भी कम से कम एक एक जगह पे 5-6 आदमी को रोजगार दिए हुए हैं जिससे उनका रोजगार मिला हुआ है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और वो कुछ हमसे सीख भी रहे हैं। वो तो अनट्रेंड पर्सन है लेकिन हम जब जाते हैं उनको कुछ सिखाते हैं, वो सीखते भी हैं, और वो कुछ आभारी भी हैं हमारे कि चलिए आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है।
1: बिल्कुल
0: अगर मान लीजिए वो हमारा काम छूट भी जाता है तो वो कम से कम इतना तो है सक्षम कि वो उनको कुछ ट्रेनिंग दे दी है तो अपने से कुछ कर पाए आगे।
1: बिल्कुल सही। ऐसे युवा जो स्वरोजगार करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में कदम रखना चाहें तो आप क्या कहना चाहें?
0: तो कहना चाहेंगे बिल्कुल रखिए, इंटरेस्ट से कीजिए जो भी काम, इस तरह का बहुत अच्छा काम है, और मन लगा के कीजिए, कीजिए भी और किन्हीं को सिखाइए भी, रोजगार का क्षेत्र बढ़ेगा, बहुत अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि आज के डेट में पर्यावरण के लिए इस तरह का जो अगर नर्सरी से रिलेटेड हम लोग काम कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी देखिए बिल्डिंग बन रही है बहुत
1: जी
0: जगहों
1: जी
0: पर,
1: बिल्कुल सही।
0: सारा जंगल मतलब पेड़ कट रहा है, तो अभी क्या है कि एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है लोगों में कि फ्लैट तो बन गया है लेकिन उनके पास पौधे लगाने के लिए जगह नहीं है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: अब ये एक कॉन्सेप्ट आ गया है टेरिस गार्डन का, और उनके पास अगर कुछ ये जैसे बरांडा वगैरह जगह है तो उसमें वर्टिकल गार्डन लगाने का, तो ये तो कम से कम है कि वो चाहे कि 10 पॉट लगाए वर्टिकल गार्डन, एक वो दीवार है तो उसमें कम से कम हरा भरा दिखे, नहीं तो सारे तरफ तो कंक्रीट ही दिख रहा है।
1: बिल्कुल, कम से कम शुद्ध वायु तो मिल
0: हाँ,
1: सके।
0: शुद्ध
1: अच्छा,
0: वायु मिल सके।
1: आज की जो स्थिति को देख रहे हैं, पर्यावरण की स्थिति को देख रहे हैं, जल जो संकट है उसको देख रहे हैं, और इस पर्यावरण और जल संकट को देखते हुए हम सभी जानते भी है, लोग कह भी रहे हैं कि अधिक से अधिक यानी पौधे लगाएं
0: पौधे
1: ताकि
0: लगाए
1: एक दिन विशाल वृक्ष बने और उसका लाभ हम सभी को
0: सभी को
1: मिले
0: मिले।
1: और समय पर बारिश भी हो।
0: जी
1: तो संदेश के रूप में आपका क्या कहना होगा, चूंकि आप इस कार्य से जुड़े हुए हैं अब?
0: मेरा तो लोगों से यही लोगों से अपील है, मतलब आग्रह करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, जिससे जो अभी मौसम का जो अभी हम लोग देख रहे हैं या क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रहा है, कितना गर्मी ठंडा या बारिश टाइम से नहीं हो रहा है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कम से कम एक पेड़ भी लगाएंगे,
1: बिल्कुल
0: एक पेड़ भी लगाएंगे तो आप अगर एक एक लगाएंगे तो बहुत हो जाएगा, जितने पॉपुलेशन है उस हिसाब से तो ये क्लाइमेट नेचुरली बहुत चेंज हो जाएगा, और लोगों को लगाना ही चाहिए, क्योंकि हम ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे
1: छोड़ रहे
0: हैं,
1: हैं,
0: तो वो उसको तो मेंटेन रखना पड़ेगा।
1: और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो इसके लिए पेड़ जरूरी
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल।
1: और आज जो हम पौधे लगाएंगे वही एक विशाल वृक्ष
0: अभी
1: बनेंगे और
0: अभी
1: लाभ
0: आप
1: मिलेगा।
0: देखिए रोड में चलिए तो अभी कितना चाहिए रोड जाम मिलेगा, एक तो गाड़ी का पोल्यूशन है, धुआं निकल रहा है उससे, अभी काफी इस तरह का पोल्यूशन का बहुत सारा
1: बिल्कुल
0: बढ़ गया है, तो लोगों को कम से कम एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए।
1: विजय जी, हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा जो संदेश दिए गए हैं उसे लोग अमल करेंगे, और अभी फिलहाल वक्त भी है पौधे लगाने
0: जी
1: का, और हर व्यक्ति एक क्या 5-10 जितना अधिक हो सके
0: हाँ,
1: पौधे
0: जितना
1: लगाए।
0: ज्यादा मैक्सिमम हो वो लगाएं।
1: जी जी

0: वो सभी के लिए फ्यूचर के लिए बढ़िया होगा
1: और इस क्षेत्र में अपना स्वरोजगार भी खड़ा करें।
0: स्वरोजगार भी खड़ा करें।
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: बहुत अच्छी जानकारी दी विजय कुमार ने कि खुद भी सीखे और दूसरों को भी सिखाए। और साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि नर्सरी व्यवसाय में रोजगार के बहुत अवसर है, इस फील्ड में आप जरूर जाएं।
3: बिल्कुल, और फिलहाल का समय भी है नर्सरी लगाने का, क्योंकि आज नर्सरी लगाएंगे यानी आज हम पौधा बीज डालेंगे तो कल पौधा तैयार होगा और फिर एक धीरे धीरे जो है विशाल वृक्ष बनेगा जो छांव देगा, फल देगा। तो अभी का अनुकूल समय है नर्सरी लगाने का।
2: बिल्कुल। और साथियों, हम बातें कर रहे थे स्वास्थ्य के बारे में। ये मौसम जो है इसमें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ साथ जागरूकता भी बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल, और श्रमिक साथियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड बन जाने से समय पर जो है काफी सहूलियत होता है।
2: बहुत अच्छी बात कही आपने। आयुष्मान कार्ड जो भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलते हैं, एक सुरक्षा कवच है जो कमजोर और जागरूक जरूरतमंद परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए बनाया गया है।
3: पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। इस राशि का उपयोग सूचीबद्ध अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज, जांच, सर्जरी के लिए किया जाता है।
2: और पता है योगेश्वर, जब परिवार या रिश्तेदारों में कोई बीमार होते हैं तो समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि उस समय में जो पैसे होते बहुत ही मतलब खोजने पड़ते हैं। इसी विपरीत परिस्थितियों में जो आयुष्मान भारत योजना है वो बहुत ही मदद करती है।
3: हम तो अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो जरूर लें। ये आपका साथी है उन दिनों का जब आपको कुछ समझ ना आए। ये योजना आपके स्वास्थ्य के लिए बनाई गई है।
2: योगेश्वर, स्वास्थ्य के लिए गाना भी बहुत जरूरी है, जिसे सुनकर हमारे साथी तरोताजा हो जाए। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: इसी के साथ वक्त हो चला है श्रमिक साथियों से आज्ञा लेने का। इसी कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपने मित्र योगेश्वर
1: और महिमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रमिक लोक कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम क्रिकेटा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं को गति देने और खेल तथा सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रांची सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि रिम्स 2 परियोजना की भूमि और बोकारो के वैध कार्यों में नियम उल्लंघन के मामलों पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज धनबाद में वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के कड़े निर्देश दिए। पलामू स्थित चैनपुर के रामपुर गोलीकांड में सिकंदर चौधरी की हत्या के खिलाफ आज समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच और बाकी आरोपियों के अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। सरायकेला के सिद्धू कानू पार्क में आज से झारखंड आंदोलनकारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। आंदोलनकारी पिछले 7 महीनों से लंबित सम्मान राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम हमारी दुनिया और खेती बारी। पहले आप सुनेंगे खेती बारी कार्यक्रम।

0: गाछ लगाओ पर्यावरण बचाओ खेती बारी कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के सुनैना बहन बटले जमा जमा जोहार और युवराज भाई राउर के हूँ जोहार
1: जोहार जोहार सुनैना बहन राउर के जोहार और हमर संगे संगे सब हमरे के जे सुनियो भाई बहन मन है सबके भी जोहार और स्वागत है कार्यक्रम में
0: एकदम और कहो का हाल चाल है
1: एकदम हाल चाल तो नगदे है
0: हाँ नगदे रह के चाहे का लेके सुपर एकदम हाल तो एकदम है मैं कहो है नहीं चाल के तो खैर नहीं हो पूछल से चली लेकिन हाल तो मूर्खे हाल है एकदम सुपर जोर से नहीं
1: सही कह लिया आप देखो यहाँ का है कि दो दिन से जहीने बरखा बरसात है तो ऊपर में हमारे का जो किसान मन है हमरे तो देखो किसान है कि तो हमरे में तो चेहरा मन में
0: हाल रही तब ही रौनक रही
1: रौनक रही
0: सेल तो कहली भाई चाल के तो छोड़ दे ओ हाल तो सुपर एकदम हाँ। नगद है तो बेसे बेस हुई सब नहीं
1: काले के देखो एखन बीड़ा उड़ा करे का समय आ जा है एखन समय है के जे हमरे एखन बीड़ा उड़ा कर सकीला और सही हाँ। समय से सब चीज कर ले हमरे कर पैदवार और जे हमरे कर खेती बाड़ी कर समय है वो सही बेरा से चले ला
0: एकदम समय सिरे कुछ भी काम करो ने तो सब बेसे हो गया नहीं तब सेहे तेर रो जे कहली धान कर है नहीं कि बीड़ा मन करे खाए ऐसा वैसा एकदम सुपर बात कहली लेकिन उनकर संगे संगे हमरे मन के ने अपन सेहत कर भी ध्यान रखे खाए और सेहत कर ध्यान रखे के लिए हमरे के जरूरी है कि हमरे औषधीय पौधा कर खेती मन के एकदम करे खाए सुपर जोर से नहीं जैसे तुलसी मन हो गलक अश्वगंधा मन हो गलक नीता बेलो वीरा मन होला लेमन ग्रास हाँ, मने हाँ। सब एकदम नाना रकम कर किसिम किसिम कर चीज तो घर में भेटाई रोड के
1: सही बात है देखो अगर हमरा औषधीय पौधा कर हमरे मन चर्चा करब तो हमरे कर जे भारत वर्ष में देखब
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ।
1: एकदम प्राचीन बेरा से ही औषधीय पौधा कर खेती हुआ थे और
0: थे
1: प्रयोग भी हुआ रहे जे बेरा जे खन हमारे मन के ही ला जे मेडिकल साइंस जे बेरा मेडिकल साइंस नहीं रहे
0: नहीं रहे तो
1: से बेरा से ही हमरे कर जे यूनानी है के और आयुर्वेदिक हके हमरे कर और उसके बाद जे भी हमरे कर औषधीय पौधा मन कर जो उपचार हुए ला से बहुत पहले से चलते आवत है और
0: देखो
1: इखे
0: भाई
1: देखा देखी विदेश कर जो विदेश का डॉक्टर मन है वो मन भी के अपनात है
0: अपना था देखो सबसे पहले का रहे नहीं पहले तो कोई दवाई अंग्रेजी दवाई मन रहबे नहीं करे देखो कितनों बार बीमार होते रहे राजा महाराजा कह दो चाहे आम इंसान मतलब कोई भी तो पहले जड़ी बूटी से ही आदमी मने ठीक होते रहे अरे ये बीमारी में ये जड़ी बूटी कर दवाई बनाए खाए ईसन में ईसन खियाए खाए तो प्राचीन काल से ही कर तो शुरुआत होवल है नहीं सही ब्रश चलते आ है और एखन तक चलते हैं भले अंग्रेजी दवाई चलत है लेकिन एक भी आदमी मन नहीं भूला है हम रहे के देखो ना कहीं पेट मने खराब होला अरे मुरुख फुटकल के डबका के देव नहीं
1: सही बात
0: कही
1: है
0: लगी ने बेंग सा के खाओ नहीं भूख लगवाई कही
1: हमरे
0: लगी
1: आजी दादी मन है उमन एखनो वह है हमरे का जो प्राकृतिक जो उपचार है वह विधि का अपनाए ना जैसे अगर मान के चलो अगर सही कह ली कि पेट बथा हो गलत तो मन देवे ना अजवाइन के भूंज के देवे ना चाहे अजवाइन पानी के गर्म करके देवे ना तबियत खराब हो गलत तो लेप मन के लगाए ना तो एखनो अगर देखब तो हमरे का जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है वो एखनो सिराए न के बल्कि और पनपते जाते हैं
0: पनपते जाते सहेले तो जरूरी है
1: बहुत बेस भी है
0: जरूरी है कि औषधीय पौधा कर खेती हम लेके करे है पुरजोर से ऐसे भी औषधीय पौधा कर खेती किसान मन ले बेहद एकदम मुनाफा वाला सौदा लागे अश्वगंधा तुलसी एलोवेरा और लेमन ग्रास जैसन पौधा कम लागत और कम पानी में उसके शानदार मुनाफा हमरे के देवत है कि नहीं तो हमरे काले नहीं खेती करो और मुनाफा भी कमाओ
1: मुनाफा कम तो, सही बात कह ली और देखो उकर संगे संगे का है कि हमरे का पर्यावरण संरक्षण में भी काम आवेला
0: एकदम सुपर कर
1: और इकर में क्या है कि जैव विविधता भी इकर में बना के रखे का बहुत महत्वपूर्ण ये साबित होते जाते हैं दिनों दिन
0: एकदम
1: तो से ले अगर देखब तो हमरे कर जो किसान भाई बहन मन है उमन वास्ते भी अर्थव्यवस्था के लिए एगो देखब तो ये नींव हके मतलब कम समय में कम खर्चा में इमन बढ़िया कर में खेती करके बढ़िया मुनाफा कमा सके
0: लेकिन देखो ये औषधीय खेती करे से पहले हमरे के बहुत सारा बात का ध्यान देवे कर दरकार हो जैसे सही पौधा कर चयन है नहीं माटी कर जांच और तैयारी

0: दुकान मन में जाब, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट मन में जाब, तो वहाँ आजकल चाय के बदले और लेमन ग्रास कर ही प्रयोग करत है, और आदमी मनु के बहुत एकदम चाव से वो लेमन ग्रास कर के पियत है।
1: तो कोई जरूरी न के कि रे रेस्टोरेंट में जाओ चाहे होटल में खाओ, रे घर में भी मुरो को तोड़ के लानो ने
0: तो और औषधीय पौधा का कितना फायदा है, तो उसे ले
1: हमरे पैसा काले खर्चा करा भाई, अपने उपजाओ और पियो और दूसर के भी पियाओ नहीं तब
0: सही काले
1: तब वही वाला बात हो जाला।
0: नहीं तो हमरे का राज गोइट तो नहीं सिराई काले के ढेर दिन बाद भेटा है, लेकिन हमरे के कार्यक्रम का भी आगे बढ़ाया है,
1: आगे बढ़ाया कर मुरुक पानी भी आवत है तले रौरे कहब कि कार्यक्रम का आगे बढ़ाया कर चाय पानी तो बनेला नहीं भाई, हमके पता है राव थर्मस में रौरे दम मुरुक लाल चाय के लाइन ही
0: लाल चाय नखे
1: ऊपर आदि माने लेमन ग्रास भी है, देखत ही अदरक भी है, तेज पत्ता भी है डालल, खुशबू आवत है भाई सिले मैं लुकाओ। चलो हमरे कार्यक्रम का आगे बढ़ाई ला तरे हुने भी ध्यान देव है नहीं सिले नखे भगाए सबके। चलो का तैयारी कर ही रहे आज कल,
0: चलो एक नागपुरी में कृषि गीत सुन लेवेला जेके का है रंथु गिरी और संगी मन
1: एकदम।

0: तो एखन हमरे नागपुरी कृषि गीत सुनत रही जे के गाय रहे रंथुगिरी और संगीमन। तो मनोरंजन का संगे संगे हमरे के जानकारी भी करे है नी तब। तो चलो एगो हमरे जानकारी करब कि झारखंड में मशरूम कर खेती कातिर करल जा सके, इके बताबे विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत झा और इनकर से बातचीत कर रहे हैं कॉर्नेलियस मिंज।
1: श्रोता मित्रों नमस्कार। किसानवाणी कार्यक्रम में किसानों के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कई विषयों को लेकर आते हैं। आज के दिन में अगर देखा जाए तो किसानों की अगर आमदनी बढ़ाने की बात होती रहती है और किसान भी चिंतित रहते हैं कि कैसी आमदनी बढ़े, पर सामान्य सिर्फ धान की खेती करने से उतनी आमदनी किसानों को प्राप्त नहीं हो पाती है। विगत कुछ वर्षों से हमारे झारखंड राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है और कई किसान इससे जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ एक मशरूम की खेती जो है वो हमारे राज्य में अब होने लगी है और कई किसान इससे जुड़कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं और हमारे राज्य में इसकी अपार संभावनाएं देखी भी जाती हैं। कई महिलाएं तो इससे जुड़कर सशक्त भी हो रही हैं। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि हमारे राज्य में मशरूम की जो खेती है उसकी संभावनाएँ कैसी हैं, व्यावसायिक स्तर पर या फिर यूं कहें अपने खाने के लिए भी हमारे कृषक मित्र कैसे इसका उत्पादन कर सकते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अजीत कुमार झा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिषद, कृषि प्रणाली की पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र के लिए अनुसंधान केंद्र पलांडू नामकुम के पादप रोग विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: किसान भाइयों को भी हमारा जोहार नमस्कार।
1: सर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि विगत कई वर्षों से मशरूम की खेती का जो प्रचलन है हमारे राज्य में बढ़ा है और कई महिलाओं को मैं देखता हूँ डोर टू डोर जाकर इसका सेल भी करते हैं, बड़े आराम से बिक भी जाता है। इसका बाजार कहें तो अच्छा है, बाजार के लिए अभी तक कोई समस्या उस तरह से नहीं आ रही है और आमदनी का भी एक बढ़िया ये स्रोत बन के उभरा है। साथ ही साथ प्रोटीन का ये एक बढ़िया स्रोत है, इससे प्रोटीन भी हमें मिलता है और सब्जी कहें तो ये बहुत पसंदीदा सब्जी है, सभी को इसे बड़े शौक से और चाव से खाते हैं, घर में भी और रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्तरा या फिर होटलों में भी ये बहुत आराम से बिकता है। तो हमें पहले मशरूम के बारे में बताएं कि मशरूम क्या है और मशरूम का हमारे दिनचर्या में क्या महत्व है।
2: जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं कि मशरूम जो है एक स्वादिष्ट पौष्टिक खाने जो फफूंद है, तो झारखंड में चूंकि यहाँ जंगल है और पहले से ही यहाँ मशरूम जो है जंगल में अपने आप बहुत अधिक उपजता है। आज के दिन में भी आप देखेंगे तो कई तरह के मशरूम जो है सो आपको खासकर बरसात के मौसम में जून जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक जंगलों में मिलते हैं, जिसमें कि बहुत सारी प्रजाति ऐसे हैं जो कि खाने योग्य है। झारखंड में जहाँ तक बात है तो हम मशरूम की खेती सालों भर कर सकते हैं और इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं कि हम इसको रूम के अंदर कमरे के अंदर मशरूम की खेती करें। सबसे पहली बात है कि मशरूम की खेती हम क्यों करें। अगर हम इस पर बात करेंगे तो जैसा कि आप शुरू में भी बोल रहे थे कि लोगों को अपने खाने के लिए इसमें प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा है जैसा आप बता रहे थे, और ये सही है कि मशरूम में जो है सो बहुत अधिक प्रोटीन है। इसके अलावे जो है सो इसमें आयरन, जिंक और बहुत सारा न्यूट्रिएंट भी इसमें पाए जाते हैं। तीसरी बात है कि इसमें विटामिन डी, जो कि जनरली किसी भी जो कि वेजिटेरियन सोर्स है, शाकाहारी सोर्स है, उसमें विटामिन डी नहीं पाया जाता है और मशरूम में जो है सो विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। आजकल देखेंगे कि 40 से जिनका उम्र ज़्यादा हो गया है तो सभी लोग देखेंगे कि ज़्यादातर आदमी 20% भारत में आदमी जो है या पूरे विश्व स्तर पर बात करें तो डायबिटिक शुगर का पेशेंट है, चीनी का शिकायत है और मशरूम में जो है सो किसी तरह का स्टार्च नहीं होता है, शुगर वाले पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। डॉक्टर भी जो है जो कि शुगर से ग्रसित है, जिनको डायबिटीज है, उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर भी खाने के लिए बोलते हैं। जहाँ तक और बात है कि आप देखेंगे कि यहाँ बहुत लोगों को अभी फैट मतलब कोलेस्ट्रॉल

0: कोलेस्ट्रॉल का समस्या है, हार्ट का, हार्ट अटैक और कई तरह का हार्ट में प्रॉब्लम है, तो मशरूम में जो है फैट है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है और बहुत कम फैट की मात्रा है भी तो बहुत कम है और इसमें किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल नहीं है। इसलिए जो हार्ट के पेशेंट हैं जो कि मीट, मुर्गा, मछली या अन्य कोई सब्जी नहीं खा सकते हैं जिसमें कि फैट का समस्या है, तो मशरूम उसको बहुत आसानी से सालों भर हमेशा खा सकते हैं। तो एक तो इसके लिए मशरूम की खेती किसानों को करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह के मशरूम की खेती करेंगे तो जितना आप पूंजी लगाएंगे उसका दुगुना इनकम है। अब है कि कौन कौन सा मशरूम हम यहाँ कर सकते हैं, सालों भर किसकी खेती कर सकते हैं। जैसे 12 महीना है तो 12 महीना में जो सबसे ज़्यादा 8 महीना 7 महीना किसान भाई जो है सो ओइस्टर मशरूम, जिसको कि हम ढिंगरी मशरूम कहते हैं, इसकी खेती
1: पुआल की गेठरी में बनता है क्या?
0: वो भी कुट्टी पर ही बनता है, पुआल की गेठरी नहीं, कुट्टी में बनता है, जिसको कि ओइस्टर, इंग्लिश में ओइस्टर कहते हैं, और ऐसे ढिंगरी मशरूम कहते हैं, जो कि किसान भाई 7 से 8 महीना झारखंड के वातावरण में कर सकते हैं, क्योंकि इस मशरूम की खेती के लिए जो हमारा तापमान है वो 25 से 30 डिग्री के बीच चाहिए और खासकर रांची के आसपास जो है सो साल में 8 महीना रूम के अंदर का तापमान 25 से 30 डिग्री होता है, तो 25 से 30 डिग्री तापमान पर इसकी खेती बहुत सावधान अच्छी से और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया कि हम ढिंगरी मशरूम का करेंगे। गर्मी जब आता है तो गर्मी में थोड़ा ढिंगरी मशरूम में खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जैसे आप मार्च से अगर शुरू करें तो मार्च से लेकर के जून तक ये 3-4 महीना जो है सो आप मिल्की मशरूम, जिसको कि दुधिया मशरूम कहते हैं, और इस मशरूम का खेती जैसे आप साउथ में जानते होंगे, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, तो उधर थोड़ा तापमान ज़्यादा रहता है, हमेशा जाड़े में भी वहाँ थोड़ा अधिक तापमान रहता है, तो वहाँ पर 8 से 9 महीना लोग मिल्की मशरूम की खेती करते हैं। लेकिन झारखंड में चूंकि यहाँ पर मिल्की मशरूम के लिए 25 से लेकर के 37 डिग्री का तापमान चाहिए, तो गर्मी में तापमान झारखंढ में भी बढ़ जाता है और पलामू, गढ़वा और अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी बढ़ जाता है, तो झारखंड के लोग जो है सो मार्च से लेकर के मई जून तक मिल्की मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो एक होता है पुआल मशरूम, जिसको कि आप बता रहे थे कि पुआल का बंडल में जो धान का पुआल है उसके बंडल में हम लोग उसकी खेती करते हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड के बगल का राज्य जो उड़ीसा है, उड़ीसा में 80% लोग जो है सो ये पुआल मशरूम, जिसको कि इंग्लिश में पैडी स्ट्रॉ मशरूम कहते हैं, इसकी खेती करते हैं, और इसकी खेती करके वो पूरे मतलब देश में जो है सो सबसे अग्रणीय राज्य में आते हैं। अगर बात करें तो बिहार, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ये 3 स्टेट जो है जहाँ की मशरूम की सबसे अधिक खेती होती है, और जिसमें उड़ीसा जो है सो केवल पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती करके सबसे आगे है। इसके लिए भी टेम्परेचर जो है सो 25 से 35 डिग्री चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, मतलब पूरा वातावरण में नमी होना चाहिए, तो रूम के अंदर आपको नमी बना के रखना है। और अगर आप बात करेंगे तो जून जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक पैडी स्ट्रॉ मशरूम की खेती भी किसान भाई जो है सो यहाँ आसानी से कर सकते हैं। कमर्शियल जो हम लोग मशरूम की खेती करते हैं उसमें आता है बटन मशरूम, आप देखे होंगे कि बाज़ार में बटन मशरूम जो है सो पनेट्स में, छोटे छोटे प्लास्टिक के पनेट्स में सालों भर बिकते रहते हैं, लेकिन वो जो है इंडस्ट्रियल बेस्ड उत्पादन है, वो सालों भर इनके पास बड़ा पूंजी है, वो इंडस्ट्री उसका एस्टेब्लिश करके उसका कंपोस्ट यूनिट, इसके अलावा क्रॉपिंग रूम इत्यादि बना करके वो सालों भर बटन मशरूम की खेती करते हैं। लेकिन छोटे किसान भी अगर चाहेंगे तो जाड़े के मौसम में, क्योंकि बटन मशरूम में जो है सो 15 से लेकर के 18 डिग्री तक का तापमान चाहिए, तो झारखंड में खासकर रांची का बात करेंगे तो नवंबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक रूम के अंदर हम लोग 15 से 18 डिग्री का तापमान मेंटेन कर लेते हैं, और छोटे किसान जो भी हैं यहाँ पर खासकर रांची में देखते हैं कि सभी लोग बटन मशरूम की खेती करते हैं, और अभी वो लोग करना शुरू कर दिए हैं। बटन मशरूम की खेती में तो 1 महीना पहले कंपोस्ट बना के तैयार कर लेना पड़ता है, उसका कंपोस्ट बनाने में 1 महीना लगता है, उसके बाद वो नेचुरल कंडीशन में अपने घर के अंदर बटन मशरूम बिना किसी एसी इत्यादि लगाए हुए कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा खर्चा करेंगे, छोटे किसान भी अगर खर्चा करेंगे, थोड़ा एसी लगा लेंगे, कमरा को थोड़ा ठीक ठाक कर लेंगे, और अगर आप कमरे का तापमान 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे किसी भी तरह से, तो आप बटन मशरूम की खेती भी कर सकते हैं। सकते हैं। तो इस तरह से जो हम तीन चार मशरूम का बताएं, झारखंड में पूरे सालों भर इसकी खेती किया जा सकता है और इससे किसान भाई जो है सो अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
2: तो आपने बताया कि हमारे झारखंड राज्य में विशेषकर ढेंगरी मशरूम और मिल्की और पैडिस्ट्रो मशरूम के साथ साथ बटन मशरूम भी तीन चार महीने की जा सकती है और इसकी अच्छी संभावनाएं हैं यहाँ पे। रोटा साहब, थोड़ा ये बताया जाए कि इसमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है।

0: सामान्य क्या क्या ध्यान देने वाली बात है?
1: देखिए, आप किसी भी तरह के मशरूम की खेती करेंगे तो अगर छोटे स्तर पर करते हैं, छोटे किसान करते हैं, तो एक उनको छोटा सा रूम चाहिए, और कम से कम हम लोग किसान को बोलते हैं कि 15 फीट × 18 फीट का रहे तो वो उसमें एक प्रॉफिटेबल इनकम, मैंने अच्छा इनकम उसमें ले सकते हैं। तो इस तरह का रूम चाहिए। रूम जो है सो कच्चा का भी हो सकता है, पक्का का भी हो सकता है, फूस का भी हो सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग थोड़ा उसमें पानी का स्प्रे करते हैं मशरूम में फल निकलने के समय, तो नीचे पानी न रहे तो नीचे का जो फर्श है वो हल्का सा सीमेंटेड होना चाहिए। वो मिट्टी का रहने में आप अगर उसमें चलेंगे तो उसमें कादो लग जाएगा और जहाँ तहाँ धब्बा और गंदा लगेगा। तो ये सावधानी एक रखना है कि रूम थोड़ा साफ सुथरा और अच्छा रूम होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि पक्का का रूम हो। दूसरी बात है कि आप जहाँ पर मशरूम की खेती करते हैं तो करने से पहले जब आप बैग बनाते हैं, सबसे पहली बात है कि आप बीज, मशरूम में सबसे इंपॉर्टेंट चार चीज होता है, एक होता है बीज, मशरूम का बीज। तो मशरूम का बीज सभी किसान बना नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रांची में और पूरे झारखंड में जो है सो बहुत सारा प्राइवेट और सरकारी संस्था है। जैसे हम लोग हार प्लांडू में काम करते हैं तो प्लांडू में भी हम लोग बीज बनाते हैं। अगर रांची की बात करें तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भी मशरूम का बीज बनता है। रामकृष्ण मिशन दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी मशरूम का बीज बनता है। ये 3-4 सरकारी संस्था है, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप जो है बीज को प्राइवेट से भी, प्राइवेट भी हम लोगों के यहाँ से ट्रेनिंग करके बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बड़े स्केल पर मशरूम बीज का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है बीज, किसी भी खेती के लिए बीज इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप मशरूम के बीज जब लेते हैं तो उस समय आपको सावधानी रखना है कि वो जो आप बीज का पैकेट देखेंगे वो पूरा सफ़ेद होना चाहिए, उसमें किसी तरह का काला धब्बा या किसी तरह का दूसरा तरह का धब्बा उस पर नहीं होना चाहिए। इवन कभी कभी देखेंगे कि मशरूम का जो पैकेट है, बीज का पैकेट है, वो हल्का पीला हो जाता है। चूँकि वो पीला इसलिए हो जाता है कि अगर लेट तक, अगर वो आज बनाया है और 1.5 महीना तक उसको नहीं सेल हो पा रहा है, रखा हुआ है, तो पीला हो जाता है। पीला होने से बहुत कुछ खराबी तो नहीं है, लेकिन उत्पादन जरूर थोड़ा कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब एकदम ताज़ा, स्वच्छ और साफ़ सुथरा बीज लेना चाहिए, सबसे पहली बात है। दूसरा है कि स्ट्रॉ, माने मशरूम का खेती जिस पर करते हैं, जैसे धान का कुट्टी हुआ या गेहूँ का भूसा हुआ, जिस पर भी आप करना चाहते हैं, झारखंड में जो है सो धान की कुट्टी आसानी से मिलती है। तो धान का जो आप कुट्टी लेंगे किसी भी प्रकार का मशरूम की खेती करने के लिए, तो धान का कुट्टी थोड़े अच्छे जगह से, साफ सुथरा जगह से लेना है। और दूसरा, उसको लेने में ये भी रखना है कि बहुत छोटा छोटा उसका पीस नहीं हो, कम से कम 4 से 5 mm साइज का कटिंग होना चाहिए। क्योंकि बहुत छोटा कटिंग होने से क्या होता है, जब हम बैग बनाते हैं तो उसमें बाद में किसी तरह का बीमारी आने का चांस रहता है। तो आप अगर किसी भी कुट्टी जहाँ काटता है दुकान में जाएंगे और उसको बोलेंगे कि एक ब्लेड छोड़ करके कुट्टी को काटने के लिए, तो 4 से 5 सेंटीमीटर का साइज का आपका आ जाएगा, तो कुट्टी लेना चाहिए। दूसरा है कि स्टेलाइजेशन, जब हम कुट्टी को भिंगाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं किसान को बताने का कि आप जब कुट्टी भिंगाएंगे तो सबसे पहले उसको एक मतलब घंटा तक जो है सो गर्म पानी, बॉयल पानी ले लीजिए, और उस पानी में जो आपका कुट्टी है, वो धान का भी हो सकता है, गेहूँ का भूसा भी हो सकता है, उसको एक घंटे तक उसमें बॉयल करिए। बॉयल करने से क्या है, उस कुट्टू में जो है जो भी जीवाणु होगा या जो कोई अन्न फफूंद होगा तो वो सब को ख़त्म हो जाएगा, ताकि आपका मशरूम का जो फफूंद है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। तो इसलिए किसान भाई को हम सलाह देते हैं कि गर्म पानी में बॉयल करने के बाद ही उसको लगा लें। दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। दवा का प्रयोग के लिए किसान को बोला जाता है कि 100 लीटर पानी है तो 100 लीटर पानी में करीब करीब 10 ग्राम जो है सो बेवस्टीन और 100 ml फॉर्मिलिन, ये दो दवा मिला करके और रात भर उस कुट्टी को पानी में सॉक करना है।
0: कृषक मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कि मशरूम की किस तरह से खेती करनी है और कौन कौन सी मशरूम की वेरायटी है उसे ले सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अगर सावधानी बरतेंगे तो बीमारी भी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आशा करते कि हमारे किसान भाई इसे लाभान्वित होंगे। तो अभी आप सुन रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर, कृषि प्रणाली की पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र के लिए अनुसंधान केंद्र पलांडू नामकुम के पादप रोग विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार झा जी को। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: किसान भाइयों को भी हमारा जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।
2: तो एखन हमरे झारखंड में मशरूम कर खेती कार्यक्रम जला से कर जानकारी करते रहे और विशेषज्ञ रहे डॉक्टर अजीत झा, और इनका से बातचीत करे कोनो न्यूज मेंज और लागल लागल चलो तब काम कर संगे संगे कोनो होबे चाहिए नहीं था।
3: हाँ हाँ, तो चलो एक चलते चलते ठो नागपुरी में कृषि गीत सुन ले, देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गाल गीत के।

0: तो यह गीत कर संगे हमरे कर खेती बाड़ी कर बेरा सिरात है और अब बेरा होवत है हमारी दुनिया कर भाई। तो एक बार हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन कर फिर से स्वागत है। और कहूँ स्वागत है जोरा
1: हाँ,
0: में।
1: एकदम सही कहली। हमरे एखन हमारे दुनिया कार्यक्रम में एखन ही, और सबसे पहले हम बोले के चाही ला कि आजकल देखी ला कि आदमी मन बेटा बेटी में भेद करे ना, ये बहुत खराब लगे ला देख के।
0: नहीं पहले होत रहे लेकिन
1: हाँ
0: अब नहीं,
1: नहीं,
0: अब
1: एखनो
0: एकदम
1: अगर
0: नहीं। लेकिन
1: देखा तो
0: कहीं
1: कोई
0: कहीं
1: कोई
0: मिले
1: जगह
0: ला
1: है।
0: हाँ कि बेटा मन के पढ़ा
1: हाँ, अब
0: बेटी मन
1: बेटी
0: के
1: मन के देखो,
0: नहीं,
1: हमरे
0: गलत
1: तो
0: सोच।
1: कमैया है कि हमारे गाँव से आवी ला, तो वह देखी ला कि बेटी छुआ मन के स्कूल नहीं भेजे ना, तो हम पूछली कि भाई काले नहीं भेजिला, तो मैं सीधे कहना कि भाई तो पर घर कर थी हके। हाँ,
0: सोच गलत है के
1: तो देखो ऐसा
0: आजकल
1: बहुत
0: दुन देखो
1: तकलीफ लागेला कि देखो बेटा
0: दुनिया
1: बेटी
0: कहाँ
1: आजकल
0: से
1: दिन
0: कहाँ
1: में।
0: बढ़ गेलक है। नहीं विज्ञान कहाँ से कहाँ हमरे के पहुँचा देलक। नहीं तब आदमी जहाज में उड़त है, जब पहले पैदल चलत रहे आजकल जहाज में उड़त है, यहाँ से वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। नहीं तो बेटा और बेटी रहकर दिमाग में कैसे अलग। बेटा और बेटी एक समान है कहें, कोई भेदभाव एकदम नखे करे। और जितने बेटी के पढ़ाती जितना बेटा के रोड पढ़ाती बेटी के भी उतने पढ़ाओ लिखाओ। देखो आजकल हर क्षेत्र में ये नहीं कि खाली बेटे मने आ गए हैं, बेटी मन भी एकदम बेटा छुआ से कंधा मिला के चलत है।
1: अगर
0: देखो
1: हम
0: नहीं द्रौपदी मुर्मू जी हमारे का राष्ट्रपति है नहीं, महिला राष्ट्रपति
1: महिला राष्ट्रपति है
0: बताओ
1: के
0: कहाँ है
1: कल्पना
0: एक
1: चावला के देख लो, मदर
0: तब।
1: टेरेसा।

0: के देख लो
1: तब
0: ह्यूमन देश का वास्ते कितना बड़ योगदान दे
1: हाँ,
0: है।
1: हाँ, हाँ,
0: और
1: हाँ।
0: कहूँ ना कहूँ अगर देखब तो हमरे कर जे बेटा छुआ मन के पीछे छोड़ के मन
1: आगे
0: आगे
1: निकल जाता
0: तो
1: है।
0: बेटा बेटी का कोई फर्क न खे कर में।
1: हर क्षेत्र में देखो, काम
0: हाँ
1: काज से लेके, ऑफिस से लेके, जहाँ भी देखो अब रवरनी, तो बेटी छुआ के नहीं देखब से बातें न खे, बेटा छुआ से ज्यादा देखब बेटी मन के,
0: बेटी मन
1: हर क्षेत्र
0: के
1: में आगे हैं
0: और
1: एकदम।
0: देखा रो रहे कि बेटा छुआ तो एक एक को फर्ज निभाना, लेकिन बेटी छुआ जो है
1: बहुत
0: से दो
1: उम्र
0: दो को फर्ज
1: जिम्मेवारी
0: निभाना,
1: है
0: बहुत दो दो को जिम्मेवारी
1: तो
0: संभालना। एक तो अपन माए कर हिया कर भी, एक तो अपन ससुराल कर
1: ससुराल
0: हिया
1: के
0: कर
1: हिया
0: भी,
1: के
0: और सबकर मान सम्मान के बढ़ाते हुए
1: तब
0: काम करत हैं।
1: काम
0: तो
1: करत है
0: सेल देखा
1: सबकर
0: तो बेटा छुआ से तो हमके तो बेटी छुआ का योगदान ज्यादा दिसेला।
1: एकदम है। ये है उमन सबके, गोटा घर के उमन
0: हाँ
1: संभराय के रखत है और मान सम्मान कर साथ है ने।
0: हाँ
1: देखो बेटा छो मन का है, अब एक ठो हो कि जिम्मेवारी मन कर बिहा हो जाल पीछे, देखो मने कामकाजी रहना तो चल जाना अपन ऑफिस ऑफिस काम करे, लेकिन एक बेटी छुआ घर भी संभरात है। अगर आजकल ओहो मने काम करते हैं तो ऑफिस भी जात हैं, आवत हैं, फिर खाना पीना पकात हैं, पूरा घरवैया के खियात है पियात है, बाल बच्चा के भी देखत है, सही समय पर स्कूल भेजत हैं, तो बताओ केकर में काम ज्यादा है।
0: अगर देखा तो
1: हाँ
0: हमरे का मन के ऐसा महिला मन से हमरे के प्रेरणा लेवे चाहिए। वो मन हमरे का प्रेरणा स्रोत है क्या कि
1: बिल्कुल
0: दोहरा भूमिका उमन निभात है। हमरे के बेटा छुआ मतलब देखो खाली एगो काम करी ला उकरे हम कही
1: बस
0: ला कि बहुत बड़का
1: थक
0: काम।
1: गेली ऐसन होली
0: हाँ
1: ओसन होली, लेकिन बेटी
0: लेकिन
1: छुआ के देख लो
0: देख लो कितना
1: घर
0: बढ़िया
1: से
0: काम
1: लेके
0: करत
1: बाहरे
0: है।
1: सब जगह एकदम कायम है और संभरात हैं सब अपन काम के, बखूबी निभाते हैं कि नहीं।
0: और दूसर बात देखब कि अगर कोई क्षेत्र को उठा के देख ले, वो रोड अगर चिकित्सा का क्षेत्र का देखब, चाहे तकनीकी का क्षेत्र में
1: खेल कूद कह
0: देखब, चाहे
1: दो,
0: खेल कूद का क्षेत्र में
1: डॉक्टर
0: रोड़े।
1: इंजीनियर
0: खेल
1: कह
0: करूँगा
1: दो।
0: बात कह ली तो देखो ने अखन क्रिकेट में एखन महिला जे हमारे कर क्रिकेट टीम है सो विश्व कप जीत लें,
1: तब
0: कितना
1: तो
0: बड़का ये पूरा विश्व में
1: गौरव कर बात लगे
0: गौरव कर बात
1: बड़का
0: है
1: देश
0: कि
1: का
0: भारत से महिला जे महिला टीम है वन विश्व कप वुमन जीत के आए रहे। तो
1: तब।
0: सेले देखा तो महिला हमारे कर बहुत कोई क्षेत्र में उठा के देखा तो पुरुष से कहूँ ना कहूँ आगे चलते दिशा है।
1: मजा
0: तो
1: लागे ले सब सुन के
0: हाँ, कैसे नहीं अरे बेटी छुआ है कि तो
1: से
0: गर्व
1: चलते
0: लागवे।
1: और तो देखो तो खैर ये है नहीं, और अच्छा भी लाग लगे सब बात करके भी, और हमरे कर कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन भी सुनत हो तो उमन के भी लागत हुई कि नहीं हमरे कर भाई बहन मन ठीके कहत हैं, हमरे कर बेटी छुआ के भी एकदम पुरजोर पढ़ा के लिखाए है,
0: सही का
1: आगे बढ़ाए के, घर में कमे खाओ लेकिन छुआ पुतक एकदम
0: एकदम पढ़ाओ।
1: पढ़ाओ
0: और आज के दिन में सबसे बड़ा आदमी देखिए हम
1: तब।
0: देखी ला कि आदमी धन के जुगाड़ के रख देवे ना, लेकिन छुआ मन का पढ़ाई के लिखाई में खर्चा नहीं
1: नहीं
0: करे
1: नहीं नहीं
0: ना,
1: एकदम पढ़ाओ
0: लेकिन ये
1: लिखाओ,
0: बहुत गलती काम करते हैं। आज के दिन में सबसे बड़ा धन के बेटी छुआ मन के पढ़ाए। अगर
1: बेटा बेटी
0: बेटी
1: दुयो के।
0: दुयो के अगर बेटा
1: हाँ
0: बेटी छुआ चाहे कहब का अगर बेटी छुआ पढ़ जावे तो परिवार का नाम के रोशन करबे करबे, संगे संगे समाज कर और देश का नाम के भी रोशन
1: तब
0: करबे।
1: तब वही बात है, लेकिन देखो ने ये पानी आवत है, लेकिन हमरे कर बेटी छो मन के देखा थी, बेटा छो मन के देखा थी एकदम उरो कर डंटा तो हॉकी डंटा तो कने फुटबॉल ले लेके जाते खेले, बड़ी गिरकत है सैकड़ों में एकदम। अरे बरसाया बरसात में पानी नहीं आवे बोले कही आवे उकर
0: हाँ
1: उकर डरे हमरे नहीं जाब कही क्यों जात हैं, तो चलो तब हमरे भी यह तनी गीत गोविंद भी सुन लेवे पानी बदरी करनी,
0: पानी
1: तब
0: बदरी कर
1: चलो तब जेके गाए हैं नागपुरी में जानकी देवी और संगे मनापुरी लोकगीत।

0: तो एखन हमरे नागपुरी लोकगीत सुनत रही जे के गाय रहे जानकी देवी और संगीमन। तो भाई आगे का जुगाड़ करी रहो रे।
1: तो चलो हमरे मन एक पंच परगनिया में एक वार्ता सुनीला, सशक्त नारी से बचेगा सशक्त समाज, और एक वार्ताकार है पराग किशोर सिंह।
0: सशक्त नारी से बनेगा सशक्त समाज।
2: आज के समय महिला सशक्तिकरण के बात करेक पहिल ई सवाल टाकर जवाब खोज लेना जरूरी हो जाएला कि का वास्तवे महिला सब अशक्त आहें। कहाँ ऐसा तो नहीं कि अनजाने चाहे निजे स्वार्थक तेहें इमन के कोनो साजिशे कारण कमजोर देखाए कोशिश करल जाते हैं। इतिहास गवाह है कि मानव सभ्यता के विकासक संगे संगे ताकत आवला के अधिकार मिला है, आर धीरे धीरे एह नियम के अपनाए कहन पुरुष जाति निजेक शारीरिक बनावटेक फायदा उठाए कहन महिला सब के दयाम दर्जाए लाइन कहन ठाड़ कर दिया है, आर महिला सबो के निजेक नसीब आर नियति मान लिया है। केवल भारत ही नहीं बरंग दुनिया भर के नारी सोबे खिलाफ भेदभाव आर शोषणक नीति के बोलबाला रोया है। हाँ, इटा जरूर कहे पारी कि मापदंडों के तरीका आलेदा जरूर रहेला। सीतालेख लेखन द्रौपदी तक के पुरुषवादी मानसिकता के सामना करे पड़ा है। प्रत्येक युगे पुरुषक वर्चस्व केर कीमत नारी सब के चुकाए पड़ा है, चाहे चुकाएक तेहें मजबूर हो पड़ा है। सही तेहें बोधय नदी नारी सिंहधारी हेकय ताड़न के अधिकारी, आर नारी तोर एह कहनी आचराय दूध आर आँखें पानी रकम कौतुक गिला गढ़ल जाए हुई। ई कथा गिला के सब्जायक तेहें इटा काफी है के जे हमरे देशे देवी समान पूजनीय नारी केर आदर आर सम्मान मेहन ढेर पतन होया है। दुनियाक आबादी केर एक चौथाई गाँवैया महिला आर बालिका सोबे यहाँ मिन्तुक ई सोभे गिला आर्थिक सामाजिक आर राजनीतिक सूचकांक के हिसाबे सोबलेक हेटेक स्तरे हैं। कमाई शिक्षा स्वास्थ्य सेवा आर निर्णय लेक क्षमता मेहन इनकर भागीदारी नहीं के बराबर है। कृषि क्षेत्रे अवैतनिक सेवा कामे नारी सोभेक योगदान दोमे बेसिया है। जन जन जायगा गिलाय कमाई नगद राशि रूपे नाई देल जायला हुआ कुपोषित छुआ सब के संख्या बहुत बेसिया है। सही तेहें तो समय समय महिला सब के सशक्तिकरणक तेहें बात उठते रहेला, आर कहल जायला कि आर्थिक गतिविधि गिलाय महिला सब के उचित भागीदारी केर बिना सामाजिक प्रगति केर उम्मीद करनाटाई बेईमानी हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ केर एकटा गणना केर आधारे जहाँ जहाँ महिला सब व्यापार जगते बेसी भागीदारी कोई रहें वहाँ लगभग 53% बेसी फायदा आर 24% बेसी बिक्री केर आकलन करल जाया है। मिन्तु किछु महिला सब केर ई स्थितिटाके देख कहन हमरे हियाँ केर अशिक्षित महिला सब के नजरअंदाज नहीं करे पारी। हमरे देशे ऐसने अशिक्षित महिला सब एक संख्या बेसी है जेगला आइजो गरीबी कुपोषण और घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। आर इटाई नहीं इमने बेटी के जन्म देख फैसला टाकते हों पुरुष ऊपर निर्भर हैं। सही रूपे जदि देखल जाए हले महिला सशक्तिकरण के माने है के महिला सब के आत्मसम्मान देना और आत्मनिर्भर बनाना, तबे तो इमन निजेक अस्तित्वटाके रक्षा करे पारबो। जब तक इमने सामाजिक वैचारिक और पारिवारिक रूपे उत्थान नाई होई तब तक सशक्तिकरण के ढोल पिटना बेईमानी होई। सामाजिक उत्थान के आधार थम नारी हेकोय। नारी शिक्षित होबोय तबे तो समानता और स्वतंत्रता करते हैं लड़ाई लड़े पारबोय आर निजे कानूनी अधिकार एक बेस भावे व्यवहार करे पारबो। पूरा देशे एखन DRC माने डिजिटल रिसोर्स सेंटर के स्थापना करल जाते हैं आर इगला महिला सब के द्वारा संचालित हुई। हियाँ महिला सब प्रशिक्षण लेबोय आर निजे जीविका के साधन जुटाबोय। ई प्रशिक्षण केंद्र गिलाय महिला सब निजे के डिजिटली साक्षर बनाबोय आर ग्रामीण विकासे सहयोग करबें। ऐसे तो व्यवसाय, सरकार, सार्वजनिक प्रशासन, राजनीति और अन्य पेशा गिलाए इमनेक प्रभाव पहिल लेके आहे, मिंतुक गाँवैया महिला सोबे की स्थिति एकदम उल्टा है। इस हिसाब देखले गाँव एक देश कहने वाला भारत के एखन लम्बा डहर तय करेगा है। तबे हियाँक नारी और बालिका सब निजेक बुनियादी अधिकार, आजादी और सम्मान के लाभ उठाए पार्ब, जेटा इमनेक जन्म सिद्ध अधिकार है के। नारी समाज केर अहम हिस्सा है के, सामाजिक निर्माणे इमनेक विशेष स्थान रहेला। प्राचीन समय नारी के पूजल जात रहे, देवी के दर्जा दल जात रहे, पुरुष लेख कोनो टाइप कम नहीं मानल जात रहे, सब कामे नर नारी के समान भागीदारी रही है। हलो आज के समय महिला सब के स्थिति दयनीय बनल जाते हैं। पुरुष प्रधान समाज इमन के दबाएक कोनो कसर नहीं छोड़ेला, शिक्षा के अधिकार ले कोई के वंचित रखल जाएला। यह कारण है के जे आज नारी निजेक चिन्हा भेजाए लाएगा है। जीवन रूपी रथ टाकेर नर नारी दुईटा पहिया है कोई, एकोटा पहिया खराब होले जीवन रूपी रथ ठाड़ हो जाए। सही खातिर महिला सब के शिक्षित होना जरूरी है, तबे जीवन रूपी गाड़ी सही तरीकाए चली। नारी के पढ़ल लिखल रहले उ समाज के कामे योगदान दे पारी, निजेक परिवार के सुचारू रूपे चलाए पारी, निजेक कर्तव्य और अधिकारेक तेहें सजग रही। एकटा नारी निजेक जीवने तीनटा अहम भूमिका निभाएला, एकटा बेस बेटी केर, एकटा अर्धांगिनी आर बेस माँ केर। ई तीनों रिश्ता ऐसन है के जेकर संगे पुरुष समाज किछु विशेष आसरा रखेला, मिंतुक इमन

0: तो यही गीत कर संगे हमरे कर हमारी दुनिया कर बिरासी रात है युवराज भाई। तो बताए चाहब कि एक कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण जी कर, और अब हमरे के विदा लेवे चाहिए। अगला दिन यही बड़ा मेहटिन फिर से भेटा, तब तक ले सबके जोहार।
1: जोहार।

खेती बाड़ी और हमारी दुनिया कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सहकारिता से समृद्धि मिशन का देशव्यापी जश्न, नई दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के लैंपस प्रतिनिधि। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया नया रैंकिंग ढांचा। मुख्यमंत्री ने की खेल और पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। रांची खेलगांव शूटिंग रेंज का किया औचक निरीक्षण। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के निर्देश। भाजपा ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में विसंगतियों का आरोप लगाकर की सीबीआई जांच की मांग। मेंस की तैयारी के लिए मात्र 16 दिनों का समय देने पर जताई आपत्ति। हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में आज भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। रांची और गुमला सहित मध्य भागों में तेज बारिश जारी। और राजधानी रांची में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 शतरंज चैंपियनशिप शुरू। देश भर से जुड़े 400 से अधिक बाल खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्तर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर सहकारी संस्थाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक नए रैंकिंग ढांचे की शुरुआत की। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
6: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
5: इस मुख्य समारोह में झारखंड के सरायकेला खरसावां सहित कई जिलों से लैंप्स प्रतिनिधियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों के समग्र विकास और पोषण संबंधी देखभाल के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पण और सेवा भाव की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव इन्हीं बच्चों पर टिकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं को गति देने और खेल तथा सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेलगांव स्थित शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण किया। परिसर के रख रखाव की बदहाल स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं राइफल से निशाना साधा और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने की बात कही। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज रामगढ़ के पतरातू में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत लंबित मुआवजे और पुनर्वास की मांग उठाई। वित्त मंत्री ने विस्थापन को राज्य की सबसे बड़ी समस्या बताया।
7: सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अधिक वर्षों तक शासन की, पूंजीपतियों से उनका लगाव रहा, विस्थापितों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार ने काफी गंभीरता से इस विषय को ली है कि विस्थापित जो हुए हैं उनके सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन की सरकार लेने वाली।
5: 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा के परिणाम में कथित विसंगतियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने परिणाम को रद्द करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
8: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड का भविष्य बर्बाद करने वाला आज के दिन में आयोग बन गया है। बड़ा खतरा है। जेपीएससी एग्जामिनेशंस क्रिमिनल ऑफेंस छात्रों के साथ जो संबंधित लोग हैं सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये सरकार छात्रों के सपनों को तोड़ने का काम कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
5: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ जिले में सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितता और लंबित मुआवजे का मामला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट में अधिक भूमि पर कब्जे की पुष्टि के बावजूद रैयतों को वर्षों बाद भी मुआवजा नहीं मिला। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में कोडरमा के डोमचांच में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधायक डॉ. नीरा यादव शामिल हुई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था और राजनीतिक विरोधाभास पर गहरी चिंता व्यक्त की।
9: प्रकार से इस राज्य में सरकार चल रही है, ये तो ना तो झारखंड के लिए भला है ना झारखंड के लोगों के लिए भला है। जन विरोधी सरकार है और हम तो बार बार करते आए हैं कि सरकार जनता के भला के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। जहाँ स्वार्थ का गठबंधन होता है वहाँ पर राज्य और जनता का भला नहीं होता।
5: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रांची सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने बताया कि रिम्स 2 परियोजना की भूमि और बोकारो के बैधकारों में नियम उल्लंघन के मामलों पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि जांच पूरी होने तक इन विवादित स्थलों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए।
10: रिम्स 2 की बात ये सरकार का निर्णय है, उनको जो करना है करना चाहिए, लेकिन आयोग के सामने जो विषय सामने आया है इस विषय पर जब तक संज्ञान में है तब तक को यथावत रखे और आगे जब पूरा निर्णय आ जाए सुनवाई का तब वो आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से हम रिम्स का रिव्यू करेंगे और उसमें जो एक्शन टेकन रिपोर्ट वो बना के देंगे, छानबीन करेंगे।
5: बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज धनबाद में वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के कड़े निर्देश दिए। हाल ही में फरार अपराधी प्रिंस खान द्वारा जनप्रतिनिधियों को मिली कथित धमकी के सवाल पर आईजी ने कहा कि उसके खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई जारी है।
11: इंक्वायरी मुझे करनी थी पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में और जो मैटर रिलेटेड था उसके संदर्भ में हमने एसएसपी साहब को बताया था और उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ तो उसी की जानकारी लेनी थी, इसीलिए सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक सहित हमारी बात हुई। हमारी पूरी टीम उसके पीछे लगी हुई है और काम कर रही है, चाहे उनकी सुरक्षा लेकर हो चाहे और भी कोई कार्रवाई हो।
5: मौसम। राज्य में अगले 5 दिनों तक तेज आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी है। आज विशेष रूप से हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि रांची और गुमला सहित कई मध्य जिलों में भी तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने कल धनबाद सहित उत्तर पूर्वी भागों में भारी वर्षा

0: प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया नया रैंकिंग ढांचा। मुख्यमंत्री ने की खेल और पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। रांची खेलगांव शूटिंग रेंज का किया औचक निरीक्षण। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के निर्देश। भाजपा ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में विसंगतियों का आरोप लगाकर की सीबीआई जांच की मांग। मेंस की तैयारी के लिए मात्र 16 दिनों का समय देने पर जताई आपत्ति। हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में आज भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। रांची और गुमला सहित मध्य भागों में तेज बारिश जारी। और राजधानी रांची में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर 9 शतरंज चैंपियनशिप शुरू। देश भर से जुटे 400 से अधिक बाल खिलाड़ी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किट बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किट बैग।
3: आरबीआई कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
5: प्रस्तुत है जिले में आज

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिम सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले में आजादी के बाद स्थापित हुई पहली औद्योगिक इकाई के बंद होने की घोषणा के बाद स्थानीय लोग आंदोलित हैं। यहां झीकपानी स्थित एसीसी की सीमेंट फैक्ट्री, जिसे अडानी ग्रुप ने हाल ही में अधिग्रहित किया है, उसे बंद करने की घोषणा कर दी गई है। इस बात को लेकर स्थानीय मजदूर और पोषक क्षेत्र के ग्रामीण रोजी रोजगार को लेकर चिंतित हैं। जिला प्रशासन एवं राज्य व केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग को लेकर प्रदर्शन और पदयात्राएं भी स्थानीय लोगों ने निकाली और लोगों को अभी भी यह उम्मीद है कि एसीसी अडानी की यह देश की सबसे पुरानी फैक्ट्री फिर से खुल जाएगी।
2: सबका यही विचार है दोबारा से प्लांट सुचारू रूप से चले और खदान भी बढ़िया से चले। सारे लोग का यही विचार है कि वहाँ फिर से लोगों का जीवन यापन का जो साधन है सुचारू रूप से हो और सारे लोग जमीन देने के लिए तैयार है और सबको एक मंच में आज इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों को यही मैसेज देने के लिए आए हैं। कंपनी को सहयोग करना होगा तो उस कंपनी को सहयोग करेंगे।
1: जिले में बरसात के आरंभ होते ही मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में मलेरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया जांच से लेकर उसके उपचार की सारी व्यवस्थाएं सदर अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक की गई हैं। जल जमाव वाले इलाकों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए नगर परिषद इलाकों और ग्रामीण इलाकों में कर्मियों को लगाया गया है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि साफ सफाई रखने से मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने एक संदेश जारी करते हुए लोगों से मलेरिया से बचाव के लिए कई सुझाव दिए हैं।
3: मलेरिया का प्रसार का भी सीजन है। गांव में सभी अस्पताल में प्रायः देखा जा रहा है कि मलेरिया से लोग पीड़ित हो रहे हैं। सभी से मैं अनुरोध और आग्रह करता हूं कि जब भी आप सोएं रात में मच्छरदानी लगा के सोएं, अपने घर के अगल बगल जितने भी पानी जमाव है उसको समाप्त करें। मलेरिया रोधी जो छिड़काव IRS होता है अपने घर के अंदर में जरूर कराएं। किसी को बुखार सरदर्द या किसी तरह का मलेरिया का लक्षण अगर नजर आए या महसूस हो आप निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच और उपचार सुनिश्चित

0: ही पश्चिमी सिंहभूम जिला को मलेरिया मुक्त बनाया जा सकता है। मुझे पुनः आपसे अनुरोध और आग्रह होगा, किसी को भी अगर बुखार हो, बदन हाथ में दर्द हो, सिर दर्द हो, तो निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी जांच और उपचार सुनिश्चित कराएंगे, तभी हम लोग जिले को मलेरिया मुक्त बना पाएंगे। धन्यवाद।
1: जैसा कि आपको मालूम है, पश्चिमी सिंहभूम जिला मलेरिया के मामले में रेड जोन माना जाता है, इसलिए इस मौसम में इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
2: अभी आप सुन रहे थे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 110.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, आज का ये कार्यक्रम है कुड़ुख भाषा में।

0: स्वच्छता अभियान साफ सुथरा गही माने इदिम ही के तंगा एड़पा पालिन चालिन आरा तंगा आरा अन्ना पहाटन निचोत आरा चुनुमुनु फरीच उइना अके चाड़ रही। नमहे राजीनु साफ सफाई ती जोड़ का नलक बेड़ा सिरे मन्नु बरते बर अलगी। स्वच्छता नलक गही ओरे नमहे भारत सरकार अप्रैल चंदो 1999 चानु नंजा आरा 2012 चान नु रऊ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्तुरु निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम अख्तारा ई नलक तुले साथ फरीज पद्दा गे निर्मल ग्राम पुरस्कार आराध्या चियर माइन चीतारा। स्वच्छता रूपे नलक गे इड़पा नलक 2 अक्टूबर 2014 चान नु महात्मा गांधी से गही 150वीं बच्छर पूरा मंजकाती आसीन महबाची आगे कोहा महबाची नुम ओरे नंतारा। ई नलक गुट्टा राजी नु बीड़रा नलक गही घोक रचा का नमहे भारत राजीन निचोत साफ सुथरा उइना गड्डी डिप्पा डहरिन हुरमीन दौले उइना। भारत राजी ता कोहा बंगस महात्मा गांधीस आलारिन ऐनका रचस का तंग आ राजिन साफ सुथरा उइके। स्वच्छ भारत राजी कामना ही घोक ईदिन ही के का भारत राजी नु उज्जु बिज्जु होरमर गे अखना चाड़ रही का पद्दा अरा शहर पहटन दावले निचोत उइयोत। असन हिसन किचकिचा माल नन्ना बेड़ा बेड़ा मन गुठिन इधर तंग आ राना अड्डन महाबागर कमना इदा तो हरियार नन्ना। आलारिन इजना समाज तक खुड़हान इजना जुदा जुदा सरकारी नलक नन्ना चड्डे नमहे समाज ता उज्जना बिजना रीति रिवाज किरमे किरमे बदलारा लगी। अकुंता बेड़ानु नाम हुरमत गे बुझुरना अक्के चाड़ रही का अड्डा पद्दा समाज देश साफ सुथरा रहो होले फरीज ताका एम्बा अरा फरीज अम खेती पाती नानागे दाव खेखेल बचरो अरा गोट्टा दुनिया राजी हरियार मनर शुभो जिया जौ उज्जोर बिज्जोर। स्वच्छता संगे लूर अपुंता बेड़ान अके चाण मन्ना लगी और मन्ना हूँ चाण रही। होरमारिन कथा तुरु बुझाबाना दिक दिक हो मनी का नमहे चाली बली साफ सुथरा रहो होले कुहा सन्नी रोगे थी नाम हुरमत बचर ओत मलाबिरी उज्जना नु ससैत मना उंगी आऊंगी नमागे तंग अपहटन काया गतर अदिन और चाली बलिन कोड़े उइना रही। इन्ने कथन बुझरा आगे सरकार संगे जोड़ का नलक नुक्कड़ नाटक इदा तो छोटे लीला सेमिनार संगोष्ठी कच्छ नखरना बक अपटा गुठी नलक तुरु हुरमारिन एजना निजड़त आना चाण रही। शहर पहटानु सामुदायिक शौचालय मन्ना हूँ अक्के चाण रही हुरमी कुदना अड्डा पेंट बस अड्डा रेल अड्डा गुठी नु सार्वजनिक शौचालय इड़पा मन्ना चाण रही। स्वच्छ भारत अभियान जन जागरूकता कार्यक्रम तली इन्ने नलकती लोटा धर अर टोंका तरा आलर मल कालोर और शौचालय इड़पानु कोर ओर किचकिचा बा खने आलर गही गंदा आलोन सफा ननुर गही प्रथा हूँ किरमे किरमे मुचरो उर्मे किसिम ही प्रयास तुरु राजिन निम्हा अर हरियार कमना दिम भारत सरकार गही कोहा घोक तली राजिन स्वच्छ सफा उइना गही लक्ष्य बा खने ई दिम का तंगा पद्दन शहर अदिन साफ सुथरा उइना बग्गे ती बग्गे शौचालय इड़पा कमना लूर कुड़िया नु दौ लूरन तिंगना साफ सुथरा अम खज जुगा बना ताकि उर्मी जिया जौ सल संतरा अंगो ने कान अरा अड्डा सुंदर दौ और महबा जोगे सफा जोगे रो। अकुंता बेड़ा नु स्वच्छता अभियान नलक संगे होरमा आलर गे तंगा बेड़न चीना मनो अरा सरकार गही नलखन नाम हुरमत जुमरार की संग्रह चीओत और संग्रह चीनुम नमागे इन्ने नलक नन्ना मनु एका से का एड चंदो होखा या नाख चंदो होखा तंगा तंगा पद्दन सन्नी कोहर होरमर जुमरार की गड्डी डिपा ढोढ़ान कोड़ा कुचिन हुरमिन सफा ननोर टोंका तरा बहरी उर्खागे मल कालर की शौचालय एड़पानु कोर ओर असानिम कालोर तंगा पद्दानु बेड़ा सिरे साफ सफाई नलक पत्नु ओंद एड़ कत्थन बुजुर्गरती तिंगना मनु पद्दा ता आलारीन मन मास इद आगे हूँ चिहुट नंताना अकै चाड़ रही होले नम्हाई उज्जना बिजना पोक्ता मनो और हरियार हूँ मनो मुंजानु इदा तो चुड्डानु इंहै ईदिन गोरारना रई का नाम तंगा एड़पन समाजन राजिन साफ सुथरा उमिनाही चिहुट ननो होले नमागे साफ सुथरा ताका अम अरा खज खखरो चुनहांती और मारिन मुंजरा।
1: अखना गही कथा गा अजम दौरचा अक्कुन और उन्टा डंडी मिंदत पाइडका ने बसंती कुमारी एवं संगीत।

अक्कुन गन्ना मैं काना ही बेड़ा हूँ बरचा केरा। इन्ना तक कार्यक्रम ही प्रस्तुति रचा श्री गौरव कुमार पांडे सर धरती सूत्रधार एकदम एम चंदा कुमारी अरा प्रियंका उराव दो दो जानकारी अरा डंडी संगे निमहती फिर भेंट मनागे ननागे बरोम हरमरिन दो माखा।

0: अभी आप सुन रहे थे आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम था कुड़ुक भाषा में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: दुनिया।
1: नमस्कार, मैं हूँ राजेश और एक बार फिर एक सप्ताह के बाद आ गया दिन सोमवार का और कार्यक्रम का नाम बुनियाद है। युवा साथियों, आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर हम आते हैं जिससे आपको करियर में क्या चुनना है, कहाँ जाना है, क्या कुछ कर सकते हैं, अपने राज्य में यूनिवर्सिटीज की क्या स्थिति है, ढेर सारी जानकारियाँ हम विशेषज्ञ से दिलवाते हैं और लगातार सजग रहते हैं कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँच सके। एक बात हमेशा राजेश कहता है आपसे कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई पढ़ लीजिएगा ना तो प्लेन स्टडी सीधे सीधे पढ़ने से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हो जाएंगी। जी हाँ, आप स्व व्यवसाय भी कर सकते हैं, आप सरकारी और निजी क्षेत्र में जाकर रोजगार भी तलाश सकते हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें करनी है। बीएड एक हॉट केक है, बीएड हाँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जी हाँ, बीएड एक हॉट केक है। इसमें एक नया तो नहीं कहें लेकिन बहुत ही उम्दा कोर्स आया है, बीएड स्पेशल एजुकेशन। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमने पहले भी चर्चा की है, रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। आज फिर से हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर अवनीश रंजन को बुलाया है, बातें होंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें हम कि ये कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार में और झारखंड के बहुत बड़े हिस्से में, हम चाहते हैं कि कोई भी युवा इस बात से अनजान नहीं रहे कि अब टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इसलिए उसे चुनना चाहिए टेक्निकल पढ़ाई को। हम एक फोन नंबर भी देते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में है, जो टेक्निकल पढ़ाई का एक हब है और मेडिकल यानी MBBS और PG जो है मेडिकल का, उसकी पढ़ाई के साथ साथ 13-14 टेक्निकल पढ़ाई है जो यहाँ कराई जाती है सक्सेसफुली। पैन इंडिया टीचर्स हैं और पैन इंडिया अब स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। ये कार्यक्रम हम सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो अनर्थक अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करें। कम पैसे में अच्छी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा आपके राज्य में मिल रही है, स्टूडेंट्स की कमी नहीं है यहाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसका लाभ उठाएं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, हालांकि एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही होगा, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने एक नंबर लिया है जो आपके लिए है, जिस पर आप और अधिक जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001, 1800121001।

0: एक बात और बताते चलें, तब हम डॉक्टर अभिनीश रंजन को बुलाएंगे और पूरा हाँ उनके विषय में जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। यहाँ प्लेसमेंट सेल भी है, हाँ जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब यहाँ के लोग जो प्लेसमेंट सेल है ना, आपके रोजगार के लिए भी सजग है, उसमें आपको 100% असिस्टेंस देता है। बहरहाल डॉक्टर अभिनीश रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमारे सुनने वालों को और पूरा परिचय आप अपना दीजिए।
1: मेरा नाम डॉक्टर अभिनीश रंजन है और मैं फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में डीन के पद पे हूँ। और हमारे फैकल्टी में मुख्यतः दो तरह के कोर्स चलते हैं, एक रिहैबिलिटेशन के जिसको पुनर्वास विज्ञान बोलते हैं, दूसरा स्पेशल एजुकेशन जो विशेष शिक्षा के रूप में हम लोग उनको जानते हैं।
0: डॉक्टर अविनीश, एक बात हम सबसे पहले अपने पूरे बिहार और झारखंड के युवाओं, उनके माता पिता के लिए पूछना चाहते हैं कि बीएड हॉट केक है, लेकिन बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन, हाँ ये कहाँ अलग है और कौन ज्यादा है? बीएड स्पेशल एजुकेशन कहाँ है, इसके बारे में बताइए।
1: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे, और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे, जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे, वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वैसा विद्यालय जहां पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं, और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
0: तो एक बात तो यहाँ हम कह सकते हैं, हाँ अविनीश जी, आपके सामने या आपसे जो बातचीत हो रही है, जो आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड के बारे में बताया, कि हमें लगता है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है वो एक कदम आगे है बीएड से, क्योंकि इसमें समग्र, यानी वैसे बच्चे जो सही हैं, वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी उनमें कमी है, उनके लिए, हाँ उनके लिए भी बीएड स्पेशल एजुकेशन में तैयारी करवाई जाती है, प्रोफेशनल तैयार करवाए जाते हैं, क्या कहते हैं?
1: जी, अगर एडवांस स्टेज की बात करें तो जब आप सिलेबस देखेंगे, करिकुलम इनका जो बना है, उसमें वो सारे पेपर्स हैं जो जनरल बीएड एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा स्पेशल पेपर्स कुछ हैं जिसमें दिव्यांगता के बारे में, उनकी पहचान के बारे में, उनके मनोविज्ञान के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके दैनिक क्रियाकलाप वो कैसा करते हैं, उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में, होम बेस्ड एजुकेशन जो गृह आधारित शिक्षा होती है उसके बारे में, पेरेंट्स को कैसे काउंसलिंग करेंगे उसके बारे में, ये सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करके और एक कम्पैक्ट प्रोग्राम तैयार किया गया जिसको हम लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, और ये कोर्स हमारे यूनिवर्सिटी में संचालित हो रहे हैं।
0: सोमवार का दिन है, कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, वर्षों हो गए ये कार्यक्रम आप तक हमें पहुंचाते पहुंचाते, और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अविनीश रंजन, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन की बातचीत चल रही है, एकदम हॉट केक है, जी हाँ बीएड स्पेशल एजुकेशन इस पर चर्चा चल रही है, बहुत सारे टेक्निकल पढ़ाई है जिसे आप पढ़ करके अपने करियर में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और इसमें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आपके लिए एकदम खड़ा है। 13-14 टेक्निकल कोर्स है, अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, बीएससी के कोर्सेज हैं टेक्निकल क्षेत्र में, इसके अलावा एएनएम जीएनएम, हाँ फार्मेसी के कोर्सेज हैं, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, जर्नलिज्म है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, आईटी है, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप अपने आप को एक्सेल करके आगे ला सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर है

0: 1800-121-0051 1800-121-0051 और एक नंबर है, मोबाइल नंबर है 9431899002 और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in, इस पर जाकर आप बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर अवनीश एक बात बताइए, बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड, क्या दोनों की पढ़ाई सेम है, दोनों का ड्यूरेशन कैसा है, ये सारी जानकारी दीजिए हमारे सुनने वालों को। और आपसे भी कह रहे हैं जो घर बैठकर बाजा पर, रेडियो पर, मोबाइल पर, जिस चीज पर भी आप हमारे इस बुनियाद कार्यक्रम को सुन रहे हैं और करियर के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए और तब निर्णय लीजिएगा।
1: आज से, जब से एनईपी 2020 लागू हुआ है, उससे पहले 2 साल के बीएड होते थे ग्रेजुएशन करने के बाद, उसी तरीके से 2 साल के स्पेशल एजुकेशन बीएड होते थे ग्रेजुएशन करने के बाद। लेकिन जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 में, तो उसका यह कंपल्सन था कि हर एक बीएड कोर्स को इंटीग्रेटेड बीएड में ट्रांसफर किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब यह हुआ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही बीएड की पढ़ाई होगी, मतलब बच्चों का एडमिशन प्लस टू करने के बाद एडमिशन होगा, जिसको आईटेप बोलते हैं जनरल बीएड को। आईटेप का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और इजी टेप बोलते हैं ISITEP जो स्पेशल बीएड के प्रोग्राम होते हैं, उसका मतलब हुआ इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एंड स्पेशल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो उसमें ये 4 साल के कोर्स हैं, 4 साल के कोर्स में ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट, अगर साइंस का लेना है, साइंस में ग्रेजुएशन करना है तो साइंस के पेपर, आर्ट्स में करना है तो आर्ट्स के पेपर, कॉमर्स में करना है तो कॉमर्स के पेपर, साथ साथ बीएड के भी सब्जेक्ट्स सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 के बीच में पढ़ाए जाते हैं। और ये ड्यूअल डिग्री वाला कोर्स है, मतलब जब आप इस इजी टेप या जिस इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स को करेंगे तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलेगी, साथ साथ बीएड की भी डिग्री मिलेगी, मतलब 4 साल में 2 डिग्री लेके आप निकलेंगे।
0: बहुत खूब, हमने पहले कहा था ना युवा साथियों कि बीएड स्पेशल एजुकेशन बहुत ही उम्दा कोर्स है। आप राजेश की बात सुनते हैं और आज से नहीं, 20 साल से आपके लिए इस तरीके के कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं, और जानकारियों के आधार पर बहुत सारे युवा रोजगार में आ गए, करियर में आ गए, ऊंचाइयों पर पहुंच गए। बीएड स्पेशल एजुकेशन बहुत ही उम्दा है, आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जी हाँ, नंबर नोट करें जिस पर आप फोन करेंगे 1800-121-0051 1800-121-0051 और 9431899002। बुनियाद कार्यक्रम चल रहा है जिसे हम लेकर आते हैं अपने राज्य बिहार में स्थित टेक्निकल पढ़ाई का हब वाला यूनिवर्सिटी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार। हम एक उन्नत और सुरक्षित बिहार चाहते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। अवनीश जी, 2-2 डिग्री लेकर निकलेंगे, बहुत सारे सवाल है हमारे पास, लेकिन समय आज के कार्यक्रम में ज्यादा नहीं बचा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब 2-2 डिग्री लेकर निकलेंगे तो एंड ऑफ द डे, अंत में बच्चे युवा यही चाहते हैं कि अच्छा रोजगार मिले, तो रोजगार के लिए कहां कहां और किधर जा सकते हैं? हालांकि आपने अभी बताया है लेकिन फिर से बताइए।
1: मैंने पहले कहा कि चूंकि सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहां पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो CBSE के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे ICSE और CBSE के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको, और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
0: बहुत ही उम्दा व्यवस्था है रोजगार के लिए, इसके अलावा भी है, मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ आने वाला एपिसोड सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा और जो लोग हमें सुन रहे हैं आज आने वाला यानी आने वाला सोमवार जरूर हमें ट्यून कीजिएगा और भी जानकारी देंगे कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है रोजगार की और कहां कहां संभावनाएं हैं और चर्चा करेंगे अगर जो आपके फोन कॉल आए और आपने जो हमसे सवाल पूछे।

0: बहरहाल बहरहाल बीएड स्पेशल एजुकेशन एकदम हॉट केक है। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए। नंबर नोट करें अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, 1800 121 0051, और दूसरा नंबर है 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय टेक्निकल कॉलेज का हब जमुआर सासाराम रोहतास में। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, सोमवार को मैं भी होऊंगा और डॉक्टर अविनीश भी होंगे, सुनना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: बुनियाद, अभी आप ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा।
3: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: सुनने वालों को राजेंद्र का प्यार भरा नमस्कार।

0: कब्जा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतराते न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

फिल्म चुपके चुपके का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, सचिन देव बर्मन का संगीत था। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म कारवां का एक गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का। जब कभी खुद को तन्हा पाओगे, जब कभी खुद को तन्हा पाओगे, साथ अपने देखता हमको पाओगे। वादा है लाएंगे हम इतनी खुशियाँ, तुम अपनी जिंदगी की हर लम्हे में मुस्कुराओगे।

फिल्म कारवा का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत था राहुल देव बर्मन का। और श्रोताओं आइए सुने अगला गीत। प्यार का चमकता दिया हर पल रोशन रहे, प्यार का चमकता दिया हर पल रोशन रहे, दुआ है हमारी आपकी खुशियों का मौसम रहे, हवाएं लाख मुश्किलें बनकर क्यों ना आए, बस मोहब्बत का ये उजाला यूं ही कायम रहे।

फिल्म एक महल और सपनों का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

जब मन विचलित हो जाए तो कुछ पल बैठो तो सही कुदरत की ओट में। क्या खूबसूरत झरने, क्या खूबसूरत वादियाँ, मन खुद ब खुद शांत और एकाग्र हो जाएगा। कुछ पल बैठो तो सही पहाड़ के आगोश में।

न जाने इन पहाड़ों को कौन सा जादू आता है, न जाने इन पहाड़ों को कौन सा जादू आता है, कितनी भी दूर चला जाऊं अपनी ओर खींच लाते हैं। अभी आप सुन रहे थे फिल्म आज और कल का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, बोले लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीत था रवि का। इसी साथ अपने दोस्त राजेंद्र को आज का रजनीगंधा कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।

0: سرخیوں میں
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा और इसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर। इस यात्रा का उद्देश्य तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को नई मजबूती देना है। व्यापार हो, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, नई तकनीक और भारतीय समुदाय जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत होगी। साथ ही यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने वाली मानी जा रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, या तीनों देशों की यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आप इस दौरे को किस नजरिए से देखते हैं?
3: देखिए, तीनों ही देश और खास तौर से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा का जो पहला चरण है इंडोनेशिया की यात्रा, ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी, अपनी आर्थिक शक्ति के मामले में भी, और उसकी जो सामरिक जो महत्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया केंद्रीय स्थान रखता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में। साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच में, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच में जो संबंध है, उनकी जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में जब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में साइन हुई थी, तब से लेकर के अभी तक खासी प्रगति दोनों देशों के बीच में हुई है। हमें मालूम है कि पिछले ही साल 2025 में राष्ट्रपति प्रबोवो हमारे भारत के गणतंत्र दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे और राष्ट्रपति प्रबोवो की प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बैठकें होती रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देशों के नेता अपने संबंधों को लेकर के सजग हैं और संबंधों को आगे की दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। इंडोनेशिया की जहां तक आर्थिक रूप से उसकी जहां तक महत्ता है, वो ये है कि 25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसे इनफॉर्मल अगर हम ट्रेड जोड़े तो वो उससे भी ज्यादा होता है। दोनों ही देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के अपनी एक जो नीति है उसमें समानताएं बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इंडोनेशिया भारत से सीखना चाहता है। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होकर के और अपना योगदान देना चाहता है। इसके पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देशों ने G20 की अध्यक्षता की और किस तरह उन्होंने तमाम जो देश हैं, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के ग्लोबल साउथ के विकासशील जो देश हैं, वो कैसे अपनी विदेश नीति और सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडोनेशिया की यात्रा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा वहां के प्रधानमंत्री अल्बनीजी के निमंत्रण पर है। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि हमें पता है कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है ओशानिया या पैसिफिक आइलैंड के क्षेत्र में, दक्षिण इंडियन ओशन के क्षेत्र में, और वहां पर एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही क्वाड के सदस्य देश हैं और इस लिहाज से क्षेत्रीय संतुलन को लेकर के, क्षेत्रीय सामरिक संतुलन को लेकर के दोनों ही देश का जो नजरिया है वो एक जैसा है और दोनों ही देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे और इस बात को लेकर के दोनों ही देशों में डिफेंस को लेकर के, सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को लेकर के दोनों देशों के बीच में लगातार डायलॉग्स और एक्सचेंजेस भी होते रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेकर भारत, ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश कैनेडा के साथ भी और जापान के साथ भी मिलकर के तमाम तरीके के ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स की भी बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार व्यापार समझौता होने के बारे में भी काफी बातें चल रही हैं, तो उसको नतीजे तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये कोशिश होगी। और तीसरा देश है न्यूजीलैंड, जहां पर पिछले साल हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की तरफ से भारत की यात्रा हुई थी 2025 मार्च में। न्यूजीलैंड की यात्रा जो है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा, एक नई गति देनी है। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये 40 सालों में पहली यात्रा है, तो इस लिहाज से जो कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच में है उनको भी आगे बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा महत्वपूर्ण है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं लेकिन उस अभी तक रेटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो कौन से वो मुद्दे हैं, लेबर मोबिलिटी या एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मास्यूटिकल्स, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपनी शुरुआत पहले करें और कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें हमें संभल कर और समझबूझ से चलना है, ये सभी मुद्दे भी भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में आएंगे। पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि भारतीयों का न्यूजीलैंड जाना सर्विसेज के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, वहां पर जाकर छोटे मोटे व्यवसाय या स्टार्टअप खोलने के लिहाज से न्यूजीलैंड एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो भारतीयों और भारतवर्षियों की भी वहां पर जो मौजूदगी है उस हिसाब से भी न्यूजीलैंड की यात्रा प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें इसके इस पूरी तीनों देशों की यात्रा को, अगर हम पिछली जो यात्राएं हुई हैं प्रधानमंत्री की उनसे अगर हम जोड़ के देखें और साथ जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकायची की भारत यात्रा से जोड़कर देखें, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तमाम जो उभरती हुई शक्तियां हैं और तमाम जो मिडिल पावर्स हैं, भारत जैसे राइजिंग पावर्स और ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया जैसे जो मिडिल पावर्स हैं, ये सभी साथ मिलकर अपनी ऊर्जाओं को, अपनी जो चिंताएं हैं सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उनको मिलकर साझा करना चाहते हैं, उनको मिलकर बैठकर उनको साझा करना चाहते हैं और उनको बात के मद्देनजर कि चीन और अमेरिका के जो दोनों ही देशों की जो विदेश और सामरिक नीतियां हैं वो इंडो पैसिफिक के छोटे और मझोले देशों के हितों में नहीं है, तो कैसे उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी विदेश और सामरिक नीति को आगे बढ़ाए, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कनेक्टिंग फैक्टर है प्रधानमंत्री मोदी की पिछली यात्राओं की और साथ में इन तीन देशों की यात्रा के।
2: प्रोफेसर मिश्रा, जैसा आपने अभी बताया कि इंडो पैसिफिक का कितना महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
3: देखिए, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कभी भी भारत ने किसी दूसरे देश को नहीं दी, इंडोनेशिया ने भी किसी दूसरी महाशक्ति को नहीं दी। इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, कई डिफाइनिंग फीचर्स हैं, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है अमेरिका और चीन के बीच में सामरिक जो रस्साकशी है, लेकिन इसके साथ ही दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, भारत की और भारत के साथ जापान की, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़ी ही मुखर और बहुत ही स्पष्ट नीति का होना कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम किन्हीं भी दूसरे देशों को हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा या रूल्स बेस्ड ऑर्डर से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि भारत की नीतियों में और ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडोनेशिया की जो खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो नीति है उसमें बड़ी समानताएं हैं, और इन्हीं समानताओं के चलते आसियान की भी अपनी एक इंडो पैसिफिक का आउटलुक है, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, जिसमें बहुत सारी समानताएं भारत के इंडो पैसिफिक विजन से या महासागर विजन से। तो क्योंकि इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के उनकी चिंताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़े लेवल पर एक कंसेंसस रहे और इस कंसेंसस के साथ साथ इन देशों के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, और यही मुझे लगता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करेगा, और यही इन देशों की भूमिका है इंडो पैसिफिक को लेकर।
2: इस दौरे में व्यापार, निवेश, शिक्षा या फिर नवाचार और कई सारी नई तकनीकों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से भारत को क्या प्रमुख लाभ मिल सकते हैं, इस पर आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाएं।
0: देखिए भारत के साथ तमाम देशों के भारत के साथ इंडोनेशिया का जहां तक सवाल है व्यापार और निवेश का, ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी व्यापार को खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और सर्विसेज सेक्टर में भारत की अपनी जो क्वालिटीज है उसको इंडोनेशिया तक पहुंचाना और भारत और इंडोनेशिया के व्यापार को आगे आने वाले वर्षों में 50 बिलियन तक पहुंचाने की कोशिश ये दोनों देश कर रहे हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में व्यापार को लेकर के बहुत सारी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और यही भारत और इंडोनेशिया दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज को आगे बढ़ाते हुए कंपटीशन को कम से कम रखा जाए, आपसी सामंजस्य से ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़े। जैसे लेबर मोबिलिटी एक बहुत बड़ा उसका पहलू है जिसमें हम देखते हैं कि दक्षिण

0: पूर्व एशिया में इंडोनेशिया का ब्लू कॉलर जो लेबर है वो तमाम देशों, चाहे वो सिंगापुर हो चाहे मलेशिया हो ब्रुनेई हो, वहां मौजूद होता है। भारत की भी लेबर मोबिलिटी को लेकर के, आउटबाउंड लेबर मोबिलिटी को लेकर के बड़ा दखल रहा है और भारतीय आमतौर पर ब्लू कॉलर जॉब्स में भी और व्हाइट कॉलर सर्विसेज सेक्टर में भी भारत से बाहर जाते रहे हैं और दक्षिण पूर्व एशिया एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इस लिहाज से दोनों देशों के बीच में आर्थिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी को कैसे बढ़ाया जाए ये महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया में कोयले को लेकर के और ऑयल और गैस को लेकर के तमाम बातचीत चल रही है। अभी कोई इस संदर्भ में तार्किक परिणति तक कोई एग्रीमेंट पहुंचा नहीं है, लेकिन इस पर मुझे लगता है काफी बातचीत होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या आरसीईपी जिसे हम कहते हैं उसका एक हिस्सा है, अगले साल आरसीईपी के 10 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो ये कोशिश जरूर होगी कि भारत को आरसीईपी में लाया जाए और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार समझौता है उसके तहत भी ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश जरूर करेगा कि भारत एक क्षेत्रीय आर्थिक इकोसिस्टम का भी हिस्सा बने। ऑस्ट्रेलिया के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, भारत की नीति ये रही है कि ऑस्ट्रेलिया से क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम जिस पर एग्रीमेंट हो चुका है, और तमाम ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इम्पोर्ट किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आपसी व्यापार समझौतों से अलग रखा जाए, और सर्विसेज के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, रक्षा और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। न्यूजीलैंड, जैसा मैंने पहले कहा कि न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर के और न्यूजीलैंड का भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को लेकर के भारत ने न्यूजीलैंड को एक बड़ा साझेदार माना है और ये कोशिश की है कि न्यूजीलैंड का भारत में निवेश हो, निवेश भारत में हुआ भी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। दोनों देशों के बीच में व्यापार अभी $3 बिलियन भी नहीं पहुंचा है, तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में कैसे दोनों देशों के व्यापार को आगे बढ़ाया जाए ये भारत की कोशिश है और मुझे लगता है इस पर भी काम इस यात्रा के दौरान होगा।
1: प्रधानमंत्री की जो तीनों देशों की यात्रा है इसमें उन्होंने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करने की बात कही है। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश, संस्कृति और वैश्विक छवि को मजबूत करने में किस तरह से योगदान देते हैं, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ये समुदाय से जो उनका ये मुलाकात होगा वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में भारतीयों का और भारत वंशियों का, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और PIOs, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों पर बहुत खास ध्यान रहा है। तो भारतीयों और भारत वंशियों से हमेशा अपनी हर यात्रा के दौरान वो उन्होंने उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ मुलाकात की है, उनको संबोधित किया है और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की है, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को भी समझने की कोशिश की है। इंडोनेशिया में भी भारतीयों के साथ मुलाकात, भारत वंशियों के साथ मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लाखों की संख्या में भारतीय और भारत वंशी रहते हैं। भारतीयों के तौर पर ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी जो वहां हायर एजुकेशन में जाते हैं, टर्शरी एजुकेशन में, MA या प्रोफेशनल कोर्सेज या PhD के लिए जाते हैं, और जो वहां पे सर्विसेज सेक्टर में भारत के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वहां पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ डायस्पोरा के जो तमाम लोग हैं जिनकी एक अच्छी खासी संख्या ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त है। न्यूजीलैंड में भी अब भारतीयों और भारत वंशियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी सर्विसेज सेक्टर में भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा। भारत वंशियों की भी अब संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तमाम भारतीयों, खासतौर से पंजाब जैसे प्रदेशों से तमाम भारतीय न्यूजीलैंड में जाकर माइग्रेट हो गए हैं और वहां सेटल हो गए हैं, तो उनको भी समझने और उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश होगी। डायस्पोरा हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में एक बहुत अहम स्तंभ रहा है, और कितनी इसको इम्पोर्टेंस इस भारतीय विदेश नीति में आज दी जा रही है ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के तमाम इन तीनों देशों में जो संबोधन होंगे उनसे ये ज्यादा स्पष्ट होगा।
1: प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे श्रोताओं को समझाया कि यह प्रधानमंत्री की जो यात्रा है तीनों देशों की यह कितनी महत्वपूर्ण है और ये विकसित भारत का लक्ष्य पाने में कितनी मदद करेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुर्खियों में
3: सुर्खियों में अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया। रात्रि के 8:45 होने का है। अगला

0: प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्वकप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
5: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
6: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
7: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
8: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
9: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश

0: का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरला, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई ये 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, जस ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askAIR के साथ एक्सपर्ट शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खिराज-ए-अकीदत पेश किया।

0: किया। उन्होंने कहा कि उनका तसव्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनेई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम जकार्ता पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नेज इंडोनेशिया के सीनियर वज़रा, इंडोनेशिया में भारतीय सफीर और भारतीय बिरादरी के अरकान ने जनाब मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी अता करके उसे जामे कलीदी शराकत दारी का दर्जा दिया था, जिससे अवाम को बहुत फायदा पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल में इंडोनेशिया और भारत के रिवायती रक्स पेश किए गए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रिश्ते की अक्कासी होती है। इस मौके पर भारतीय बिरादरी ने जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। तवक्को है कि बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, बहरी सलामती, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी, जिससे भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय बिरादरी के अराकीन ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक अपने जोश व जज्बे का इजहार किया और एतमाद जाहिर किया कि यह दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा और तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए इम्कानात पैदा करेगा। भारतीय बिरादरी ने इंडोनेशिया में कारोबार करने में आसानी से मुतालिक भी मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और कहा कि भारतीय बिरादरी इंडोनेशिया के साजगार माहौल में अपनी सकाफती पहचान बरकरार रखते हुए इंडोनेशिया में रच बस गई है। इंडोनेशिया के जकार्ता से संदीपोन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम मुहिब वतन और भारत की सालमियत के लिए वक्फ एक दूरंदेश शख्सियत थे। डॉ मुखर्जी की 125वें यौम पैदाइश के मौके पर अपने एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि डॉ मुखर्जी के ख्यालात नए भारत के लिए रहनुमाई फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: उन्होंने कहा कि हुकूमत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं सालगिरह को दो साल कौमी जश्न के तौर पर मना रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन तकरीबात का आगाज पिछले बरस 6 जुलाई को हुआ था और ये अगले बरस 6 जुलाई तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी की जिंदगी एक तरगीब है जो बताती है कि किस तरह एक तसव्वुर एक अवामी तहरीक के तौर पर अपनी तकमील को पहुंचता है। जनाब मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी हुकूमत की तश्कील के साथ रियासत इस कौमी एजाज के तई जोश खरोश में मजीद इजाफा कर रही है और तहरीक देने वाली इस शख्सियत को याद कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती तकरीबात में शिरकत की। वजीर दाखिला ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आबाई घर का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इससे पहले उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत की। इन तकरीबात में मगरीब बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा के रुकन शमक भट्टाचार्य और दीगर मुअज्जिज शख्सियात ने शिरकत की। इससे पहले सुबह में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता की रेड रोड पर हुई तकरीब में शिरकत की, जहां वजीर आला और दीगर मुअज्जिज शख्सियात ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत पेश किये।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
1: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है। बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है। किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजिक या देश के कल्चरल चीजों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है वो किसी से फोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं। किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते
0: जी।
1: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में अब नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूं, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
0: जी।
1: और ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसकी उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ, एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए,
2: अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए। अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
0: ठीक है,
2: ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है।
0: जी,
2: रिटर्न कॉल नहीं होती,
0: सबसे बड़ी बात।
2: हाँ, और आज ये पहला

0: एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं, आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत जरूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
1: जी।
0: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूं मैं कौन नहीं हूं। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं करते हैं
1: जी।
0: तो आप उसका जवाब मत दीजिए कहीं हम आपसे आएंगे। आज जो है दूर संचार विभाग ने सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहां से किसका नाम आ रहा है, कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है, तो उसके बाद अगर फोन आपको जान पहचान उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
1: जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
2: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
1: जी,
2: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: जी सबसे पहले तो विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार रवि जी नमस्कार।
2: सर मैं ये जानना चाहता हूँ एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एआई भी है फ्रॉड भी है, तो डिजिटल साक्षरता कैसे प्राप्त करो, इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
0: देखिए डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज्यादा उसमें काम है, इनकी एक नाइलेट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है नाइलेट NILIET नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
1: जी।
0: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप मोबाइल चला लेते हैं आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए, तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए और उनमें काफी मटेरियल है, उसपे काफी इन्फॉर्मेशन है, काफी शॉर्ट मॉड्यूल्स है, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा, और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंदकोणम जी आपसे जानना चाहेंगे, यूपीआई आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 or even 1.2 in every 2 मतलब 50-70% ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया का यूपीआई के माध्यम से होता है,
1: बहुत बड़ी बात,
3: और भारत न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
1: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या यूएस डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहां तक जाकर के उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया, अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह की जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में जो हमारे देश में यह भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो एमएसएमई और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है। तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए यूपीआई एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे एनबीएफसी का काफी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि वो पहले नहीं पहुंच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स यूपीआई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश है।
1: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के सासाराम से, अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार सभी जितने भी विशेषज्ञ हैं। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक ओटीपी का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हम कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं क्या, कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ये मैं एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जी
0: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। ओटीपी का फ्रॉड काफी पहले से काफी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि ओटीपी क्यों आता है और कैसे आता है। ओटीपी जब भी आता है जब आप किसी सर्विस को लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉगिन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजेक्शन है आपको ओटीपी भेजते हैं। आपके फोन पे ओटीपी आता है, जो रजिस्टर्ड फोन होता है उनके पास उसी पे ओटीपी आता है। कोई भी ओटीपी तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिजायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी ओटीपी को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप ओटीपी को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को ओटीपी आता रहता है, अपने आप ही ओटीपी भेजते रहेंगे, उनको आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी ओटीपी को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश कर तभी आपको ओटीपी भेजता है। ओटीपी एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को ओटीपी भेजता है उसको मत लीजिएगा, उस पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी। और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
5: सभी को नमस्कार
1: जी।
5: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि जो हेल्पलाइन है 1930 सर, इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल की 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
3: पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
1: एक बार फिर से सवाल करें।
3: फिर से सवाल करेंगे आप?
1: कट गया शायद, उन्होंने उनका
3: डिस्कनेक्ट
1: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ
3: अच्छा 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ। तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुंचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुंचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में यह भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है। तो कई बार आपको आपको डायवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीजों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीजों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक

0: का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स है जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती है। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक मेथड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज्यादातर आपको गुमराह करने के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
2: जी? नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार
2: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
3: नमस्कार जी।
4: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
2: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
0: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
1: जी,
0: स्टूडेंट्स
2: जी सर।
0: स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई 6ठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई 7वीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो 7वीं पढ़ रहा है और उसे 6ठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या एनपीटेल नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें आईआईटी कानपुर या आईआईटी के एमटेक मास्टर्स पीएचडी के कोर्स से लेकर के और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के आईएम्स के मैनेजमेंट के ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेकर सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहां पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देखकर ले सकते हैं।
1: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
0: दो विषय पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खोलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की पीएलआई स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य एआई टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप इजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू किया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलो अप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
1: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
5: धन्यवाद। मैं धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर।
1: जी बताइए।
5: पहला क्वेश्चन जैसे कि कीपैड

0: वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और उस वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो। और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में टर्शरी क्लास के बच्चों से स्टार्ट होके देखा जाता है स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें भी चलाना आता वो बच्चा वो खोल के बैठ जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास से भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है।
1: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फोन होता है और उसमें बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या ओटीपी आता है वो सब एसएमएस के द्वारा आते हैं, व्हाट्सएप और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो ओटीपी आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका वही इफेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फोन से की फीचर फोन से किया उसका इफेक्ट सेम है। जहां तक ओटीपी और मैसेजेस का सवाल है उसका दोनों का इफेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उसमें फीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज के लिए अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका ओटीपी आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीजें आज की डेट में की फीचर्स फोन ही बहुत अच्छे हो गए हैं, जिसपे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फोन नॉर्मल पर्पज के लिए काफी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, केयरफुल रहना पड़ता है।
2: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
1: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
2: जी।
1: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड करे वो जो जरूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करें
2: जी।
1: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहां से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है।
2: बिल्कुल नंदकुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
3: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियां कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं। लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीजों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से, कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करें, सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए। या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, अब आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूं और कैसे दूं। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से

0: बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहां काम करती है कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के पन्ना से, हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? जो 1930 जो काल है इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए।
0: जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुनकर के प्रयास करता हूं। जो विषय है उनका कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वह कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वह चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहां पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहां पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहां, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको जीरो एफआईआर करके फिर ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो बीएनएसएस और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयां होती हैं। ये बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
3: ये बहुत अहम सवाल है
1: जी।
3: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप ओटीपी सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। जहां तक आपको ये, जब तक आप चीज को एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
0: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
0: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल न सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम सुनहरी यादें। श्रोताओ, बरसात केवल ऋतु नहीं है, ये प्रकृति का वो मधुर संगीत है जो मन के तारों को झंकृत कर देता है। और जब यही बरसात किसी स्याह रात से मिलती है तो जन्म लेती हैं ये सुनहरी यादें जो जीवन भर हृदय में महकती रहती हैं। बरसों की प्यास लेकर जो सावन उतर गया, बरसों की प्यास लेकर जो सावन उतर गया, भीगे हुए लम्हों का हर मौसम संवर गया, वो स्याह रात आज भी दिल में महक रही, जिस रात मोहब्बत का पहला असर गया।

सर किशोर कुमार का था, रचना योगेश की, संगीत राहुल देव बर्मन का। भीगी हुई रातों में जब साथ कोई चलता है, भीगी हुई रातों में जब साथ कोई चलता है, हर कतरा बारिश का मोती सा लगता है, दिल चुपके चुपके तब मुस्कुराने लगता है, जब याद किसी अपने की दस्तक देता है। आए सुनी फिल्म श्री 420 का गीत मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र।

थी संगीत शंकर जयकिशन का था। ये भीगी हुई रातें, ये खामोश हवाएं, हर मोड़ पर तेरी यादों की सदाएं, बरसात ने फिर दिल को छू कर ये कहा, मोहब्बत अमर है नहीं मिटती वफाएं। ऐसे फिल्म लग जा गले का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, रचना राजा मेहंदी अली खां की है, संगीत मदन मोहन का।

Hadi de kayıt disko. देर के बाद आज का दिन गुजर न जाए कहीं, ये मुलाकात ही अच्छी है। हम मिलते रहें कहीं। अभी आप सुन रहे थे फिल्म वो कौन थी का गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। रचना थी राजा मेहदी अली खां की, संगीत मदन मोहन का था। ऐसे नए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म चोरी चोरी का एक गीत है, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। रचना शैलेंद्र की है, संगीत शंकर जयकिशन का। भीगी हुई जुल्फों का मौसम निराला था, भीगी हुई रातों और खामोश हवाओं का गजब इशारा था। हर मोड़ पर उनकी सदाएं गूंजती हैं और बरसात फिर एक बार उनके दिल को छूकर ये कहती हैं,

और कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं फिल्म नमक हलाल का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। अनजान की रचना है, बप्पी लाहिरी का संगीत। सावन की फुहारों में हंसना भी ज़रूरी है, सावन की फुहारों में हंसना भी ज़रूरी है, जीवन की राहों में मुस्काना भी ज़रूरी है। सहरात के बाद सवेरा यही कहता है, हर दर्द के बाद खिल जाना भी ज़रूरी है।

श्रोताओं, बरसात की हर बूंद स्मृतियों का संदेश लेकर आती है और हर स्यार रात हमें विश्वास दिलाती है कि अंधकार के बाद उजाला अवश्य आता है। आज गीतों के सफर में हमने केवल गीत नहीं सुने बल्कि उन अनमोल एहसासों को फिर से जिया जो प्रेम, प्रतीक्षा, मिलन और स्मृतियों से जुड़े हैं। बरसों गुजर गए मगर एहसास वही है, बरसों गुजर गए मगर एहसास वही है, सावन के हर बूंद में विश्वास वही है। स्याह रात चाहे जितनी गहरी क्यों ना हो, मोहब्बत का चांद आज भी उदास नहीं है। इन एहसासों के साथ दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र को आज का कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में वायलिन पर राग श्याम कल्याण में एक रचना प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित वीजी जोग। इनके साथ तबले पर हैं श्यामल बोस। तो आइए सुने वायलिन पर राग श्याम कल्याण में एक रचना।

0: इसी साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का रांची केंद्र है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with